एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत

1948 की भाद्रपद मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 सितंबर सन 2026। प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6 बजने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनकी इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
1: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले दो दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण साब बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य की जल आवश्यकताओं और शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के लिए शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मंत्रालय के दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में कल शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने जल संरक्षण से जुड़े उपाय अपनाने का आह्वान किया। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लागू कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन अंतरिक्षयान है और ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्य भर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को HPV टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। HPV टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाव का एक महत्वपूर्ण उपाय है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा यह दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। इसमें एंटीबायोटिक्स,

0: दर्द निवारक दवाएं, सर्जिकल उपकरण और अन्य जरूरी दवाओं सहित लगभग 5.5 टन चिकित्सा सहायता शामिल है। 6 टन से अधिक बचाव उपकरण भी भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। बचावकर्मी बारिश और मलबे के बीच लोगों का पता लगाने में जुटे हैं। भोटे कोशी नदी के मार्ग में बनी सुरंगों और नेपाल के भूमिगत बिजली घरों में लोगों के फंसे होने की आशंका है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, मजबूत विकास आधार बनाने में आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता और वित्तीय प्रणाली की बेहतर सुदृढ़ता दर्शाता है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। पहली ICC विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। चिंतन

तपस्या से मनुष्य के सभी विकार शुद्ध हो जाते हैं। तप विकारों का नाश करता है। प्रतिदिन वेदाभ्यास, शक्ति के अनुसार पंच महायज्ञ और शांति धारण करना, ये कार्य महापातकियों के विकारों का शीघ्र ही नाश कर देते हैं। जैसे अग्नि अपने तेज से क्षण भर में ही लकड़ी को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य ज्ञान रूपी अग्नि से सभी विकारों का नाश कर देता है।

मनुष्य का हृदय ईश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है और उसी मंदिर में उसकी आराधना हमें करनी होगी।

सगुणातीत ईश्वर की प्राप्ति भक्ति और योग के द्वारा हो सकती है। इसके लिए गुरु का होना आवश्यक है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:40 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान का भाग 198।

निषाद राज के साथ भरत प्रयाग के मार्ग पर अग्रसर हैं। उन स्थानों को देखकर उनका मन परिताप से भर उठता है जहां कभी श्रीराम ने रात्रि विश्राम किया था। कुशों की साथरी और सोने के उन कणों को देख जो सीता जी के वस्त्राभूषणों से गिर पड़े होंगे, भरत विचलित हो जाते हैं। जिन सुकुमारी के श्वसुर महाराज दशरथ थे, जिनके पिता योग तथा भोग दोनों के स्वामी राजा जनक हैं, उन पतिव्रता शिरोमणि सीता जी का ऐसा बिछावन देख किसका हृदय नहीं फट जाएगा। कोमल स्वभाव तथा स्वामी भक्ति की प्रतिमूर्ति लक्ष्मण सरीखे छोटे भाई वन में न जाने किन विपत्तियों का सामना कर रहे होंगे। स्वयं श्रीराम जो शील सुख और समस्त गुणों के सागर हैं, कुशा बिछाकर पृथ्वी पर सोते हैं। भरत का परिताप इस सोच से और भी गहरा हो जाता है कि अपनी आंखों से ये सब कुछ देखकर भी उनकी छाती क्यों नहीं फट जाती। हे शंकर, क्या उनका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर हो गया है?

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारी आज की सभा में रेडियो प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओं, प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सुहानी। इसमें आज विशेष के साथ जानकारी देंगे पोषण सप्ताह और मर्चेंट नेवी दिवस पर। 7:40 का समय रहेगा कार्यक्रम शुभ प्याग का। 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गाने सुहाने। 9:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतांजलि। 9:00 ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:00। 10:30 पर कार्यक्रम पहाड़ों के सुर सुनवाए जाएंगे। 11:05 पर कार्यक्रम महक पंजाब दी प्रसारित किया जाएगा। 11:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT प्रसारित किया जाएगा। 12:00 आप सुनेंगे फौजी भाइयों का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। 12:30 पर कार्यक्रम सुनो सखी प्रसारित किया जाएगा। 1:10 पर आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। 5:10 पर आप सुनेंगे कुछ भजन। 5:30 का समय रहेगा कार्यक्रम युवा मंच का। 6:05 पर कार्यक्रम सुरमई सांझ प्रसारित की जाएगी।

0: मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मौजां क्रांतियां। किसानवाणी कार्यक्रम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से 7:10 पर रिले किया जाएगा। रात्रि 8 बजे सुनिए विधानसभा समीक्षा। रात्रि 9:15 पर एक ही कलाकार के क्रम में आज सुनिए अभिनेता विवेक ओबराय की फिल्मों के गीत। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम रंगे गजल प्रसारित किया जाएगा और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी शिमला से प्रातः 9:20 11 बजे 3 बजे 6 बजे और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाने वाले समाचारों का समय रहेगा सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9, दोपहर 1 बजे, शाम 5 बजे, 7 बजे और रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, दोपहर 1:05, शाम 5:05, 7:05 और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। तो श्रोताओ, ये थी रूपरेखा हमारे आज के कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। प्रातः के 6:55 होने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: AM आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नागरीकरणेन उत्पद्यमानानि आह्वानानि प्रति नगरीय स्थानीय निकायेभ्यः संवेदनशीलतां वर्धयितुं आह्वानं कृतवान्। एतेषु आह्वानेषु वर्धमाना जनसंख्या अथ भविष्यस्य जलावश्यकताः च प्रमुखाः सन्ति। असौ नगरीय स्थानीय निकायेभ्यः एतादृशानां चिन्तन शिविराणाम् आयोजनस्य परामर्शम् अपि प्रदत्तवान्। श्रीमोदी ह्यः जलशक्ति मन्त्रालयेन आयोजितस्य द्विदिवसीयस्य राष्ट्रिय विभागीय जलशिखर सम्मेलनस्य समापन सत्रस्य अध्यक्षतां कृतवान्। असौ जलसंरक्षण प्रौद्योगिकीनाम् अधिकाधिक प्रयोगाय आह्वानं कृतवान्। भारतीय निर्मातृभ्यः हितधारकेभ्यश्च कार्यकुशल समाधानानां विकासाय तेषां व्यापकस्तरे प्रयोगाय च समर्थनं प्रदातुं समर्पित प्रदर्शनानां कार्यशालानां च आयोजनस्य परामर्शम् अपि दत्तवान्। एतेषु वैश्विकस्तरे प्रचलितानां श्रेष्ठ कार्यपद्धतीनां परिचयः अपि भवेत् इत्यसौ उक्तवान्। प्रधानमंत्री द्विदिवसीयस्य गहन विचार विमर्शस्य प्रशंसां कृत्वा अवदत् यत् शिखर सम्मेलने उद्भूताः क्रियान्वयन योग्याः समयबद्धाः च कार्यबिन्दवः निरन्तर समीक्षया तथा अनुभवाधारित अधिगम प्रक्रियया च अग्रे नेतव्याः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा बेल्जियम देशस्य प्रधानमंत्री बाडी वेवर अद्य नवदिल्ल्यां द्वैपाक्षिक वार्तां करिष्यतः। उभौ नेतारौ द्विपक्षीय सम्बन्धानां समग्र परिदृश्यस्य परस्पर हित सम्बद्धानां क्षेत्रीय वैश्विक प्रकरणानां च विषये चर्चां करिष्यतः। बेल्जियम देशस्य प्रधानमंत्री बाडी वेवर त्रिदिवसीय भारत यात्रायै ह्यः रात्रौ राष्ट्रिय राजधानीं प्राप्तवान्। तेन सह बेल्जियम देशस्य रक्षामंत्री थियो फ्रैंकेन अपि भारतम् आगतवान्। गतवर्षस्य फरवरी मासस्य पदभार ग्रहणानन्तरं एषा तस्य प्रथमा भारत यात्रा वर्तते। भारतागन्तुकः बेल्जियम देशस्य प्रधानमंत्री भारत यूरोपीय संघयोः मुक्त वाणिज्य संदेहे सन्दर्भे भारतीयोद्योग महासंघेन आयोजितं व्यावसायिक कार्य

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनकी इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
1: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले दो दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के लिए भी इसी तरह के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की कल अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृपया से फिर से सुन ले, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्य रात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की

0: 17 तारीख तक राज्य भर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को एचपीवी टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा ये दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सामग्री भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, मजबूत विकास आधार बनाने में आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता और वित्तीय प्रणाली की बेहतर सुदृढ़ता दर्शाता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया है और 6 साल तक प्राथमिकी दर्ज न करने पर मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। न्यायालय ने कहा कि पुलिस की जांच से जवाब मिलने के बजाय और सवाल खड़े होते हैं। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। प्रतियोगिता में भारत ने रविवार को थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of Belgium Bert De Wever will hold bilateral talks in New Delhi today. Both leaders will discuss the entire spectrum of bilateral relations as well as the regional and global issues of mutual interest. The Belgian Prime Minister arrived in the national capital last night on a 3-day visit to India. Prime Minister De Wever has been accompanied by Belgian Minister of Defence, Theo Franken. This is his first visit to India since taking office in February last year. The visiting dignitary will also deliver a keynote address at a Confederation of Indian Industry business event in the context of the India-EU Free Trade Agreement. We have more from a correspondent.
2: India and Belgium share historical ties spanning over 3 centuries. Belgium was among the first European countries to establish diplomatic relations with independent India in September 1947. Belgium is an important economic partner for India in Europe. Bilateral trade reached over $13 billion in 2025-26. Diamond trade, with Antwerp as a major global diamond hub, remains a significant component of bilateral commerce. Belgium is also an important source of investment in India. FDI inflows from Belgium amounted to approximately $4.2 billion between April 2000 and December 2025. Science, technology, and innovation cooperation is an important pillar of the partnership, and India and Belgium have developed cooperation in renewable energy, clean technologies, and sustainability. Defense cooperation is also emerging as an important new dimension of the partnership, reflecting the diversification of bilateral ties into strategic and security-related areas. Suparna Saikya, Akashvani News, Delhi.
1: Prime Minister Narendra Modi has called for sensitizing urban local bodies to the challenges arising from urbanization, including population growth and future water requirements, and suggested organizing similar Chintan Shivirs for urban local bodies. Mr. Modi yesterday chaired the valedictory session of the 2-day National Departmental Summit on Water organized by the Ministry of Jal Shakti. He called for greater adoption of water-saving technologies. He also suggested dedicated exhibitions and workshops, including exposure to global best practices, to enable Indian manufacturers and stakeholders to develop and scale efficient solutions. Prime Minister appreciated the intensive two-day deliberations and emphasized that the actionable and time-bound action points emerging from the summit should be pursued through a continuous process of review.

0: सुबह सुहानी।
1: कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी की इस संग के साथ, और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ अनुराधा। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपको देते हैं ढेर सारी जानकारियां, साथ ही साथ करते हैं आपका मनोरंजन प्यारे प्यारे गीतों के साथ। तो रोजाना की तरह आज के इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं आज के शुभ विचार के साथ। मनुष्य की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। मीठी वाणी और विनम्र स्वभाव कठिन से कठिन दिल को भी जीत सकते हैं। यदि जीवन में सम्मान पाना है तो पहले दूसरों का सम्मान करना सीखिए। आज ऐसा कुछ कीजिए जिससे किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, यही सबसे बड़ी पूजा भी होगी। जी हाँ श्रोताओं, अपनी मुस्कान को यूं ही बरकरार रखिए, और जब आप मुस्कुराते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, और आपकी मुस्कुराहट को और भी बढ़ाने के लिए आपके लिए लेकर आए हैं ये प्यारा सा गीत, सुनिएगा।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। श्रोताओं, आज 3 सितंबर है और 3 सितंबर का ये दिन इतिहास के पन्नों में विशेष महत्व रखता है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ घटा आज के दिन। सितंबर 1833 में अमेरिका में पहला सफल समाचार पत्र न्यूयॉर्क सन बेंजामिन एच डे के द्वारा शुरू किया गया था। आज ही के दिन 3 सितंबर 1871 में कतर स्वतंत्र राष्ट्र बना था। तीन सितंबर 1976 में अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी

3 सितंबर 1926 में भारतीय सिनेमा में हिंदी और बांग्ला फिल्मों प्रसिद्ध अभिनेता उत्तम कुमार का जन्म हुआ। आज ही के दिन जन्म हुआ 1940 में हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में से एक प्यारेलाल का जन्म। तीन सितंबर 1974 में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी राहुल सांथवी का जन्म हुआ और आज ही के दिन 3 सितंबर 1976 में अभिनेता विवेक ओबराय का जन्म हुआ। श्रोताओं, कार्यक्रम में बातें और जानकारियां तो हम आपसे और भी साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। और कार्यक्रम में अब आपको जानकारी देंगे मर्चेंट नेवी दिवस की, यानी व्यापारिक नौसेना दिवस पर। श्रोताओं, व्यापारिक नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 3 सितंबर को उन बहादुर पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जो व्यापारिक बेड़ों में सेवा करते हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुचारू रूप से चलाते हैं। इसका उद्देश्य युद्ध और शांति के समय में नागरिक व्यापारी नाविकों के बलिदानों को मान्यता देना है। ब्रिटेन जैसे देशों में इन समुद्री कर्मियों के सम्मान में सार्वजनिक और ऐतिहासिक इमारतों पर आधिकारिक रेड एंड साइन ध्वज फहराया जाता है।

श्रोताओं, ये सप्ताह मनाया जा रहा है पोषण सप्ताह के रूप में। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भारत में हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, सही खान पान और संतुलित आहार के महत्व के प्रति जागरूक करना है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में बच्चों, किशोरों और विशेषकर महिलाओं में कुपोषण और एनीमिया को दूर करना है। समाज को यह समझाना कि अच्छा स्वास्थ्य केवल पेट भरने से नहीं बल्कि शरीर को सही पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज, फाइबर आदि देने से मिलता है। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, अत्यधिक चीनी और नमक के नुकसान के प्रति भी ये सप्ताह हमें जागरूक करता है।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी और कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पोषण सप्ताह के बारे में। श्रोताओ, प्रत्येक वर्ष पोषण सप्ताह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाता है, जिसमें इस अवधि के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा और उनकी बेहतरी में उचित पोषण के महत्व के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए एक सप्ताह का अभियान चला जाता है। नवजात शिशु एवं बाल आहार प्रथाओं को अधिकतम बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने माँ की असीम ममता कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि देश में स्तनपान का दायरा बढ़ाया जा सके। माँ कार्यक्रम के अंतर्गत स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधकों सहित डॉक्टरों, नर्सों और एएनएम के साथ करीब 3.7 लाख आशा और करीब 82,000 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को संवेदनशील बनाया गया और 23,000 से ज्यादा स्वास्थ्य सुविधा कर्मचारियों को IBCF प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही उपयुक्त स्तनपान परंपराओं के महत्व के संबंध में माताओं को संवेदनशील बनाने के लिए ग्रामीण स्तरों पर आशा द्वारा 1.49 लाख के से अधिक माताओं की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में बातें और जानकारियां तो हम आपसे और भी साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं समाचारों की सुर्खियों के साथ। इसरो अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ईओएस 05 के प्रक्षेपण की तैयारी में है। इससे पृथ्वी की निगरानी और अवलोकन क्षमता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। विदेश मंत्री एस जयशंकर यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर हैं, जहां विभिन्न आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ आज उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों से जुड़ी गतिविधियां सुर्खियों में हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा ने चीन ओपन टूर्नामेंट के अगले दौर में जगह बनाई है। और कार्यक्रम में अब आपको जानकारी देते हैं मौसम की। तो हिमाचल में मानसून सक्रिय बना हुआ है। कई जिलों में भारी बारिश की संभावना के बीच भूस्खलन और सड़क अवरोध को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। राज्य में हाल की बारिश के कारण कई सड़कें प्रभावित हुई हैं और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। तो श्रोताओं, ये थी समाचारों की सुर्खियां और कार्यक्रम में चलते चलते एक बार फिर करेंगे आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

0: सुबह सुहानी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शुभ प्रयाग।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रयाग, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:55 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 8 बजने को है कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिली किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डा वेवर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के लिए भी इसी तरह के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। श्री मोदी ने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को प्रभावी समाधान विकसित करने तथा उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम बनाने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी देने वाली प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के आयोजन का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने बांध सुरक्षा पर हर मानसून से पहले व्यापक तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों को एक जगह एकत्र कर व्यवस्थित रूप से प्रबंधित, विश्लेषित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डा वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
3: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले 2 दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। यह यात्रा भारत और बेल्जियम के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की निरंतर गति को दर्शाती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री

0: मंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: Update rahe, aage rahe. Expert at AIR News Hindi or Instagram par AIR News Alerts ko follow kare.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत के विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। ये रेटिंग किसी देश की सरकार के ऋण चुकाने की क्षमता और वित्तीय साख का स्वतंत्र मूल्यांकन करती है। एक रिपोर्ट।
6: मंत्रालय ने कहा कि यह उन्नयन चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण में हुआ है और निरंतर विकास, प्रभावी आर्थिक नीतियों, बेहतर राजकोषीय प्रबंधन तथा मजबूत वित्तीय प्रणाली द्वारा समर्थित भारत के आर्थिक बुनियादी ढांचे का परिचायक है। JCR ने एक बयान में कहा कि मजबूत निजी उपभोग और सार्वजनिक निवेश से समर्थित भारतीय अर्थव्यवस्था ने उच्च विकास दर बनाई रखी है। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा कि केंद्रीय राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025 में 4.07% से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 4.04% पर आ गया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नेहा गोस्वामी।
1: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया है और 6 साल तक प्राथमिकी दर्ज न करने पर मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। एक रिपोर्ट।
7: दिशा सालियान मामले में न्यायमूर्ति सारंगवी कोतवाल और न्यायमूर्ति रंजीत सिन्हा आर भोसले की खंडपीठ ने कल CBI को दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान द्वारा दायर शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश किसी के खिलाफ दोष सिद्ध करने का संकेत नहीं है। पीठ ने कहा किसी व्यक्ति को तब तक आरोपी नहीं माना जाएगा जब तक जांच अधिकारी की राय में उनके खिलाफ उचित संदेह पैदा करने के पर्याप्त आधार न हो। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्य भर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का 11

0: सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा ये दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। ग्रुप बी के मैच में कल रात दुबई में प्रतियोगिता में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रन से मात दी। और पहली आईसीसी विमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये प्रतियोगिता अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसका कारण श्रीलंका को मेजबानी से हटाया जाना है। आईसीसी ने कहा कि 6 टीमों का ये टूर्नामेंट अब भारत में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने वाली 6 टीमों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी। 28 फरवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसके अलावा भारत पहली बार अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर 5 से 9 सितंबर तक ह्युंडई विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला की मेजबानी करेगा। इसमें 20 देशों के 100 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन 4 सितंबर को होगा।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, विदर्भ और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। उधर मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में तेज बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है।
2: भोपाल, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मंडला में मंगलवार शाम से शुरू हुई बारिश गुरुवार सुबह तक रुक रुक कर जारी रही। इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। सतना में भारी बारिश से बाढ़ और जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। प्रशासन ने 434 प्रभावित आवासों के लिए 18,01,000 रुपए की सहायता दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के बालासोर जिले में सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजघाट में भी नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है।
3: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि बालेश्वर के राजघाट में सुवर्णरेखा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर 10.36 मीटर के खतरे के निशान के मुकाबले लगभग 11.5 मीटर तक पहुंच गया है। झारखंड के गालुडीह बैरेज से छोड़े गए पानी ने नदी के बहाव को और बढ़ा दिया है। भोगराई, बाल्यापाल और जलेश्वर ब्लॉक के कई गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने और राहत कार्य जारी रखे हुए है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRnewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
5: धन्यवाद कनक। एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का सीईओ बनाए जाने की खबर आज के ज्यादातर अखबारों की पहली सुर्खी है। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, राम मंदिर के लिए वायुसेना के पूर्व अफसर पर ट्रस्ट। दैनिक जागरण लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर के वायुवीर बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले ट्रस्टी, गोविंद देवगिरी बने महासचिव। अमर उजाला की टिप्पणी है, सिंदूर के सेनानी को रामलला की कमान। राजस्थान पत्रिका ने अखिल भारतीय सर्वेक्षण के हवाले से बताया है, उच्च शिक्षा में बेटियों की उड़ान, दाखिलों में लड़कों को पछाड़ा। साथ ही पत्र ने यह भी लिखा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अब भी लड़कों को बढ़त। नेपाल त्रासदी में राहत और बचाव कार्यों में भारत द्वारा की गई भरपूर मदद पर नेपाल के प्रधानमंत्री का आभार, लोकसत्य के पहले पन्ने पर है। नेपाल के पीएम बोले, भारत का धन्यवाद। अमेरिका में पासपोर्ट नियमों में बदलाव की तैयारी, दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, इसका उद्देश्य अमेरिका में जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता पर प्रतिबंध लगाना है। हिंदुस्तान ने राजधानी दिल्ली में एसआईआर के दौरान की गई मैपिंग पर लिखा है 45% लोग ही दे पाए अपना पुराना ब्यौरा, नाम जुड़वाने के लिए घोषणा पत्र जरूरी। जनसत्ता ने लुप्त प्राय सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए दक्कन में 16 अहम क्षेत्रों की पहचान किए जाने का समाचार प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से देते हुए लिखा है सोन चिड़ैया की संख्या अब केवल 100-150 ही बची है। ये पक्षी कभी पूरे भारत और दक्षिण पाकिस्तान में पाया जाता था। दैनिक भास्कर की ये पंक्तियां ध्यान खींचती हैं, डिजिटल दौर में दोस्ती का संकट, मैसेज तो होते हैं मुलाकात नहीं। एनसीईआरटी द्वारा छठी और नवीं की सभी भारतीय भाषाओं की नई पुस्तकों के नाम देश की नदियों के नाम पर रखे जाने पर दैनिक जागरण लिखता है देश की नई पीढ़ी को भारतीय भाषाओं से जोड़ने की पहल में छात्र सिर्फ भाषा नहीं सीखेंगे बल्कि देश की नदियों के नाम से भी रूबरू होंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह US-05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for greater adoption of water-saving technologies and learning from global best practices. Prime Minister Modi to hold talks with his Belgian counterpart, Bart de Wever, in New Delhi today. ISRO to launch Earth Observation Satellite EOS-5 from Sriharikota tomorrow. India's sovereign credit rating upgraded to A- with stable outlook by Japan Credit Rating Agency. Bombay High Court orders CBI probe into death of Disha Salian, former manager of late actor Sushant Singh Rajput. And in women's cricket, India to take on Hong Kong in the second Group A match of 2020 Asia Cup in Dubai this evening. Prime Minister Narendra Modi has called for sensitizing urban local bodies to the challenges arising from urbanization, including population growth and future water requirements, and suggested organizing similar Chintan Shivirs for urban local bodies. Mr. Modi chaired the valedictory session of the two-day National Departmental Summit on Water organized by the Minister of Jal Shakti yesterday. He called for greater adoption of water-saving technologies. He also suggested dedicated exhibitions and workshops, including exposure to global best practices, to enable Indian manufacturers and stakeholders to develop and scale efficient solutions. We have more from a correspondent.
7: Prime Minister Narendra Modi emphasized that the actionable and time-bound action points emerging from the summit should be pursued through a continuous process of review and learning. Appreciating the intensive two-day deliberations, Mr. Modi suggested that the summit should not remain a one-time exercise and called for a continuous process of review and follow-up. Emphasizing Jan Bhagidari, Mr. Modi suggested promoting Jal Utsav to create greater awareness among people. Prime Minister called for making desilting a regular program and developing clear criteria and SOPs for desilting. On dam safety, Mr. Modi stress rigorous preparedness before every monsoon, adherence to prescribed precautions, and creating awareness among school students, including through suitable incorporation in educational curricula. Prime Minister further called for strengthening knowledge and capacity on water management and governance in universities and higher educational institutions. He suggested structured interstate study visits involving public representatives, officials, and farmers to facilitate practical learning and replication of successful interventions. Mr. Modi also called for robust water data governance, with water sector data brought together, systematically managed, analyzed, and effectively utilized. He recommended the use of AI for data collection and analysis through a uniform format. He also stressed anticipatory and integrated planning to address water scarcity through suitable utilization of treated water for agriculture and industrial purposes. With Subarna Saikia, this is Vishnu PS for Akashwani News, Delhi.
6: Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of Belgium, Bart de Wever, will hold bilateral talks in New Delhi today. Both leaders will discuss the entire spectrum of bilateral relations, as well as regional and global issues of mutual interest. The Belgian Prime Minister arrived in the national capital last night on a three-day visit to India. Prime Minister De Wever is

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म किसना का ये गीत इस्माइल दरबार और सुखविंदर सिंह की आवाजों में।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म लगान का ये गीत उदित नारायण और आशा भोंसले के युगल स्वरों में।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
2: बच्चों, हमेशा रखो याद, चॉकलेट, मिठाई या आइसक्रीम खाने के बाद आगे पीछे ऊपर नीचे दिन में दो बार, सुबह और शाम डेली दो मिनट दो बार। दांतों की सफाई बहुत जरूरी है, खूबसूरत चमचमाते दांत और प्यारी सी मुस्कान सबका दिल जीत लेती है। डेली दो बार ब्रश करने से आपके दांत स्वस्थ रहते हैं और मुंह में बीमारी फैलने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रोताओं, कहते हैं ना, प्यार कोई बड़ी बड़ी बातों का नाम नहीं, प्यार तो वो छोटी सी खुशी है जो किसी अपने की एक मुस्कान देखकर भी दिल में उतर जाता है।

0: तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन जानलेवा है। तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर, हार्ट अटैक, लकवा, गैंग्रीन और अंधापन जैसी अनेक खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं।
1: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और शिक्षण संस्थान के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है। प्रदेश में गुटखा, खैनी और खुली सिगरेट बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
0: प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने में सहयोग दें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
3: So easy.
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपका मनोरंजन कर रहे हैं इस प्यारे से गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म सावरिया से, गायक कलाकार शान।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 9 बजे हैं और अब समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि का।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अनुराधा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हैं कार्यक्रम गीतांजलि के इस अंक के साथ। और आज के इस अंक में, जैसा कि मैंने बताया कि मैं हूं आपके साथ अनुराधा, और इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ छोटी छोटी सी प्यार भरी बातें, और आपसे करते हैं बात हमारे फ़ोन नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 01892224391। हर कार्यक्रम में हम एक विषय लेते हैं, और जी हाँ, आज के कार्यक्रम का भी एक विषय हमने लिया है। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप उसे पहचाने, फिर हम आपसे बात करेंगे। इसके लिए आपके लिए क्लू दे रहे हैं इस गीत के माध्यम से।

0: जी हाँ श्रोताओं, ए भाई जरा देख के चलिए सड़क पर। जी हाँ, आज का हमारा विषय भी सड़क सुरक्षा पर ही है। तो सड़क सुरक्षा, थोड़ी मस्ती, थोड़ी समझदारी, इसी विषय पर आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे। तो हमें फ़ोन कीजिए, हमारा फ़ोन नंबर है 01892224391, यानी 01892224391। और हमारे श्रोता तो एकदम पंक्चुअल हैं, उन्हें पता होता है कि अब 9 बज गए हैं और उनका कॉल एकदम से लग जाता है। उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैडम जी, लोकेश वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैडम
0: जी, लोकेश जी, आपने विषय सुना हमारा?
1: हाँ, सुन नहीं लिया तो नहीं है मैडम, पर ये जो गाना आपने बजाया है ना
0: जी,
1: उससे मैं समझ सकता हूँ कि आज का विषय ये ट्रैफिक रूल्स और नियम कायदे कानून के ऊपर हो सकता है।
0: आप थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी मस्ती तो हम करते हैं, लेकिन उससे के साथ साथ अगर समझदारी भी हम सड़क पर दिखाएंगे तो हम सड़क नियमों का बिल्कुल आसानी से पालन कर सकते हैं। इसी विषय पर आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं, तो कहिए क्या कहना चाहेंगे आप?
1: बिल्कुल मैडम जी, ये ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं उसका नियम तो हमें पालना चाहिए
0: जी।
1: और अभी जो आपने गाना बजाया उससे मैंने थीम सही पकड़ी कि नहीं, ये मुझे बताइए।
0: बिल्कुल, आपने ट्यून सही पकड़ी और आपने विषय को भी बिल्कुल सही पकड़ लिया। और जी, तो आप यहाँ कार्यक्रम सुनते रहते हैं और गाड़ियाँ भी चलाते हैं या नहीं?
1: नहीं नहीं मैडम, मैं जैसे टू व्हीलर चलाता हूँ, तो बाकी से मुझे सभी व्हीकल चलाना आते हैं, बड़ी बस छोड़ के।
0: जी चलिए, अच्छी बात है। और आप जब टू व्हीलर चलाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं?
1: मैडम जी, सबसे पहले तो आप टू व्हीलर जब चलाएं घर से निकले तो अपना हेलमेट जरूर पहने
0: जी,
1: और ट्रैफिक रूल से जो भी रास्ते में आते हैं उनका नियमों का पालन करें। अगर आपके पास सामने आप रेड बत्ती है तो आप थोड़ा वहाँ दो सिग्नल पर 2 मिनट रुकें, उसके बाद में सिग्नल क्रॉस करें
0: जी।
1: और जैसे हाईवे पर अपन चलते हैं तो हाईवे पर भी अलग अलग सिम्बोल बने रहते हैं।

0: जहाँ जैसे लेफ्ट टर्न है, राइट टर्न है, कहाँ पर कितनी स्पीड से अपने को हाईवे पर गाड़ी चलाना है, ये सब
1: उसका
0: उसमें सिंबल बने रहते हैं, तो उन नियमों का भी पालन करना
1: जी,
0: चाहिए।
1: यानी कि
0: क्योंकि
1: योगेश
0: उससे
1: जी, योगेश जी हम
0: लोके
1: समझ
0: लोकेंद्र
1: गए कि योगेंद्र,
0: लोकेंद्र
1: लोकेंद्र जी हम समझ गए कि आप कहना चाहते हैं जब सड़क पे चलते हैं तो अपने कान आँख जो है वो बिल्कुल खुले रखिए, बिल्कुल ध्यान से चलाइए और ज़रा धीरे चलिए, नहीं तो संभावना होती है थोड़ी सी नासमझी की जो हमें भुगतनी पड़ती है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल मैडम
1: चलिए
0: जी, वो
1: ठीक
0: मेरे
1: है, यो
0: को
1: आपने हमें
0: मैंने
1: कॉल
0: तो
1: किया, हमारे और भी श्रोता हमसे जुड़ना चाहेंगे, हमारे
0: जी।
1: और श्रोता से भी बात करेंगे, आपने हमें फ़ोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: प्यार जिससे पाता है, दिल जिसके गाता है, उसके ही सीने में भांप का कटार है।

0: पर ही नहीं।
1: हेलो,
2: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं
2: जी? हम योगेश जानतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं
1: जी। बताइए योगेश जी, क्या कहना चाहेंगे आज के विषय के संबंध में?
2: अब देखिए, सड़क सुरक्षा तो आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है। आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होते रहता है, और सबसे बड़ी यही है हमारे लिए कि हम मतलब थोड़े आराम से चले
1: जी,
2: और जितना हम संयम बरतेंगे उतना मतलब हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, हमारे फैमिली के लिए भी अच्छा रहेगा और बाकियों के लिए भी अच्छा।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और हीरो वही होता है जो ट्रैफिक नियमों को भी फॉलो करे और अपने घर वालों को भी टेंशन ना दे।
2: जल्दबाजी का काम किसी भी परिस्थिति में सही नहीं होता
1: जी। बिल्कुल, जल्दबाजी में कुछ ना कुछ दुर्घटना होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है, तो अपनी जल्दबाजी की इस आदत को थोड़ा सा चेंज कीजिए और अपने ट्रैफिक नियमों का पालन करते रहिए। आपने हमें फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: रहता है जो कुछ वो खाली खाली कुर्सियां हैं, खाली खाली तंबू।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार,
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटाई से।
0: राकेश जी, बताइए आज के विषय के संबंध में क्या कहना चाहेंगे?
1: आज के विषय के संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे सभी युवा साथी हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रैफिक के नियम का जरूर पालन करें, खासकर जो है पहाड़ी इलाकों में तो बिल्कुल करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, आजकल बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हम करते हैं तो उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है।
1: भुगतना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात ये ट्रैफिक नियम तो शहरों में तो करना चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं सीट बेल्ट चालान से बचने के लिए लगाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है ग्रामीण क्षेत्रों में तो बिल्कुल करना चाहिए, कि जो ग्रामीण क्षेत्र जो है वहाँ जो है जो सड़क जो है ऊंचाई वाले क्षेत्र में होती है, और ऊपर उबड़ खाबड़ होता है और ढाक वगैरह होता है, और कुछ लोग क्या करते हैं और गाड़ी जो है इतना तेज चलाते हैं तो सोचते हैं कि हम चाहे कितना भी ऊंचाई हम चला देते हैं, और ऊपर से म्यूजिक भी क्या बोलते तेज
0: लाउड होता है जी
1: चलाते
0: जी
1: लाउड होता है, और कई बार ध्यान नहीं देते कि पीछे आगे जो है हमारे जो है रोड से गाड़ी बाहर जा रही है, और कई बार वो इतना खो जाते हैं गानों में फिर गाते गाते वो गाड़ी चला देते। कई बार ऐसा भी सुना है मैंने, एक हाथ से वो गाड़ी का जो है स्टेयरिंग घुमाते, एक एक एक एक एक हाथ से वो फोन पे बात करते रहते।
0: जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई कि आपने सबसे पहले तो पहाड़ी क्षेत्र की बात की, तो इसमें थोड़ा सा बच के और रुक के हमें चलना है, क्योंकि बाहर होता है प्लेन और प्लेन में आप गाड़ी चलाते हैं तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा रखते हैं, लेकिन पहाड़ियों पर हमें बिल्कुल ध्यान से मोड़ होते हैं, ध्यान से मोड़ में मुड़ना है। और आपने बात कही संगीत की, यानी कि आप म्यूज़िक सुनते हुए अगर जा रहे हैं और पीछे से कोई गाड़ी आ रही है या आगे भी कोई गाड़ी है तो

0: आप उन गाड़ी वालों के हॉर्न जो है वो बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं, जिसकी वजह से भी दुर्घटना होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो
1: जी।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने हमें फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, हमारे श्रोता जो हैं वो बड़े ही जागरूक हैं और हमें कुछ ना कुछ सलाह दे रहे हैं कि किस तरह से आपने अपनी सड़क नियमों का पालन करना है। तो हम और भी बातें करेंगे आपके साथ, लेकिन उससे पहले करेंगे आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

0: दोस्तों।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि। और आज के इस कार्यक्रम में आप भी अगर हमें जुड़ना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो हमें कॉल कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 01892224391। और हमारे सभी श्रोताओं से ये गुजारिश रहेगी कि जो श्रोता हमें पिछले हफ्ते कॉल कर चुके हैं, वो कृपया कुछ दिनों के बाद यानी कुछ हफ्तों के बाद हमें कॉल करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे और श्रोता भी हमसे जुड़ना चाहते हैं। उन्हें भी मौका दीजिए हमसे बात करने का, आकाशवाणी धर्मशाला से जुड़ने का।

0: हेलो
1: बेटा जी, प्यार अते सत्कार भरी सत श्री अकाल। पंजाब से बोलता हूँ जी।
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं जी, आप जी आकाशवाणी रेडियो धर्मशाला से बोलते हैं ना जी?
0: जी बिल्कुल, आकाशवाणी धर्मशाला से ही बोल रहे हैं।
1: बेटा जी, मैं जी पिंड मौड़पुर जिला बठिंडा पंजाब तो जगजीत मट्टू बोलना भाई।
0: अपना नाम एक बार फिर बताइए।
1: जगजीत मट्टू भाई।
0: जी, जगजीत जी।
1: हाँ, जगजीत मट्टू।
0: जी, और आपने आज का विशेष सुना जगजीत जी?
1: हाँ जी, हाँ जी। तुसी जी, ये अपना तुसी आवाजाई बारे भी केड़े राइट तो आए जी? तुसी बेटा सुनया जी, मैं
0: जी
1: केड़े पास
0: बिल्कुल,
1: तुरना चाहिए
0: सड़क
1: तुसी
0: विच
1: जी?
0: आवाजाही किदों करनी है, किदां करनी है, असी वही गल
1: हाँ जी,
0: असी
1: हाँ
0: कर
1: जी,
0: रहे
1: हाँ
0: हैं।
1: जी सर जी, सर जी मुझे हिंदी काम आती है जी, यही विषय जी तुम्हारा।
0: कोई गल नहीं जी, थोड़ी थोड़ी पंजाबी सानू भी आती है, तो तुसी पंजाबी विच ही बोलियो, ते असी भी थोड़ा थोड़ा पंजाबी बोल लेंगे तुहाडे नाल।
1: हाँ बेटा जी, हुणे हुण काल मेरे यार दोस्त जी लगी है, लुकेंद्र वर्मा मध्य प्रदेश से, उसकी काल लगी है जी।
0: जी बहुत अच्छा। और आप पहले विषय पे बात कीजिए कि आप क्या कहना चाहेंगे सड़क सुरक्षा पर।
1: हाँ बेटा जी, माता जी ये कहता हूँ जी, भी सानू आप भी लेफ्ट राइट लेफ्ट साइड चलनी चाहिए है जी। ते जो वाहन होता है जी, उस भी हवा पानी तेल सब चेक करके जी, फिर पूरी तंदुरुस्ती ना सानू चलना चाहिए जी।
0: जी बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही जगजीत जी आपने,
1: हाँ
0: कि
1: जी,
0: आप
1: जेड़े
0: जब
1: सानू
0: भी
1: रूल आ,
0: जी जब भी आप
1: हाँ
0: चलते हैं
1: जेड़े
0: सड़क
1: सानू,
0: पे।
1: हाँ जेड़े सानू रूल आ जी गवर्नमेंट दे, वो सानू चलने चाहिए। लाल बत्ती तो स्टॉप करना चाहिए जी, जो जंप आ उसे भी सानू जेड़ी लिमिट बनती है सानू उस लिमिट पे सानू चलना चाहिए जी।
0: जी बिल्कुल, तुहाडी लिमिट किन्नी है व्हीकल दी, ओदा ध्यान तुसी बिल्कुल रखना है। और जिथे बिल्कुल ट्रैफिक वाला बहुत ज़्यादा ट्रैफिक फसिया है, उत्थे बिल्कुल स्लो तुसी चलोगे तो तुहाडी सावधानी ते औरों दी सावधानी भी तुहानू मिलेगी,
1: हाँ
0: है
1: जी
0: ना।
1: बेटा जी, बेटा जी असी मोटरसाइकिल चलाउणा जी, 40 तो थल्ले थल्ले चलाउणा जी, 40 तो बाद स्पीड
0: बिल्कुल
1: चलाउणी
0: वधिया
1: जी।
0: जी, बिल्कुल वधिया। तुसी बहुत अच्छी बात कही कि तुसी जदों वो चलते ने तां बिल्कुल हौले हौले चलते ने, तो बहुत अच्छी जानकारी तुसी दित्ती है, तुहाडा बड़ा बड़ा धन्यवाद
1: हाँ जी, जो हमारे बच्चे हैं ना जी,
0: जी।
1: वो तो हेलमेट पाते हैं, पर हम लोग दस्तार बांधते हैं जी, हमारे केस रखे हुए हैं जी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने पगड़ी लगाई हुई है और पगड़ी का इस्तेमाल जो है वो आपकी सुरक्षा के लिए भी है साथ ही में, है ना। तो बहुत अच्छी बात है, आप सड़क पर चलते हैं, बिल्कुल सड़क नियमों का पालन करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद आपका,
1: ठीक है बेटा जी, सत श्री अकाल, बेटा जी सत श्री
0: सत
1: अकाल
0: श्री
1: जी,
0: अकाल
1: बाबा
0: जी।
1: नाम सुन चढ़दी कलच रखे जी।
0: तो श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 MHz पर और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि, जिसमें आज का विषय हमने लिया है सड़क सुरक्षा, थोड़ी मस्ती थोड़ी समझदारी। इसी विषय पर और भी आपसे बात करेंगे, लेकिन प्रादेशिक समाचारों के बाद। आकाशवाणी का यह धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: ज्यादा जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर दिया बल। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन, सदन में चार विधेयक होंगे पारित। युवाओं के लिए रोजगार गारंटी पर जवाब देगी सरकार। पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत 1000 नई इलेक्ट्रिक और 200 हाइड्रोजन बसें खरीदेगी राज्य सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर रोजगार को लेकर युवाओं से धोखा करने का लगाया आरोप। और चंबा जिले की विश्व प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा कल से होगी शुरू, सभी तैयारियां पूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी के जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि ये सम्मेलन एक बार की कवायद नहीं रहनी चाहिए, बल्कि निरंतर समीक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने जन भागीदारी पर जोर देते हुए लोगों में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जल उत्सव आयोजन को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने जल माध्यमों से गाद निकालने की प्रक्रिया नियमित तौर पर अपनाने और इसके लिए स्पष्ट मानदंड तथा मानक संचालन प्रक्रियाएं विकसित करने का आह्वान किया। प्रदेश विधानसभा की मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। इस दौरान कई अन्य विधायी कार्य भी निपटाए जाएंगे। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
1: प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सदन के पटल पर चार महत्वपूर्ण दस्तावेज रखेंगे, जिनमें भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी कैग की बीते तीन वर्षों की रिपोर्ट शामिल है। इसके अलावा सदन में चार अहम विधेयकों, युद्ध पुरस्कार, भारतीय स्टाम्प, पंचायती राज तथा सड़क अवसंरचना संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के उपरांत पारित किया जाएगा। नियम 130 के तहत 31 अगस्त को लाए गए युवाओं के लिए रोजगार गारंटी प्रस्ताव पर सरकार जवाब देगी। इसके अलावा नियम 324 के अंतर्गत 11 विधायक अपने संबंधित क्षेत्रों के जनहित के मुद्दे उठाएंगे। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: राज्य सरकार प्रदेश के पर्यावरण को बचाए रखने के लिए जल्द ही 1000 नई इलेक्ट्रिक और 200 हाइड्रोजन बसें खरीदेंगी। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने अपने पहले बजट में ही प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार का ये प्रयास मील का पत्थर साबित होगा। इस बीच पर्यावरण संरक्षण के साथ यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित परिवहन देने की दिशा में इलेक्ट्रिक बसें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कांगड़ा जिले में भी अलग अलग रूटों पर दौड़ रही 45 इलेक्ट्रिक बसें ग्रीन ट्रांसपोर्ट की तस्वीर पेश कर रही है। हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता ने बताया कि सड़कों पर दौड़ती ये इलेक्ट्रिक बसें अब महज सार्वजनिक परिवहन का साधन नहीं, बल्कि ग्रीन हिमाचल की नई पहचान बनती जा रही है।
2: सीसीटीवी से लैस इन बसों में सुरक्षा के साथ साथ आरामदायक और शांत सफर की सुविधा मिल रही है। बसों का एक बड़ा फायदा इनके कम परिचालन खर्च में भी देखने को मिल रहा है। जहां डीजल बस के संचालन पर करीब 25 से 26 रुपए प्रति किलोमीटर खर्च आता है, वहीं इलेक्ट्रिक बस का खर्च 11 से 12 रुपए प्रति किलोमीटर है। कांगड़ा, धर्मशाला, नगरोटा, बगवा, देहरा, पालनपुर, पठानकोट, बैनाथ और जसूर सहित कई स्थानों पर करीब 6,35,00,000 रुपए की लागत से ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। वहीं जयसिंहपुर और शाहपुर में भी करीब 1,26,00,000 रुपए की लागत से नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। कम शोर, कम प्रदूषण और आरामदायक सफर के चलते यात्रियों में इलेक्ट्रिक बसों को लेकर उत्साह बढ़ रहा है। यही वजह है कि जिन रूटों पर इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, वहां यात्रियों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर रोजगार

0: के नाम पर युवाओं से धोखा करने का आरोप लगाया है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री रोजगार व स्वरोजगार के अवसर देने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार द्वारा 90% से ज्यादा पेंशन धारकों को अपात्र घोषित करना अत्यंत दुखद है। उन्होंने आरोप लगाया कि जरूरतमंदों की मदद करने के बजाय सरकार उनकी पीड़ा को बढ़ाने का काम कर रही है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
1: डायबिटीज यानी मधुमेह या शुगर रोग एक खतरनाक बीमारी है। इसमें बार बार पेशाब आना, थकावट महसूस होना, ज्यादा भूख लगना इत्यादि इसके लक्षण हैं। इसका शुरुआत में ही पता लगाना बहुत जरूरी है।
2: प्रदेश के हर स्वास्थ्य उपकेंद्रों में शुगर की मुफ्त जांच का प्रावधान है, अतः आप तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी शुगर की जाँच करवाए और अपनी आँखों और गुर्दे की गंभीर बीमारी होने से बचाए।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में बीते 3 वर्षों में अवैध खनन के 13,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इनमें से 10,152 मामलों में दोषियों से जुर्माने के रूप में 8,79,25,770 रुपए की राशि वसूल की गई है, जबकि शेष 2,930 मामलों में नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विधानसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभिन्न नदी नालों में कुल 305 खनन पट्टे प्रदान किए गए हैं और सरकार को इनसे करीब 303 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो रहा है। प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने का कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के विचाराधीन नहीं है। विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल के लिखित जवाब में कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर सरकार ने फिलहाल कोई प्रक्रिया तय नहीं की है। वहीं पैरामेडिकल कर्मचारियों, पंप ऑपरेटरों और अन्य अनियमित कर्मचारियों के मामले में उन्होंने कहा कि इनके संबंध में निर्धारित नीति के अनुसार निर्णय लिया जाता है। चंबा जिले की विश्व प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा कल से शुरू हो रही है। 19 सितंबर तक चलने वाली इस यात्रा के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
3: चंबा जिला की विश्व विख्यात मणिमहेश यात्रा कल यानी 4 सितंबर से शुरू हो रही है, जो 19 सितंबर तक चलेगी। यात्रा का छोटा स्नान कल मणिमहेश पवित्र डल झील में होगा, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस प्रशासन सहित अन्य विभिन्न सुविधाएं जिला प्रशासन द्वारा जुटाई जा चुकी हैं। वहीं सुरक्षा, यातायात, आवास, लंगर, घोड़े खच्चर व हेली टैक्सी की सुविधा भी इस दौरान मणिमहेश यात्रियों को उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं इस यात्रा का शाही स्नान 19 सितंबर को होगा, जिसके पश्चात इस यात्रा का समापन हो जाएगा। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: प्रदेश के अनेक भागों में बीती रात हुई वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सोलन जिला के परमाणु में देर रात हुई मूसलाधार बारिश से NH5 पर मलबा व चट्टाने गिरने के कारण यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन ने वाहन चालकों को प्रभावित बाईपास के बजाय पुराने काल का पिंजौर मार्ग का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। उधर सिरमौर जिले में गिरी जटौन डैम से आज सुबह फिर पानी छोड़ा गया। जिला आपदा प्रबंधन ने मैदानी इलाकों के लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज कांगड़ा व सिरमौर जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार भूस्खलन के कारण प्रदेश में 117 सड़कें अवरुद्ध हैं। इसके अलावा 141 विद्युत ट्रांसफार्मर और 51 पेयजल योजनाओं पर भी असर पड़ा है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। दैनिक भास्कर ने मेडिकल ऑफिसर भर्ती मामले को लेकर हाईकोर्ट के हवाले से सुर्खी दी है। सीधे नियुक्ति का आदेश देना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन, राज्य सरकार को 1 माह में सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्देश। 5 साल में हिमाचल में बनेंगे 2,18,000 घर शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है। विधानसभा में बोली सरकार, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मिला कोटा। अमर उजाला की एक खबर है, सड़क तोड़ी तो भरना होगा दोबारा बनाने की लागत का 5 गुना जुर्माना। दैनिक सवेरा टाइम्स की सुर्खी है, हिमाचल की बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत से करीब 60% से अधिक। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर दिया बल। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन, सदन में चार विधेयक होंगे पारित। युवाओं के लिए रोजगार गारंटी पर जवाब देगी सरकार। पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत 1000 नई इलेक्ट्रिक और 200 हाइड्रोजन बसें खरीदेंगी राज्य सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर रोजगार को लेकर युवाओं से धोखा करने का लगाया आरोप। और चंबा जिले की विश्व प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा कल से होगी शुरू, सभी तैयारियां पूरी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
4: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
5: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
6: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
4: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
7: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतांजलि का शेष भाग।
8: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
9: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
10: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
7: हेलो, राकेश जी, क्या हाल चाल है आपके?
11: ठीक है, बढ़िया मैडम
7: जी। आप थोड़ा सा सिग्नल में आ जाएं तो हम आपकी बात बिल्कुल अच्छे से सुन पाएंगे।
11: ठीक है मैडम जी।
7: जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे आज के विषय के संबंध में? आपकी आवाज कट रही है राकेश जी, थोड़ा सा सिग्नल में आइए। आप आवाज कट के आ रही है, ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं हम।
11: अच्छा, आपकी तो आवाज मेरे को आ रही है
7: जी। अब आ रही है, अब बताइए।
11: अच्छा जी, मैं अगर आपको मैं अपना व्यक्तिगत बोलूं तो मेरे को लगभग 40 वर्ष हो गए टू व्हीलर चलाते हुए मैडम
7: जी।
11: और 40 वर्ष में मैंने कभी भी ना मतलब कि नियम के विपरीत नहीं चला, मैंने नियम का पालन नहीं किया, चाहे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है, लाइसेंस है, इंश्योरेंस बिल्कुल रखिए मैं सर
7: जी, मैडम जी।
11: और मैं एक चीज बोलता हूँ, 40 वर्ष में मेरा कब चेक भी नहीं हुआ मैडम जी।
7: चलिए, भगवान की कृपा है आप पर और होना भी नहीं चाहिए। तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप जब भी सड़क पर चलते हैं, और आप टू व्हीलर पर ही ज्यादा चलते थे तो आपने हेलमेट जी
11: पूरी सर्विस ही मैंने ना जी मैडम जी,
7: जी।
11: टू व्हीलर की। अच्छा, और एक बात और बताना चाहता हूँ, जब मैं चलता था ना, जब सड़क में चलता तो मैंने कई लोगों को ऐसा भी देखा कि रेड लाइट आ जाती थी मैडम जी तो निकल जाते थे, और दिल्ली रास्ता कार जाती थी तो रुक जाते थे। ऐसे ऐसे लोग भी देखे मैंने मैडम जी, मतलब कि
7: चलिए आप जब सड़क पर चलते हैं तो बहुत सारी जो बातें हैं सामने आती हैं, कुछ हंसी मजाक वाली बातें भी आप तक पहुंचती हैं जो आपको थोड़ा सा अंदर ही अंदर खुशी भी देती हैं। और जब ट्रैफिक की बात और नियमों की बात आती है तो उनका पालन जो है वो आप बिल्कुल बखूबी करते हैं।
11: और मैडम मैं आज तो देखता हूँ ना, जो यंग लड़के हमारे बाइक में चलते हैं तो बहुत हैरान होता हूँ कि कम से कम इसका नाम क्या, थोड़ा ट्रैफिक का भी उनका बहुत देखो और रफ्तार की अपनी कंट्रोल रखो। अब जितना भी तेज चलेंगे मैडम जहाँ भी पहुंचेंगे, चाहे 3 घंटे का रास्ता ना मानिए, 2 घंटे का रास्ता, 15 मिनट का फर्क पड़ेगा तेज चलने और स्लो चलने, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।
7: तो आपने स्पीड जो है वो ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि ज़्यादा स्पीड आपको कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर देती है। आपने हमें फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। तो आप भी हमें सभी श्रोता कर सकते हैं कॉल, हमारा फ़ोन नंबर है

0: 8922234391। हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बचोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे आज के विषय के संबंध में प्रेम जी?
1: जी विषय बताइए आप थोड़ा सा।
0: सड़क सुरक्षा, थोड़ी मस्ती, थोड़ी समझदारी,
1: जी बिल्कुल,
0: इसी विषय पर
1: चाहेंगे।
0: बात कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में हम।
1: जी बहुत ही अच्छा विषय है, क्योंकि ट्रैफिक हर जगह लग रहा है अभी, जगह जगह ट्रैफिक वजह से, मतलब कुछ लोग जल्दी करते हैं आगे निकलने के, ओवरटेक करते हैं, उनके लिए कहना चाहेंगे कि धीरे चलिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और सामने से जो वाहन आ रहा है उसे साइड दीजिए, और अगर आपको ओवरटेक करना है गाड़ियों को, तो अगर सामने से वाहन नहीं आता है उस समय पे ओवरटेक कीजिए, और हेलमेट पहनिए, अगर फोर व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाइए और सुरक्षित रहिए।
0: जी बिल्कुल, हेलमेट को आप बोझ मत समझिए, ये तो आपके सिर का सच्चा दोस्त है। सीट बेल्ट भी लगाएं, मोबाइल को थोड़ी देर के लिए आराम दीजिए, और सड़क पर अपनी नहीं सबकी सुरक्षा का ध्यान रखिए। यही
1: जी बिल्कुल,
0: बात आपको सड़क सुरक्षा की ओर आपका ध्यान केंद्रित करती है।
1: जी मैं बताना चाहूँगा, मैं अगर बाइक चलाता हूँ ना,
0: जी
1: तो बिना हेलमेट के बाइक नहीं चलाता हूँ, और अगर फोर व्हीलर चलाता हूँ तो सीट बेल्ट के बिना नहीं चलाता हूँ।
0: चलिए,
1: अपने
0: बहुत अच्छी
1: सुरक्षा
0: बात है, आपने अपने सड़क नियमों का बखूबी पालन किया है, और हमें आपने फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: जी, आप सब श्रोता भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर है 01892224391।
2: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
3: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: हेलो,
5: हाँ दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
5: मैं गंगाधर सावनकर, कुंडलवाड़ी, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र।
0: जी गंगाधर जी, आपने आज का विषय सुना?
5: जी सुना दीदी, ट्रैफिक के बारे में।
0: जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे आज के विषय के संबंध में?
5: ट्रैफिक में तो सर दीदी, ट्रैफिक का पालन तो जरूर करना है। ट्रैफिक नहीं करो, पालन नहीं करो तो आगे अपने को एक्सीडेंट होगा और कुछ दिक्कत होगी, फाइन भरना पड़ेगा।
0: आप महाराष्ट्र से बोल रहे हैं?
5: जी जी जी
0: जी, वहाँ भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है ना?
5: हाँ होती, जहाँ चौरस्ता होती है वहाँ पर भीड़ होती है।
0: जी तो बिल्कुल आप ध्यान से चलते होंगे जब आप चलते हैं।
5: हाँ सिग्नल को देख के ही अपन काम करते दीदी।
0: जी सड़क पर निकलते ही ऐसा मत सोचिए कि भाई आज तो रेस लगानी है, सड़क कोई क्रिकेट का मैदान नहीं, जिंदगी तेज गेंद नहीं है कि जिंदगी तेज गेंद है उतनी जल्दी जीत हमें मिलेगी। तो आप सड़क पर जब चलते हैं तो अपने ट्रैफिक नियमों का बिल्कुल पालन कीजिए, उन्हें आराम से चलिए, दूसरों को जगह दीजिए, अगर उन्हें थोड़ा जल्दी है जाने के लिए तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, उन्हें जाने दीजिए, अगर आप भी जल्दी दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ घटना घटने की संभावना बढ़ जाती है। आपने हमें फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओ, हम आज जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है सड़क सुरक्षा, और बहुत सारे हमारे श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। एक और श्रोता हमसे बात करना चाह रहे हैं। हेलो
6: नमस्कार मैम।
0: जी बताइए, कौन बोल रहे हैं?
6: मैं जयकर्म सराह से।
0: जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे आज के विषय के संबंध में?
6: जी मैं पहले ये कहना चाहता हूँ, जो धीरे चलता है वो मंजिल तक पहुँचता है, वो जल्दी में होता है वो दुर्घटना संग्रस्त हो जाता है।
0: जी बिल्कुल, धीरे चलिए, आप बिल्कुल अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे, थोड़ा सा जल्दी नहीं, लेट ही सही, लेकिन मंजिल ज़रूर आपको मिलेगी, है ना?
6: जी, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा जी, मच्योर आदमी जो होगा वो धीरे चलेगा और समझदारी से चलेगा।
0: जी
6: तो मतलब युवा जोश में होते हैं ना, कोई दुर्घटना ज्यादातर करते हैं, तो मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि ये जोश हो कहीं और दिखाएं आप, क्रिकेट

0: के मैदान में, कहीं और मैदान में दिखाएं, इस जो ड्राइविंग जो उसमें बिल्कुल भी जोश दिखाने की कोशिश ना करें।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही जयकरण जी आपने कि सड़क पर जोश की नहीं होश की बात वो आपको करनी है। बिल्कुल, होश में आप जब भी कुछ सड़क पर चलते हैं तो आप किसी भी दुर्घटना के होने का डर जो है वो कम हो जाता है। आपने हमें फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जयकरण जी। तो श्रोताओं, हम और भी आपसे बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

0: जान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज पर और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि। और आज के इस कार्यक्रम का हमारा विषय है सड़क सुरक्षा, थोड़ी मस्ती थोड़ी समझदारी। श्रोताओं, हम अक्सर लाल बत्ती को देखकर आगे निकल जाते हैं, तो आपको लाल बत्ती दिखे तो रुकिए रुकिए, और क्योंकि लाल बत्ती का मतलब ये नहीं कि जल्दी चलो, निकलते हैं पुलिस नहीं देख रही। और हेलमेट की अगर बात करें तो अरे भाई, उसे बाइक का डेकोरेशन मत बनाइए, सिर पर पहनिए, क्योंकि सिर पर अगर आपने हेलमेट पहना होगा तो आपकी सुरक्षा है। आप अगर थोड़ा भी डिसबैलेंस होते हैं तो कुछ ना कुछ आपका बचाव उससे ज़रूर होता है। तो सड़क पर चलते हैं, सड़क के नियमों का पालन कीजिए, उनको देखिए, ज़रा दूसरों को भी जाने का रास्ता दीजिए। हॉर्न जब आप बजाते हैं तो बार बार हॉर्न मत बजाइए, इससे भी जो आगे आपके चल रहा है वो भी परेशान होता है। आप बार बार हॉर्न करेंगे तो जल्दी में कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है होने की संभावना बढ़ जाती है। और भी आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे ये कॉमर्शियल ब्रेक।
0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि। और आप भी अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें फ़ोन कीजिए, हमारा फ़ोन नंबर है 01892224391, यानी 01892224391, और हमसे इस विषय के संबंध में आप बात कर सकते हैं। हेलो, हेलो जी, इन्होंने जल्दी ही हमारा साथ जो है वो छोड़ दिया। कोई बात नहीं, आप दोबारा ट्राई कीजिए, आप फिर नंबर मिलाइए और हमसे बात कीजिए और बताइए कि क्या कुछ कहना चाहते हैं आप सड़क नियम के संबंध में। श्रोताओं, जब भी मोबाइल पर आपका मैसेज आता है या कोई फ़ोन आता है तो बहुत ज़रूरी है, तो आप थोड़ी देर रुक जाइए, क्योंकि मैसेज का रिप्लाई आप बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन सड़क पर एक छोटी सी लापरवाही का नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। हेलो जी, कौन बोल रही हैं?
2: जी, मैं ज्योत्सना पठानिया पठानकोट से। मैं कहना चाहती हूँ, जिन्होंने लाइसेंस लिए वो ट्रेन है, उन्हें पता होता है कि क्या रूल्स हैं रोड के
1: जी,
2: लेकिन जो बच्चे हैं वो ट्यूशन पे जाते हैं, वो अपने माँ बाप की गाड़ियां लेके जब जाते हैं उनको कुछ नहीं पता होता और उनके पैदल तक पैर भी नहीं पहुंचते, वो बहुत अनसेफ होता है
1: जी। बहुत अच्छी बात तो, आपने तो कही ज्योत्सना जी। जी, आपकी आवाज कट रही है ज्योत्सना जी, आप
2: जी, जी,
1: थोड़ा सा सिग्नल में आइए फिर बात कीजिए।
2: हाँ जी, तो जो अनट्रेंड है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है और जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं दिया, उनको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप बिल्कुल गाड़ी का उपयोग मत कीजिए। अपने किसी बड़े को कहिए, वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जल्दी सभी को होती है, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया कदम आपको कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर दे जाता है। आपने हमें फ़ोन किया ज्योत्सना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी हाँ, श्रोताओं, आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप जल्दी में अगर कुछ भी करेंगे तो उसका नुकसान आपको बिल्कुल भुगतना ही पड़ता है। और अब आपको एक और गीत हम सुनाना चाहेंगे, सुनिएगा ये प्यारा सा गीत।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: हेलो।
2: हेलो, नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं प्रीतम चंद बोल रहा हूँ जी, नगरोटा बगमा के मुंदला गांव से।
1: जी प्रीतम जी, बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के विषय के संबंध में।
2: ठीक है जी, पहले तो आकाशवाणी धर्मशाला को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जी आपको भी आकाशवाणी धर्मशाला की ओर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: ठीक है जी, मैं सड़क संबंधी नियमों के बारे में पूछ रहे हैं, उसमें बताना चाहता हूँ कुछ।
1: जी बोलिए।
2: अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो हमेशा सीट बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए।
1: जी
2: दूसरी बात है कि अगर दोपहिया वाहन चला रहे हैं तो हमेशा हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए।
1: जी
2: और हमेशा रेड लाइट का ध्यान रखिए, ओवरटेक जल्दबाजी में ना करें।
1: जी
2: अगर आप लिंक रोड से आ रहे हैं तो मेन रोड एड करने पर रुक कर इंटर कीजिए।
1: जी बिल्कुल।
2: रात को डिपर का प्रयोग कीजिए।
1: जी
2: हमेशा ओवरलोडिंग से बचिए।
1: जी
2: अगर कोई बुजुर्ग अपंग जानवर आ जाए तो उनका बचाव कीजिए।
1: जी
2: गाड़ी ड्राइव करते समय हम मोबाइल का इस्तेमाल ना करें।
1: जी बहुत अच्छी बातें आपने बताई और हमारे श्रोता जो हैं वो बिल्कुल सुन रहे होंगे और जो हमारे युवा श्रोता हैं वो बिल्कुल ध्यान से सुन रहे होंगे कि आपको किन बातों का ध्यान सड़क पर चलते हुए रखना है ताकि आप किसी भी सड़क दुर्घटना के घटने का जो है वो सामना ना करें। आप बिल्कुल ध्यान से चलिए और सुरक्षित चलिए।
2: अंत में ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ इज शॉर्ट, डू नॉट मेक इट शॉर्ट।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप जब चलते हैं तो अपनी ज़िंदगी का भी बिल्कुल ध्यान रखिए क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपकी तो है ही लेकिन आपके घर वाले भी उसके साथ साथ चलते हैं।
2: आपकी ज़िंदगी से साथ 4-5-10 लोगों की ज़िंदगी जुड़ी हुई।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छी बात कही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें फ़ोन करने के लिए।
2: ठीक है
1: जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात हमारे श्रोता कह रहे हैं कि आप सड़क के छोटे छोटे नियमों का अगर पालन करेंगे तो सड़क सुरक्षा आपके लिए और दूसरों के लिए बहुत ही आसान हो जाती है। हेलो हेलो
3: हेलो
1: जी
3: हेलो
1: जी जी, बताइए कौन बोल रहे हैं?
3: हिमानी बोल रही हूँ रैत से।
1: जी बताइए हिमानी जी, क्या कहना चाहेंगी आज के विषय के संबंध में?
3: आज जो विषय है बहुत अच्छा लिया गया है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक जो जोशी पठानी जी ने कहा कि जो छोटे बच्चों को वाहन देते हैं बच्चे, सॉरी लोग जो है वो खतरनाक हैं। अब मैं भी ड्यूटी को रोज जाती हूँ तो मैं ये नोट करती हूँ कि जो ये टू व्हीलर वाले होते हैं ना, वो ये जो अडल्ट एज के होते हैं वो तो फिर को ठीक चला रहे होते हैं, साइड लेके चला रहे होते हैं, लेकिन ये जो हमारी जैन जी है ना ये बीच में चलते हैं, फिर आप ना तो पास ले पाते हैं।
1: जी
3: मतलब ऑफिस के लिए तो आप सब समझ सकते हैं कि थोड़ी सी जल्दी होती है, फिर उनकी वजह से ना परेशानी होती है।
1: जी
3: साथ में मैं उन पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो छोटे बच्चों को अपनी गोद में लेकर स्टेयरिंग देते हैं या बाइक पकड़ा देते हैं तो प्लीज वो बच्चे के अंदर ना 18 साल से पहले ये क्रेज पैदा ना करें कि वो चला सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही।
3: हाँ, ये बहुत सारे लोग पेरेंट्स जो ये गलती करते हैं और बहुत मतलब वो प्राउड फील करते हैं, ये प्राउड नहीं है, ये उनके बच्चे के लिए बहुत बड़ा खतरा है जो वो समझ नहीं रहे हैं।
1: जी।
3: आज जितनी भी ये यंग एज में घटनाएं हो रही हैं वो उनकी गलती की वजह से, जो क्रेज पैदा कर रहे हैं बच्चों के अंदर उसकी वजह से हो रही है। और बाकी रही मस्ती की बात, तो ड्राइव करते वक्त थोड़ी सी मस्ती मैं भी करती हूँ लेकिन जब रोड बिल्कुल खाली होता है।
1: जी बिल्कुल, आप जब रोड पे फ्री हैं, खाली है तभी अपनी थोड़ी सी मस्ती, ज्यादा मस्ती नहीं करनी है।
3: नहीं वैसे तो मैं 40 की स्पीड से जाती हूँ लेकिन तब मैं थोड़ी 60 या 70 तक चली जाती हूँ कि देखती हूँ कि क्या होता है, लेकिन फिर भी कंट्रोल मेरा रहता है।
1: हाँ, जब तक आपका कंट्रोल आपके व्हीलर पर है तब तक बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल गया तो वही आपको नुकसान दे सकता है।
3: बाकी थोड़ी कोशिश ये होती है कि जो राहगीर होते हैं ना,
1: जी
3: तो जो बुजुर्ग होते हैं जिनको कई बार हॉर्न भी सुनाई नहीं देता, तो उनका तो मैं बहुत खास ख्याल रखती हूँ। मैं बाकी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो राह में हमारे बुजुर्ग जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, प्लीज उनको पहले ख्याल रखें, चाहे आप 1 मिनट लेट हो जाएं।
1: जी बिल्कुल, बुजुर्गों का और बच्चों का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि हो सकता है उन्होंने हॉर्न ना सुना हो या फिर उन्होंने ना देखा हो और आप गलती से कुछ अपनी स्पीड ज़्यादा रख के नुकसान उनको पहुंचा दें। तो अपनी स्पीड बिल्कुल लिमिट रखिए, सड़क पर जब भी चलते हैं तो नियमों का बिल्कुल पालन कीजिए। और आपने हमें फ़ोन किया, आपने हमसे बात की, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद आपका। तो श्रोताओ, अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि स्पीड कम रखिए, ध्यान सड़क पर रखिए और घर वालों की मुस्कान साथ लेकर घर लौटिए। चलिए, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। सड़क हमारी है, जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप सड़क नियमों का पालन कीजिए और सड़क पर जब भी चलें तो इन एहतियातों का ज़रूर पालन कीजिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम को संपन्न करने से पहले आपको ये बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग हमें दिया सुरेंद्र कपूर ने, प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह। और अब अपनी दोस्त अनुराधा को कार्यक्रम संपन्न करने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम गीतों का कारवां। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज आपके साथ मैं हूँ संगीता। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं हिना फिल्म के गीत के साथ। गीत और संगीत रविंद्र जैन का, आवाज लता मंगेशकर की।

गीतों का कारवां, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अलका याग्निक और उदित नारायण का गाया हुआ गीत आपको सुनवा रहे हैं। इब्राहिम अश्क ने इस गीत को लिखा है, राजेश रोशन का संगीत है, फिल्म है कहो ना प्यार है।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: कोई मिल गया, इस फिल्म का गीत लीजिए। अब सुनिए, राजेश रोशन का संगीत है, आवाजें हैं उदित नारायण, चित्रसेन और साथियों की।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

कभी खुशी कभी गम, इस फिल्म का गीत अभी श्रोता सुन रहे थे। गीत को गाया था अलका याग्निक, सोनू निगम और साथियों ने। गीतों का कारवां ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों का कारवां। बने रहिए एफएम धर्मशाला के संग। अगला कार्यक्रम है पहाड़ों के सुर। आपने ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर एफएम धर्मशाला। मनोरंजन का सिलसिला अभी जारी है। लोकगीतों की झनकार लिए आ रहा है अगला कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। शुरुआत हम कर रहे हैं शक्ति चंद के गाए इस माता की भेंट के साथ।

अभी आप सुन रहे थे नसीम बाला को, और अब आपको सुनवाते हैं ओम प्रकाश का गाया हुआ ये अगला लोकगीत।

हिमाचली गीतों और लोक गीतों का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अगला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं जिसे गाया है शिव कुमार ने।

इसी लोकगीत के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। पहाड़ों के सुर, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से प्रसारित किया गया। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 11 बजने को है। अब आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। इस दौरान कई अन्य विधायी कार्य भी निपटाए जाएंगे। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
1: प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सदन के पटल पर चार महत्वपूर्ण दस्तावेज रखेंगे, जिनमें भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी कैग की बीते तीन वर्षों की रिपोर्ट शामिल है। इसके अलावा सदन में चार अहम विधेयकों, युद्ध पुरस्कार, भारतीय स्टाम्प, पंचायती राज तथा सड़क अवसंरचना संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के उपरांत पारित किया जाएगा। नियम 130 के तहत 31 अगस्त को लाए गए युवाओं के लिए रोजगार गारंटी प्रस्ताव पर सरकार जवाब देगी। इसके अलावा नियम 324 के अंतर्गत 11 विधायक अपने संबंधित क्षेत्रों के जनहित के मुद्दे उठाएंगे। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने का कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के विचाराधीन नहीं है। विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा विधायक त्रिलोक जमवाल के लिखित जवाब में कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर सरकार ने फिलहाल कोई प्रक्रिया तय नहीं की है। वहीं पैरामेडिकल कर्मचारियों, पंप ऑपरेटरों और अन्य अनियमित कर्मचारियों के मामले में उन्होंने कहा कि इनके संबंध में निर्धारित नीति के अनुसार निर्णय लिया जाता है। प्रदेश में बीते तीन वर्षों में अवैध खनन के 13,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इनमें से 10,152 मामलों में दोषियों से जुर्माने के रूप में 8,79,25,770 रुपये की राशि वसूल की गई है, जबकि शेष 2,930 मामलों में नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विधानसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभिन्न नदी नालों में कुल 305 खनन पट्टे प्रदान किए गए हैं और सरकार को इनसे करीब 303 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर रोजगार के नाम पर युवाओं से धोखा करने का आरोप लगाया है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री रोजगार व स्वरोजगार के अवसर देने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार द्वारा 90% से ज्यादा पेंशन धारकों को अपात्र घोषित करना अत्यंत दुखद है। उन्होंने आरोप लगाया कि जरूरतमंदों की मदद करने के बजाय सरकार उनकी पीड़ा को बढ़ाने का काम कर रही है। राज्य सरकार प्रदेश के पर्यावरण को बचाए रखने के लिए जल्द ही 1,000 नई इलेक्ट्रिक और 200 हाइड्रोजन बसें खरीदेंगी। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने अपने पहले बजट में ही प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाया जा रहा है। इस बीच पर्यावरण संरक्षण के साथ यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित परिवहन देने की दिशा में इलेक्ट्रिक बसें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कांगड़ा जिले में भी अलग अलग रूटों पर दौड़ रही 45 इलेक्ट्रिक बसें ग्रीन ट्रांसपोर्ट की तस्वीर पेश कर रही है। हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता ने बताया कि सड़कों पर दौड़ती ये इलेक्ट्रिक बसें अब महज सार्वजनिक परिवहन का साधन नहीं बल्कि ग्रीन हिमाचल की नई पहचान बनती जा रही है।
2: सीसीटीवी से लैस इन बसों में सुरक्षा के साथ साथ आरामदायक और शांत सफर की सुविधा मिल रही है। बसों का एक बड़ा फायदा इनके कम परिचालन खर्च में भी देखने को मिल रहा है। जहां डीजल बस के संचालन पर करीब 25 से 26 रुपए प्रति किलोमीटर खर्च आता है, वहीं इलेक्ट्रिक बस का खर्च 11 से 12 रुपए प्रति किलोमीटर है। कांगड़ा, धर्मशाला, नगरोटा, बगवा, देहरा, पालनपुर, पठानकोट, बैनाथ और जसूर सहित कई स्थानों पर करीब 6,35,00,000 रुपए की लागत से ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। वहीं जयसिंहपुर और शाहपुर में भी करीब 1,26,00,000 रुपए की लागत से नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। कम शोर, कम प्रदूषण और आरामदायक सफर के चलते यात्री में इलेक्ट्रिक बसों को लेकर उत्साह बढ़ रहा है। यही वजह है कि जिन रूटों पर इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, वहां यात्रियों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: चंबा जिले की विश्व प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा कल से शुरू हो रही है। 19 सितंबर तक चलने वाली इस यात्रा के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
3: चंबा जिला की विश्वविख्यात मणि महेश यात्रा कल यानी 4 सितंबर से शुरू हो रही है, जो 19 सितंबर तक चलेगी। यात्रा का छोटा स्नान कल मणि महेश पवित्र डल झील में होगा, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस प्रशासन सहित अन्य विभिन्न सुविधाएं जिला प्रशासन द्वारा जुटाई जा चुकी हैं। वहीं सुरक्षा, यातायात, आवास, लंगर, घोड़े खच्चर व हेली टैक्सी की सुविधा भी इस दौरान मणि महेश

0: यात्रियों को उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं इस यात्रा का शाही स्नान 19 सितंबर को होगा, जिसके पश्चात इस यात्रा का समापन हो जाएगा। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकुर।
1: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी शिमला FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़
3: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 11:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम महक पंजाब दी। महक पंजाब दी कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत गुरदास मान के गाए इस गीत के साथ है।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: महक पंजाब दी इस कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद सादिक और रंजीत कौर का गाया हुआ।

मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।

नूर जिहान का गाया ये पंजाबी गीत अभी श्रोता सुन रहे थे। महक पंजाब दी ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। तुलसी कुमार और साथियों का गाया हुआ ये है कार्यक्रम का अगला पंजाबी गीत।

महक पंजाब दी ये कार्यक्रम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से प्रसारित किया गया। एक सौ 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 11:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: आप सबका बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें मिला है ग्राम पजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया जी से।
0: लिखते हैं, जिंदगी की कठिन परिस्थितियां भी एक वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं, जो हमें खूब घुमाती हैं, निचोड़ती भी हैं, परंतु जब हम इनसे बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले से अधिक स्वच्छ, बेहतर और चमकदार हो जाता है।
1: इस मजेदार और अर्थपूर्ण सुविचार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे लिखते हैं, कार्यक्रम उमंग के सभी कार्यकर्ताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है ओम प्रकाश दशोरा, मीनाक्षी दशोरा, स्वच्छंद दशोरा और रचना दशोरा जी का। वो लिखते हैं,
1: श्रीमान जी, आपका ये प्रोग्राम बहुत शिक्षाप्रद और रोचक और साथ ही साथ प्रेरणादायक है।
0: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे और अंजनी अंगारे जी ने पिछले सप्ताह के कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया में इंटरनेट पर कुछ पंक्तियां भेजी हैं। लिखते हैं,
1: अपनों से जीवंत संवाद करो, सुनो, दिल से बोलो, जरा हंसो, गाओ, परिवार के संग हृदय पट खोलो जरा। जीवन उल्लास रिश्तों की मिठास है तेरे आसपास ही, इंटरनेट के मोहपाश से बाहर तो निकलो जरा।
0: धन्यवाद आप सबका एक बार फिर से आपके संदेशों के लिए और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में।
1: श्रोताओं, कल हमने बात की थी जापान की एक अनूठी सुंदर परंपरा की।
0: श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं जापान की ही एक प्यारी सी घटना। ये प्रेरक तो है ही, साथ ही साथ ये संदेश भी देती है कि जिस राष्ट्र में विद्या का सम्मान होता है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है।
1: जी हाँ श्रोताओं, तभी तो जापान को दुनिया के सबसे अधिक उन्नत, शिक्षित और तकनीकी रूप से संपन्न राष्ट्र के रूप में माना जाता है।
0: जी
1: तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत।
0: श्रोताओं, आज हम आपको जापान की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें मानवता और शिक्षा के प्रति सम्मान का बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है।
1: जी, ये कहानी है जापान के होकाइडो क्षेत्र की एक स्कूली छात्रा की। उसका नाम था काना हराडा।
0: अजीत जी, मैंने इस कहानी के बारे में सुना है कि जापान में एक रेलवे स्टेशन केवल एक स्कूल जाने वाली लड़की के लिए चलाया जाता रहा, क्या ये सच है?
1: विमलेश जी, कहानी कुछ इस तरह ही सुनाई जाती है। इंटरनेट पर कहानियां इसी प्रकार से वायरल होती हैं। लेकिन ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि जापान रेलवे ने केवल एक लड़की के लिए पूरी ट्रेन चलवाई थी। आज उमंग कार्यक्रम में हम इसकी पड़ताल करेंगे। सच्चाई ये है कि काना हराडा उस छोटे स्टेशन की नियमित छात्रा यात्री थी, लेकिन ट्रेन में दूसरे यात्री भी सफर करते थे।
0: अच्छा, तो ये बात है।
1: जी हाँ, ये बात है बिल्कुल। स्टेशन का नाम था क्यूशिराताकी। ये जापान के उत्तरी द्वीप होकाइडो का एक दूर दराज इलाका है।
0: जी।
1: धीरे धीरे वहाँ यात्रियों की संख्या कम होती जा रही थी, क्योंकि लोग रोजगार के लिए टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों का रुख कर रहे थे। कभी कभी तो तीन चार यात्री ही हुआ करते थे।
0: तो रेलवे ने स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया?
1: रेलवे ने यात्रियों की संख्या और कम उपयोग होने वाले कई स्टेशनों को बंद करने की योजना बनाई, लेकिन प्रबंधन ने एक बात नोट की। वो ये बात थी, उस स्टेशन से एक स्कूली लड़की काना हराडा नियमित रूप से स्कूल जाती थी।
0: श्रोताओं, आइए कल्पना करते हैं, चारों तरफ बर्फ, ठंडी हवाएं और एक छोटी सी बच्ची अपने स्कूल बैग के साथ स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही है, और वो भी रोज, है ना अजीत जी?
1: जी विमलेश जी, यही तो काना हराडा की कहानी का सबसे भावात्मक दृश्य है। सुबह का समय है, काना हराडा अपने घर से निकलती है, स्टेशन पहुंचती है और ट्रेन का इंतजार करती है। शायद कुछ ऐसा कहती होगी,
0: ठंड बहुत है लेकिन मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है।
1: और फिर ट्रेन आती है।
0: जी, ट्रेन रुकती है, काना हराडा उसमें बैठती है और स्कूल चली जाती है।
1: फिर क्या हुआ विमलेश जी?
0: रेलवे ने ट्रेन और स्टेशन बंद करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन काना हराडा की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए ट्रेन और स्टेशन की सेवा उसके स्कूल जाने के समय तक जारी रही।
1: विमलेश जी, जरा सोचिए, आज जब हम किसी छोटे से गांव में स्कूल, सड़क या बस की बात करते हैं तो अक्सर सवाल पूछा जाता है, कितने लोग इसका इस्तेमाल करेंगे?
0: सही कहा जी जी, लेकिन शिक्षा के मामले में केवल संख्या नहीं देखी जानी चाहिए। कभी कभी एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है।
1: वाह, बहुत सुंदर बात विमलेश जी। मुझे लगता है कि एक बच्ची या बच्चा मात्र संख्या नहीं है
0: जी,
1: वे एक भविष्य है। तो श्रोताओ, फिर आखिर वो दिन आया जबकि काना हराडा ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली।
0: जी, और फिर मार्च 2016 में क्यूशिराताकी स्टेशन की सेवा समाप्त कर दी गई।
1: विमलेश जी, प्रश्न उठता है कि इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं या श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से क्या संदेश दे सकते हैं?
0: अजीत जी, वो संदेश है, बच्चे की शिक्षा को रास्ता दीजिए।
1: जी हाँ मित्रों, न जाने हमारे आसपास कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ी सी सहायता,

0: थोड़ी सी संवेदना और बस एक अवसर चाहिए।
1: हो सकता है किसी बच्चे के पास किताब नहीं हो, किसी के पास स्कूल जाने का साधन न हो और किसी को परिवार का सहयोग न मिल रहा हो।
0: और यदि हम उसके रास्ते की एक छोटी सी बाधा भी दूर कर दें,
1: तो शायद हम केवल उसकी आज की समस्या नहीं, उसके पूरे भविष्य को बदल सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, जी हाँ श्रोताओं, एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता
1: आने वाली पीढ़ियों का रास्ता बन सकता है।
0: तो ये थी हमारी आज की कहानी और प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है, जापान के उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या था जहाँ से काना हराडा अपने स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेती थी, और उस स्टेशन को कब बंद कर दिया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जापान के उस रेलवे स्टेशन का क्या नाम है जहाँ से काना हराडा अपने स्कूल जाती थी और उसे कब बंद कर दिया गया?
0: अब अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। तो बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारी सी बच्ची माला के बारे में बताया गया है कि चांदी की पायल पहनकर किस तरह वो मनोविनोद करती है और लुका छिपी के खेल से सबका मनोरंजन भी करती है।
0: माला की चांदी की पायल।
2: माला बिल्ली को डराती है। वो अपनी नानी को डराती है।
3: अरे माला तू।
2: वो अपने छोटे भाई को डराती। वो डाकिये को डराती।
4: बहन जी, डाकिया।
2: उसकी टोपी भी हवा में उछल गई। एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी।
5: माला, यह तुम्हारे लिए है।
2: माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वो पूरे घर में घूमने लगी। छोटे छोटे घुंघरू झनकते। अब माला जहां भी जाती सब जानते। उसकी आवाज से बिल्ली को पता लग गया कि माला आ रही है। माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। माला की हे से पहले नानी पलट गई। इस बार वो डरी नहीं, क्योंकि उन्हें माला के आने का पायल की आवाज से पहले ही पता चल गया था। माला की थप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया। माला की छिक छिक छम की पायल की आवाज सुनकर डाकिये को पहले ही पता चल गया कि माला आ रही है। अब माला किसी को डरा नहीं पाती। तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। वो बहुत खुश है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
1: जी मैं रमेश पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा। रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी, तो मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी, सिर्फ 1 मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।

0: रात में सड़क किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
1: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम रेडियो की कहानी।
2: इस कार्यक्रम में रेडियो के आविष्कार से लेकर उसके उद्भव और विकास की जानकारी एक सुंदर रेडियो नाटक के द्वारा दी गई है।
3: दोस्तों, मैं शरद हूँ।
4: और मैं सुचित्रा हूँ।
3: आज हम आपको रेडियो के इतिहास के बारे में बता रहे हैं और ये भी बताएंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है।
4: जी हाँ, रेडियो यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों से काम करने वाला संचार यंत्र। इसे लोग पहले जादुई डिब्बा भी कहते थे।
3: इस रोचक और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत होती है 1865 में ब्रिटेन से। जेम्स कॉक मैक्सवेल नाम के स्कॉटिश वैज्ञानिक ने एक प्रकार की ऊर्जा के बारे में अपना एक गणितीय सिद्धांत सबके सामने प्रस्तुत किया। इस ऊर्जा का उन्होंने नाम दिया विद्युत चुंबकीय तरंग। उनका यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित था कि ऊर्जा हवा में प्रवाहित की जा सकती है, बेशक वो दिखाई ना पड़े।
4: परंतु मिस्टर मैक्सवेल अपने इस सिद्धांत को प्रमाणित नहीं कर सके। दूसरे वैज्ञानिक भी शायद इसे प्रमाणित नहीं कर पाते अगर 1887 में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिच हर्ट्ज का प्रयोग सामने न आया होता। इस प्रयोग का वास्तविक उपयोग तब हुआ जब गुग्लियेमो मार्कोनी द्वारा तरंग उत्पन्न करने वाले उपकरण में सुधार किया गया।
3: गुग्लियेमो मार्कोनी का जन्म 25 अप्रैल 1874 को इटली के बोलोगना शहर में हुआ था। उच्छृंखल प्रवृत्ति वाले इस विद्यार्थी को स्कूली पाठों में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी न थी, पर वो दूसरे आविष्कारकों के सिद्धांतों को आधार बनाकर नित नए नए प्रयोगों में व्यस्त रहता था। पिता को मार्कोनी की ये गतिविधियां बिल्कुल न भाती थीं। एक दिन की बात है,
5: मैं तो इस बच्चे से तंग आ गया हूं, ना पढ़ना ना लिखना, खेल खेल खेल, क्या करेगा ये?
6: नहीं नहीं, वो सिर्फ खेलता नहीं है। क्या आपने ध्यान दिया है, कई बार उसके प्रयोग बड़े रोचक होते हैं।
5: सिर्फ प्रयोग करने से क्या वो अपने पांव पर खड़ा हो सकता है बिना पढ़ाई के?
6: सुनिए, मेरी भी यही चिंता है।
5: ना जाने क्या होगा इसका।
6: भौतिकी और विद्युत विज्ञान में उसकी बड़ी रुचि है, इसी बात पर वो अक्सर प्रयोग करता रहता है। उसके चचेरे भाई बहन तो उसके प्रयोगों से बड़े प्रभावित हैं।
5: अरे वो सब तो ठीक है, पर
6: न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जी कि आगे चलकर मार्कोनी एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा।
4: एक सफल जीवन की खोज में मार्कोनी औपचारिक शिक्षा तो न ले पाए, पर सफलता पा लेने की दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा उन्होंने रेडियो जैसा नायाब आविष्कार इस जगत के सामने प्रस्तुत किया। ये 1893 की बात है। गुग्लियेमो मार्कोनी जब मात्र 20 वर्ष का था, तब उसने पहली बार बिना तार के विद्युत चुंबकीय तरंगों को 3 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में सफलता प्राप्त की और ये प्रयोग

0: उसने किसी बड़ी प्रयोगशाला में नहीं, अपने घर पर ही किया।
1: ऐसे ऐसे
2: जोर से मारना।
1: सैम है ना? अरे इधर तू आओ। हाँ हाँ आते हैं।
3: सैम है ना, क्या तुम लोग तैयार हो?
2: हम तो तैयार है मार्कोनी, पर ये तो बताओ तुम करने क्या जा रहे हो?
3: आज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ एक अद्भुत प्रयोग।
1: कैसा प्रयोग?
3: आवाजों को बिना तार के हवा में एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का प्रयोग।
2: बिना तार के? भला ये कैसे संभव है?
3: संभव तो है भाई, संभव है। अच्छा देखो, मैं अपना ये उपकरण चालू करता हूँ। इसे कहते हैं ट्रांसमीटर।
2: अच्छा
3: अच्छा, अब तुम जल्दी से भागकर घर पहुँच जाओ।
1: अच्छा।
3: वहाँ किचन के पास वाले कमरे में मैंने रिसीवर लगा रखा है।
2: ठीक है।
3: उसी के साथ एक घंटी भी लगा रखी है।
1: घंटी भी?
3: सिग्नल पहुँचते ही घंटी बज उठेगी।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, हम जाते हैं, हम जाते हैं।
3: फिर जाओ ना। पहुँच गए?
1: हाँ हाँ।
3: ठीक है, अब मैं रेडियो सिग्नल भेज रहा हूँ।
1: हाँ हाँ भेजो, जल्दी भेजो।
2: अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है!
1: अरे वाह, मार्कोनी, क्या क्या बात है!
2: अरे ये तो जादू की तरह लगता है। वाह,
1: क्या बात है!
2: अरे वाह,
3: सिग्नल मिला?
2: हाँ हाँ, ये तो बड़ा दिलचस्प है, अद्भुत। शाबाश मार्कोनी, बधाई हो, बधाई।
0: और उस दिन मार्कोनी ने पहले एक कमरे से दूसरे कमरे तक, फिर घर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और फिर घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बागीचे तक बिना तार इस्तेमाल किए विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजा।
4: सन 1897 में मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफ और सिग्नल कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने एक साल बाद सन 1898 में इंग्लैंड के चेम्सफोर्ड में संसार की पहली रेडियो फैक्ट्री खोली।
0: फिर वर्ष 1900 में ट्यून्ड टेलीग्राफी के लिए प्रसिद्ध 7777 पेटेंट नंबर मार्कोनी ने लिया, और उन्होंने इस उपकरण का प्रयोग पहला वायरलेस संकेत कनाडा और इंग्लैंड के बीच अटलांटिक महासागर के पार यानी के 3220 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में किया।

0: इस प्रकार ये प्रयास इससे पहले के प्रयोग से 100 गुना अधिक दूरी तय कर सका। इससे ये सिद्ध हो गया कि रेडियो तरंगों पर पृथ्वी की वक्र आकृति का प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रयोग एक मील का पत्थर साबित हुआ।
1: ये संदेश भेजे गए इंग्लैंड और कनाडा के बीच मार्कोनी के रेडियो द्वारा, जिसमें मोर्स कोड का इस्तेमाल किया गया था। ये कोड सैमुअल मोर्स की देन है, जो मार्कोनी की ही तरह कल्पनाशील व्यक्ति थे।
0: बात 24 दिसंबर सन 1906 की है। अमरीकी तट के नजदीक अटलांटिक महासागर में जहाजों पर रेडियो ऑपरेटर।
2: आज बड़ी कड़ाके की ठंड है।
3: हाँ डेविड, ठंड तो है ही, और फिर समुद्री यात्रा ना जाने कब पहुंचेंगे।
2: मैं भी यही सोच रहा हूँ रॉबर्ट, घर में होते तो मजा आ जाता। कल क्रिसमस भी तो है ना।
3: काश इस वक्त हम अपने परिवार के साथ होते।
2: लेकिन ये मौसम भी तो साथ नहीं दे रहा। ये बर्फीली आंधियां और ऊपर से घने बादल।
3: कप्तान ने कहा था कि कल हम बंदरगाह में होंगे, लेकिन अभी तक हमें जहाज को आगे बढ़ाने का सिग्नल नहीं मिला है, शायद मौसम की वजह से।
2: रॉबर्ट, रेडियो सिग्नल को लगातार सुनते रहो, शायद आगे बढ़ने का सिग्नल मिल जाए।
3: देखता हूं।
2: सुन सुन, ऐसा करो रॉबर्ट, दूसरी फ्रीक्वेंसी पर देखो।
3: अरे ये क्या, ये मुझे क्या सुनाई पड़ रहा है?

0: अरे रॉबर्ट, रॉबर्ट, ये तो क्रिसमस कैरोल है।
1: अद्भुत, अति सुंदर।
2: For God so loved his world that he sent his only begotten son. I wish you a merry Christmas.
0: अरे वाह, अरे वाह, वाह! रेडियो पर आदमी की आवाज, अद्भुत, सचमुच अद्भुत।
1: वाह, क्या बात है,
0: वाह! पहली बार सुना है ऐसा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: वाह!
3: ये आवाज कनाडा के रेगिनाल्ड फेसेंडन की थी। ये पहला अवसर था जब रेडियो पर मानवीय आवाज सुनाई पड़ी, और इस तरह मानवता को मिला क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विज्ञान का एक अनमोल उपहार। इसमें सिर्फ कुछ वाक्य, एक गीत और वायलिन का संगीत था।
4: बहुत जल्दी ही लोगों ने मार्कोनी की कंपनी द्वारा बनाए गए इस उपकरण के माध्यम से लंबी लंबी दूरियों के पार भी संदेश भेजना और ग्रहण करना शुरू कर दिया।
3: मार्कोनी के इस आविष्कार से पहले जहाज यात्रियों के लिए बंदरगाह पर पहुंचने से पहले किसी भी प्रकार का संदेश संचार संभव न था।
4: सन 1912 अप्रैल रविवार का दिन था। टाइटैनिक, विश्व का सबसे बड़ा यात्री जहाज, एक भीषण हादसे में बर्फ की शिला से टकराकर डूब गया।
3: इन दावों के बावजूद कि यह जहाज डूब नहीं सकता,
0: अरे ये क्या हो रहा है? लगता है जहाज किसी चीज से, शायद बर्फ की शिला से टकराया है।
5: ये क्या हो रहा है? यार पूरी तरह हिल रहा है।
6: ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? जहाज पूरी तरह हिल रहा है।
7: हेड पर कितनी बड़ी दरार पड़ गई है। अरे बचाओ, अरे तो पानी भर
0: गया। जहाज की स्पीड कम करो, ऑपरेट द बैक प्रोपेलर, जहाज को पीछे करो, एंड कॉल द रेडियो ऑपरेटर चेक एंड हरे।
6: यस यस कैप्टन स्मिथ, यस।
0: ऑपरेटर जैक, इमरजेंसी मैसेज भेजो। Save Titanic, ship location 40 degree north and 25 degree south. I repeat, 40 degree north and 25 degree south. Or help, light signal bhejo. Send general call distress.
6: Jaldi, jaldi karo.
0: Jeevan rakshak naav ke niche utaro. Life boats ke niche utaro.
8: Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight.
3: क्या आपको पता है, टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ ने मार्कोनी कंपनी

0: वो मॉर्स कोड पर क्या संदेश भेजा था? संदेश था,
1: सेव अस टाइटैनिक सिंकिंग, हेल्प हेल्प,
0: जो मार्कोनी के रेडियो पर इस प्रकार सुनाई पड़ा था।

0: वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स और हेरल्ड को मार्कोनी टेलीग्राफ कंपनी ने टाइटैनिक जहाज पर संदेश भेजने और लेने के लिए नियुक्त किया था। कैसी विडंबना है, जैक फिलिप्स, जिसकी उम्र 28 साल थी, टाइटैनिक जहाज के साथ ही डूब गया, और हेरल्ड ब्राइट, जिसकी उम्र 22 साल थी, बच गया।
1: बाद में इस हादसे में बचे एक यात्री ने भी ये बताया कि रेडियो ऑपरेटर ने मार्कोनी कंपनी और नजदीक के जहाजों को मदद के लिए किस प्रकार टेलीग्राफिक संदेश को भेजा। इस बात का पूरा पूरा श्रेय रेडियो को ही जाता है।
0: 1909 में मार्कोनी और फर्डिनेंड ब्रायन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला, पर मार्कोनी द्वारा नोबेल पुरस्कार लेने की बात ही कुछ और है। स्वयं उनके अनुसार वे ना कोई वैज्ञानिक थे और ना ही कोई आविष्कारक, पर वे बहुत ही विलक्षण थे।
2: Congratulations, Mr. Marconi. You are really wonderful. And so is your amazing invention. Congratulations to you.
3: धन्यवाद ऐसे नायाब आविष्कार के लिए।
4: आपने तो कमाल ही कर दिया। कितना अद्भुत है आपका रेडियो। वाह वाह वाह वाह वाह।
5: सच में कमाल है। बिना तार का ये काम करने वाला रेडियो विश्वास नहीं होता। विश्वास
3: नहीं होता। मिस्टर Marconi
6: जी,
3: अच्छा ये बताइए,
6: ये आविष्कार करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? जी मैं बहुत अच्छा और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ।
3: गुड गुड।
6: सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से मैं एक ऐसा उपकरण तैयार कर सका हूँ जो पूरे विश्व में मेल मिलाप की भावना विकसित कर पाएगा।
3: बिल्कुल।
6: धन्यवाद।

0: 20 जुलाई 1937 को रोम में उनकी मृत्यु हुई। मार्कोनी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विश्व भर के सभी रेडियो स्टेशनों ने 2 मिनट का मौन रखा। आज भी विश्व उनके अनूठे योगदान रेडियो को आभार सहित याद करता है।
1: तब से अब तक रेडियो में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। आज भी बहुत सारे संचार माध्यमों के होते हुए भी इस नायाब जादुई डिब्बे का आकर्षण समय के साथ कुछ कम नहीं हुआ है।
2: श्रोता, अभी आपने सुना कार्यक्रम रेडियो की कहानी। अब हमारा समय समाप्त हुआ चाहता है, तो अब अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, चेतना, जगबंधु और मंजू जी के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं लक्ष्य फिल्म के गीत के साथ है। गीत को आवाजें दी हैं शंकर महादेवन, सोनू निगम और साथियों ने।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सैनिक भाइयों, लीजिए अब सुनिए खुददार फिल्म का गीत। राजेश रोशन का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की मिली जुली आवाज़ों में अभी सैनिक भाई सुन रहे थे खुददार फिल्म का गीत। सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए श्रोताओं, इस रविवार दिनांक 6 सितंबर 2026 को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का विषय होगा बच्चों में कुपोषण, कारण, लक्षण और बचाव। इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न आप स्टूडियोज में उपस्थित बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शौर्य कालिया से पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट कर लें, रविवार दिनांक 6 सितंबर 2026 समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 01892224391। फ़ोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 01892224391। तो फ़ोन करना ना भूलें रविवार दिनांक 6 सितंबर 2026 सुबह 9 बजे से 10 बजे तक FM 103.4 MHz पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी आप इसे सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुँच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: सैनिक भाइयों, आपको सुनवा रहे हैं इतिहास फिल्म का गीत। गायक कलाकार हैं अलका याग्निक और कुमार सानू।

सैनिक भाइयों कुमार सानू और अलका याग्निक के गाए राजा हिंदुस्तानी फिल्म के इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सैनिक भाइयों जय हिंद।

हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी स्थानीय बोली में कार्यक्रम मिंजरा।

शिक्षा ते संस्कार जिंदगी दे दो मूल मंत्र हैं। शिक्षा कदी असा जो झुकना नहीं दिंदी ते संस्कार कदी अहां जो सकियो गिरना नहीं दिंदे। इन्हां खूबसूरत पंक्तियों कन्ने ही शुरुआत करदे असा अपने अज दे कार्यक्रम सुनो सखी दी। अज वीरवार है ते अज दे अंक च गल करदे असा मिंजरां दी ते इस च गल हुंदी असा दी अपनी पहाड़ी बोली च। तां स्वागत है सारियां श्रोता सखियां दा कार्यक्रम मिंजरां च। अज दे कार्यक्रम विच तुहाड़े कन्ने तुहाडी अपनी रेडियो सखी मैं माया। कार्यक्रम सुनने वाली सारी भैणां जो साड़ी तरफी ते प्यार भरी राम राम। तो ठीक 1 बजे तक

अस अपनी भैनों कन्नै इस कार्यक्रम के माध्यम कन्नै जेह्ड़ा असें जुड़े रहना है, असा तो अपनी सखियां का साथ देना है पूरा, पर कन्नै कन्नै असा यही चाहते कि असा दियां सखियां जेड़ी हैं सह भी साड़ा पूरा साथ देन, क्योंकि इस कार्यक्रम विच असा तुहाड़े वास्ते जानकारी भी ले करी आयो हैं ते कन्नै कन्नै मनोरंजन जेड़ा सह भी करवाना है। असा सखियां जो सुनाने हैं प्यारे प्यारे दे लोक गीत भी, तो इसका पहले कि असा गल करन अपने अज दे विषय पर, पहले सुनते हैं एक प्यारा दिया लोक गीत।

0: एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
3: So easy.
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: एक बारी फिर स्वागत असदिया श्रोता से खेता कार्यक्रम मिंद्रा च। सखियो दिखा असदे बच्चे असदे परिवार दे ते समाज दे भविष्य होंदे हैं, ये तो असा सारे ही जानते हैं। उन्हां दा स्वस्थ शरीर, खुश मन ते मजबूत व्यक्तित्व जड़ा से असां दे देसे दे भविष्य दी उज्जवल नींव है। न्याणियां दे खरे विकास वास्ते शिक्षा जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है उन्हां जो सही ते संतुलित पोषण देना। बचपने च न्याणियां दे शरीर ते मस्तिष्क दा विकास जड़ा है से बड़ी तेजी कन्ने हुंदा, ते इस वक्त अगर न्याणियां जो पर्याप्त ते पौष्टिक खाना खाने जो मिले तो बच्चे जड़े हैं से सारी उम्र शारीरिक ते मानसिक रूप च जड़े स्वस्थ रहिंदे। इसके अलावा अगर न्याणियां जो सही पोषण ते सही खाने जो भी मतलब ना मिले तो बच्चों जो कमजोरी रह सकती, थकान लगी सकती, कई बीमारियां लगने का जड़ा से बच्चों जो डर रहा, तो पढ़ाई च भी बच्चों जो जड़ी से मुश्किल हो सकती। इस खातिर हर माता पिता ते परिवार दे दूजे सारे मनुआ जो यानी असा सबना जो चाहिए, असा सबना की जिम्मेवारी बनती कि अपने न्याणे दे खाने पीने वाली चीज़ों पर जड़े से खास ध्यान देन। उन्हें जो स्वस्थ जीवन शैली की आदत बचपन का ही सिखाना चाहिए ताकि बच्चे सेहतमंद रहन, खुशहाल रहन। दिखा एक स्वस्थ बच्चा ही खरा जड़ा से पढ़ी सकता, खरा खेली सकता, हर क्षेत्र च अगे बधी सकता। बचपने च अपनाई गई आदत जड़ी इनसे सीखियो उन्होंने पूरे जीने च जड़ी से कमी आँदी। इस खातिर शुरू कई न्याणे जो स्वस्थ जीवन शैली अपनाने वास्ते प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्वस्थ ते खुश रहना जड़ा से परिवार, समाज ते देशे वास्ते बड़ा जरूरी है। पर असा दे न्याणे ताई स्वस्थ रह सकदे चालू उन्हें जो पौष्टिक भोजन, स्वच्छ वातावरण, पूरी नींद, नियमित खेल कूद ते प्यार भरा माहौल मिले। तो संतुलित ते पौष्टिक भोजन जड़ा से बच्चों वास्ते बड़ा जरूरी है, उन्हां दे स्वास्थ्य वास्ते जड़ा से बड़ा जरूरी है। उन्हां दे खाने च हरी सब्जियां, दालां, अलग अलग हर प्रकार दी मतलब अनाज, हर तरह दे फल सारे ते दूध, दही, घी, होर भी दूजे जितने भी पौष्टिक खाने वाली चीज़ां हैं उन्हां दे खाने च जरूर शामिल करना चाहिए। ज़्यादा तलिया भुनिया, ज़्यादा मिठी चीज़ा ते पैकेट वाली कोई भी खाने वाली चीज़ा जिहड़ी हन से न्याणे जो बिल्कुल भी खाने का मना करना चाहिए, तिना जो से खाने जो तिना वास्ते तिना जो जड़ी से बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये सारी चीज़ा ते जितने भी पीने वाले जूस जड़ी भी बोतलों मिलते हैं इन्हां वास्ते भी बच्चों जो साफ पीने वास्ते मना करना चाहिए, चाहे बच्चा जितनी भी जिद करे। पर न्याणे जो इन्हां बुरी आदतों का बचाना जड़ा है सह भी ऐसा माता पिता का ही फर्ज है। करी ताज़े फलों का ताज़ा जूस निकाली करी बच्चों जो पीने जो दे सकते। नारियल पानी बच्चों की सेहती वास्ते जड़ा से बड़ा खरा हुंदा, असा बच्चों जो नारियल पानी पीने जो दे सकते, ते करे दा ताज़ा ते स्वच्छ खाना ही बच्चों की सेहती वास्ते जड़ा से खरा हुंदा। तो अगे इसी विषय पर असा अपनी सखियां कन्ने होर भी गल्ला जड़ियां इनसे करनी हैं, पर फिर चलना असा मनोरंजन पासे कन्ने सुनना एक होर प्यारा दिया लोक गीत।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: अंतराल का बाद एक बार फिर स्वागत असदीय श्रोता से केंद्र कार्यक्रम मिंजरा च। सखियों, न्याणे जो संतुलित भोजन देने दे कन्ने कन्ने, यानी उन्हां दा खाने पीने दा ध्यान तो रखना ही है, पर कन्ने कन्ने उन्हां दे खरे स्वास्थ्य वास्ते स्वच्छता भी उतनी ही जरूरी है। स्वच्छता भी बच्चों जो स्वस्थ रखने वास्ते महत्वपूर्ण भूमिका जड़ी से निभांदी है। न्याणे जो खाना खाने का पहले साबुन कन्ने खरे कन्ने हाथ धोना सिखाना है। शौचालय जाने का बाद भी साबुन कन्ने हाथ धोने की आदत जड़ी से बच्चों जो जरूर पवानी है। उन्हें जो रोज़ नहाने दी, दंद साफ करने दी, वक्त वक्त पर नाखून कटने दी आदत, ते साफ कपड़े पाने दी आदत जड़ी है, सह भी पवाना जरूरी है। ते कन्ने कन्ने घर, स्कूल, ते अपने अखे बखे दे वातावरण जो

साफ सुथरा रखने दे बारे च बच्चों जो जरूर दसना है, क्योंकि स्वच्छता दी खरी आदतां जड़ी हैं से बच्चों जो कई बीमारियां का बचाने च मदद कर दी। हर बच्चे वास्ते सिखियो खेलना कूदना ते होर शारीरिक गतिविधियां भी बड़ी जरूरी हैं। न्याणे जो रोज़ उन्हां दी उम्र दे हिसाबे कन्ने कुछ वक्त खेलने दौड़ने चलने ते दूजी गतिविधियां च हिस्सा लेने दा मौका जड़ा से उन्हां जो जरूर देना चाहिदा। खेलने कन्ने बच्चों का शरीर जड़ा से सिखियो दिखा चुस्त रहिंदा, बच्चों का शारीरिक ते मानसिक विकास हुंदा, उन्हां दा आत्मविश्वास जड़ा से बढ़दा, उन्हां च अनुशासन ते मिलीजुली करी रहने दी भावना जड़ी है से विकसित हुंदी। अज दे बच्चे मोबाइल फोन टीवी ते कंप्यूटर पर ज़्यादा समय बितांदे, इस वास्ते भी बच्चों पर ध्यान देने दी असा माता पिता जो जड़ी से ज़्यादा जरूरत होंगी कि ज़्यादा स्क्रीन पर नहीं दिखते रहन बच्चे। इस कन्ने क्या होंगे कि बच्चों की नज़र कमज़ोर होने का डर रहा, तो पढ़ाई के कन्ने कन्ने किताबा पढ़ने चित्र बनाने खेल खेलने ते दूजे रचनात्मक कम्मा वास्ते प्रोत्साहित करना जड़ा से जरूरी है बच्चों जो। इन सारी चीज़ा कन्ने दिखा बच्चों के शारीरिक ते मानसिक विकास से जड़ी से मदद मिलती, ते कन्ने कन्ने बच्चों के सही पोषण का मतलब सीखियो सिर्फ पेट भरना नहीं है बल्कि इदिया खाना खाना है जिन्हां कन्ने शरीर की जरूरत के हिसाबे कन्ने अलग अलग पोषक तत्व जड़े इनसे सही मात्रा च मौजूद होन, जियां कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज पदार्थ, फाइबर ते पानी का संतुलित होना जड़ा सा भी बड़ा जरूरी है। ये पोषक तत्व बच्चों जो ऊर्जा देंदे ते उन्हां दे शरीर के विकास से जड़ा से मदद कर दे। बचपन च शरीर की हड्डियां मांसपेशियां दंद ते मस्तिष्क जड़ा से दिखा ये सारी चीज़ें जड़ी इनसे विकसित होंगे, इस खातिर इस वक्त पौष्टिक भोजन की खास जरूरत होंगी बच्चों जो। इस कन्ने बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता जड़ी से मजबूत होने च मदद मिलती। हरी पत्तेदार सब्जियां गाजर टमाटर लौकी पालक मटर ते दूजी मौसमी सब्जियां बच्चों के खाने च जरूर शामिल करना चाहिए। केला सेब अमरूद संतरा पपीता मौसमी फल स्वादिष्ट होने के कन्ने कन्ने बच्चों के शरीर चो कई पोषक तत्व जड़े इनसे प्रदान करते हैं। इस खातर से कि बच्चों जो सही पोषण देना जड़ा से उन्होंने उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव तैयार करना है। पौष्टिक ते संतुलित भोजन पूरा पानी स्वच्छता खेलकूद पूरी निंदर ते प्यार भरा माहौल बच्चों जो स्वस्थ रखने च पूरी मदद कर दे। इस खातिर स्वस्थ बच्चा ही दिखा स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज ते मजबूत राष्ट्र दी जड़ी से पहचान है। तो ये तो गल्लां हुईयां बच्चों जो पौष्टिक खाना खाने जो देने दे बारे च। अगे असा कार्यक्रम बिच अब अगे बढ़ना है ते सुनना एक होर प्यारा दिया लोक गीत, उसका बाद चलना सा रसोई पासे अपनी ते गल करनी है खाने पीने दी। तो वह सुनते हैं एक प्यारा दिया लोक गीत।

एक बार फिर स्वागत है सभी श्रोता सखियों का कार्यक्रम मिंजरां च। चलते अस अपनी रसोई पास क्योंकि सदियाँ सखियां भी व्यस्त होनी अपनी रसोई च, कुछ खाना बनाने च, कुछ सखियां खाना खुआने च, पर अस गल करनी है अज खाना बनाने की। जी हाँ सखियो, अज अस गल करनी है मुकंद बड़ी बनाने के बारे च। मुकंद या सेपू बड़ी इन्हें जो दिखा ताज़ी घरे भी बनाई सकते हैं, ये उड़द की दाल की बनती हैं, बाजारे भी अजकल मिली जाती है ना आसानी कने। तो मुकंद बड़ी जड़ी असें बनाने वास्ते एक पतीले च पानी गर्म करना रख देना, जालू पानी गर्म हो जाएगा तो उस मुकंद बड़ी 6-7 पीस या अपने हिसाबे कने घट बनानी हो तो उस हिसाब कने जड़े असें उबलना पाई देने। फिर 2-3 प्याज जड़े हैं से कद्दूकस कर लेने, 2-3 टमाटर की ग्रेवी जड़ी असें बनाई के रखी लेनी। फिर जालू बड़िया नरम हो जाएंगी तो उबलते पानी का जड़ी इनसे निकाली लेनी। फिर एक कढ़ाई च तेल गर्म करना रखना, जालू तेल गर्म हो जाएगा उस च क्या करना, तुहाने जीरा, बेन, लाल सुकी मिर्च, बड़ी इलायची, तेजपत्ता, दालचीनी यानी कि खड़े मसाले जड़े भी तुहां जो पसंद हैं से अपने हिसाबे कन्ने इस च पाई देने। हल्का दे मसाले पकना देने, जालू से थोड़ी देर भुज जाएंगे तो प्याज पाई देना जड़ा कद्दूकस करके तुहां रखे है। प्याज भुजने का बाद यानी कि जालू प्याज थोड़ा देर भूरे रंगे रह जाएगा तो टमाटर की ग्रेवी जी है भी पाई देनी। कुछ लोग जड़े ऐसे थोड़ा देर दही भी पाते, अगर दही पाना पसंद हो तो हल्का देर दही फैटी कर जड़ा पाई देना। कन्ने कश्मीरी लाल मिर्च, हरी मिर्च, गर्म मसाला, हल्दी, लून, हींग अपने हिसाबे कने तो सारा कुछ पाई करी तड़का जड़ा तैयार कर लेना। जालू तड़का पकी जाएगा, गर्म पानी पाना उस पानी जड़ा से उबना लगी पौगा तो सेपू बड़ियाँ पाई देनी। 10-15 मिनट खरे कन्ने जड़ा से तो पकना देना। जालू सब्जी का, मुकंद बड़ियाँ का तेल निकलना जड़ा से किनारे किनारे पर कढ़ाई दे शुरू हो जाएगा तो गैस जड़ी से बंद कर देनी। गर्म मसाला तो हरा धनिया, कसूरी मेथी पाई करी खरे कन्ने जड़ा से तो मिला लेना। बस मुकंद बड़ी जड़ी से बनी करी तैयार है। इसको चावल कन्ने तो चपाती कन्ने जड़ा से असा मतलब जिस भी मर्जी का तुहां जो खरा लगे से खाई सकदे। तो सखियो तुसा सोचा मुकंद बड़ी बनाने दे बारे च, ते कन्ने कन्ने सुना ही प्यारा दिया लोक गीत।

इसी लोकगीत कन्ने अज दे कार्यक्रम विच इतना ही। तकनीकी सहयोग रहा सुरेंद्र कपूर दा, प्रस्तुत करता है डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। ते सखियो माया जो कार्यक्रम जो संपन्न करने दे अनुमति दे, प्यारी सखियो राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिंजरा एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। एक बजे
1: नमस्कार समाचार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इससे पहले आज सुबह बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बेल्जियम के प्रधानमंत्री भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल रात राजधानी पहुंचे। प्रधानमंत्री डी वेवर के साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री फ्रैंकन भी आए हैं। पिछले वर्ष फरवरी में पद संभालने के बाद ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश शासन आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने बेल्जियम के रक्षा मंत्री थ्रियो फ्रैंकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान ये बात कही।
2: ये दौर गंभीर राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का रहा है। इन परिस्थितियों में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने उनका मजबूती से सामना किया। ऐसे समय में आपके जैसे मित्र

0: और महत्वपूर्ण साझेदार से मुलाकात विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। भारत और बेल्जियम के बीच लंबे समय से मजबूत संबंध रहे हैं। ये संबंध आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और साझा प्रतिबद्धताओं पर आधारित हैं।
1: बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन ने भारत को अधिक जनसंख्या तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया। उन्होंने भविष्य की परियोजनाओं के लिए बेल्जियम के साथ सहयोग करने की जरूरत पर बल दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापारिक सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि रूस के भीतर यूक्रेन के हमलों और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का रूस की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। श्री रूबियो ने कहा कि अमेरिका और यूक्रेन ऐसी व्यवस्था पर बातचीत कर रहे हैं जिनसे यूक्रेन उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों का उत्पादन कर सके। श्री रूबियो ने ये बात कल एक साक्षात्कार में रूस के ईरान को समर्थन और यूक्रेन में जारी युद्ध पर चर्चा के दौरान कही। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब यूक्रेन रूस के भीतर सैन्य और ऊर्जा से जुड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए लंबी दूरी के ड्रोन और अन्य हथियारों का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर बाद मिला जुला असर देखा गया। सेंसेक्स 19 अंक बढ़कर 76,588 पर और निफ्टी 6 अंक घटकर 23,908 पर रहा। क्षेत्रीय स्तर पर रियल एस्टेट, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और पूंजीगत वस्तुएं प्रमुख लाभ कमाने वाले क्षेत्र रहे। महिला एशिया कप 2023 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में रविवार को भारत ने थाईलैंड को 94 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर्स सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। श्रीकांत ने विश्व के 9वें नंबर के खिलाड़ी कनाडा के विक्टर लाई को हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं कि इस फिल्म में नायिका थी तनुजा, हाथी का नाम था रामू और शीला। ये एक कमेंट पढ़ते हैं कि पहिए बदल

चलते रहे, कभी टमटम तो कभी रिक्शा और मोटर कार हो गई बदला जमाना, ऐसा कि हर पुरानी याद अब बस एक दीवार हो गई। वो जवानी के दिन और वो रुत मस्तानी अब कहाँ मिलती है साहब। तब टूटी साइकिल में भी वफादारी थी, आज बड़ी गाड़ियों में भी बेजारी हो गई। बस यही दुआ है कि यादों के सहारे जीवन के कुछ दिन कट जाएं और बिछड़ते हुए भी दिल से कहा जा सके कि खुश रहना मेरे यार। अगला ये कमेंट हमारे एक साथी ने लिखा है कि कभी कभी कुछ ना जानने में ही शांति है, क्योंकि जीवन कोई पहेली नहीं, जिंदगी के पास आपके सारे सवालों के जवाब नहीं होते, फिर भी हमें शांति के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ये एक कमेंट है कि जब जानवर कोई इंसान को मारे, एक जानवर की जान आज इंसान ने ली है। साथियों, हिंदी फिल्मों में जानवरों ने हमेशा एक अहम भूमिका निभाई है। कभी वो नायक के वफादार दोस्त बने तो कभी कहानी का मुख्य हिस्सा बनकर दर्शकों को हंसाया रुलाया। हिंदी फिल्मों में जानवरों के कुछ सबसे यादगार और अहम रोल्स के बारे में हमें बताएं, साथ ही ये भी बताएं कि क्या आप कभी किसी जंगल सफारी में गए तो क्या कैसा अनुभव रहा, किसी नेशनल पार्क में जाकर क्या क्या देखा आपने, और ये भी बताएं कि बचपन में सर्कस देखी थी क्या कभी। और सबसे अहम बात, जानवरों के अधिकारों के बारे में क्या जानते हैं आप। अब हम बात करेंगे फिल्म तेरी मेहरबानियाँ की, जिसमें एक मोती नामक लैब्राडोर ने अपने मालिक की हत्या का बदला लिया था और ये रोल आज भी मील का पत्थर माना जाता है। तो इस फिल्म के हीरो हीरोइन और खलनायक के नाम हमें लिखकर भेज दीजिए। और मैं साथियों आपके सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ, पढ़ती हूँ और आगे भी पढ़ती रहूँगी।

आवाज की दुनिया के दोस्तों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं। जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लन, अमरीश पुरी, सदाशिव अमरपुरकर, असरानी राजकिरण थे और आवाज थी शब्बीर कुमार। गीतकार थे SH बिहारी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम था तेरी मेहरबानियाँ। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों ने हमें बहुत सारे जवाब दिए जो हमें मिल गए और हमने पढ़ भी लिए। अरे ये क्या लिख दिया आपने, ये एक कमेंट मिला है कि मैं अपनी चादर सिलने को बैठ गई हूँ। तेरी मेहरबानियाँ फिल्म कुछ दिन पहले ही तो देखी थी, सच में आंखों में आंसू आ गए।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज़ में। इस गीत के बीच में कुछ बोलों के लिए आवाज़ दी है हेमा मालिनी ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। और इस ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म का नाम आप सभी जानते हैं, सारे डायलॉग्स भी आप जानते हैं, तो बताइए कि ये टांगे वाली बसंती की घोड़ी का नाम क्या था। और साथ ही हेमा मालिनी का एक आइकॉनिक डायलॉग भी हमें बताए। और बसंती की मौसी जी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का नाम, और ये कालिया और सांभा की भूमिका अदा करने वाले अभिनेताओं के नाम भी बता दें। और ये भी बताएं कि होली कब है, होली ये कौन पूछता था। आपके जवाबों का हमें है इंतज़ार। इसके अलावा भी आपको कुछ ऐसी फिल्में याद आ रही हो तो वो भी आप हमें बताएं।

हमारे साथियों ने हमें संदेश भेज दिए हैं, जवाब हमें मिल गए हैं। निर्देशक रमेश सिप्पी की इस फिल्म शोले में, जिसकी कहानी लिखी थी सलीम जावेद की जोड़ी ने, 15 अगस्त 1975 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, जया भादुरी, अमजद खान, विजू खोटे, मेक मोहन, और डायलॉग था, चल धन्नो आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है, और यूं के हमें बेफजूल बात करने की आदत नहीं है। कालिया और सांभा थे एक्टर विजू खोटे और मेक मोहन। बसंती की मौसी जी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का नाम था लीला मिश्रा, और फिल्म में गब्बर सिंह बने अमजद खान पूछा करते थे, होली कब है होली।

अब कुछ संदेश भी पढ़ देते हैं कि सुहाना सफ़र का विषय आज का बहुत काबिले तारीफ़ है। हम सुन रहे हैं हमारे यहाँ डुग्गी डॉग नाम का एक डॉग है, तेरी मेहरबानियाँ का गीत सुन मैंने उसे दूध दिया और गीत सुनते सुनते आंखों में आंसू आ गए। बहुत बहुत मुबारकबाद कार्यक्रम के लिए। साथ में बचपन में हम मुंबई में रहते थे, उस समय मैं करीब 4 साल का था और फिल्म हाथी मेरे साथी देखने के लिए मैं अपने माता पिता के साथ गया था। जब रामू हाथी को गोली लगती है और वो मर जाता है तो मैं ज़ोर ज़ोर से रोया था और कह रहा था कि रामू हाथी मर गया। सब मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे कि ये सिर्फ फिल्म है, रामू हाथी मरा नहीं है। तो साथियों, फिल्म दिल धड़कने दो में प्लूटो मेहरा नाम के डॉग के लिए एक अभिनेता ने अपनी आवाज़ डब की थी, बताइए उस हीरो का नाम। और साथ ही ये भी बताइए कि जानवरों के अधिकारों के बारे में क्या जानते हैं आप, ये भी बताइए कि जिम कॉर्बेट कौन थे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है और भारत में कितने नेशनल पार्क हैं। आवाज़ की दुनिया के मेरे दोस्तों, फिल्मों में जानवरों के रोल की बात हो और

नाग नागिन की बात ना हो ऐसा भला कैसे हो सकता है। बॉलीवुड में सस्पेंस और बदले के लिए सांपों का खूब इस्तेमाल हुआ। रीना रॉय और श्रीदेवी ने इच्छाधारी नागिन का रोल निभाकर बड़ा तहलका मचाया था। जंगल में शिकार के दौरान कुछ दोस्तों ने एक नाग को मार डाला था। कौन से अभिनेता थे उस नाग की भूमिका में और नागिन बनी रीना रॉय के साथी कलाकार कौन थे, सबकी जानकारी हमें दे दे। आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म नागिन से। आवाज़ें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार हैं वर्मा मलिक, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

सारे जवाब आपके मिल गए हमें, जितेंद्र, सुनील दत्त, रीना रॉय, योगिता बाली, रेखा मुमताज, फिरोज खान, विनोद मेहरा, संजय खान, कबीर बेदी और निर्देशक थे इस फिल्म के राजकुमार कोहली। कुछ सवाल हमने और पूछे थे कि तो मिला ये जवाब कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के पौड़ी नैनीताल उत्तराखंड में है और भारत में कुल 107 नेशनल पार्क हैं। फिल्म दिल धड़कने दो में प्लूटो मेहरा नाम के डॉग के लिए अपनी आवाज डब करने वाले अभिनेता का नाम है आमिर खान।

अब आपके कुछ कमेंट्स भी पढ़ देते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के पास 3 घोड़े थे जिनके नाम बादल, सारंगी और पवन थे। एक दोस्त ने हमें लिखकर भेजा है कि सर्कस बचपन में तो बहुत देखे हैं पर वहाँ जानवरों पर बहुत अत्याचार होते हैं इसलिए अब नहीं देखते। स्कूल का होमवर्क भले ही याद ना हो लेकिन आप शोले के बारे में कुछ भी पूछें तो सिर्फ डायलॉग ही नहीं, हम तो पूरी स्टोरी बता सकते हैं। अच्छा, और मेरे पास भी गोल्डन रिट्रीवर नस्ल का एक डॉग है जो मेरे पास ही सोता है और जब मैं ऑफिस से वापस हम आते हैं तो वो मेरे पास ही रहता है। एक दोस्त का ये मैसेज है कि मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, एक बार मेरे कार्य क्षेत्र में एक हाथी का बच्चा कीचड़ में फंस गया था। उसकी माँ उसे निकालने की बहुत कोशिश कर रही थी और चिल्ला भी रही थी लेकिन वो जब असफल रही उसके बाद उसने हमारे स्टाफ के लिए छोड़ दिया। उसके बाद हमारे फॉरेस्ट के स्टाफ ने हाथी के बच्चे को निकाला, उसके बाद उसकी माँ उस बच्चे को साथ में लेकर चली गई। क्या बात है।

साथियों, फिल्म जानी दुश्मन में एक इच्छाधारी नाग के बदले की कहानी दिखाई गई थी, जिसमें अरमान कोहली हीरो थे, और दूत का कर्ज एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो एक अनोखे सांप नागेश्वर और सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। नायक सूरज की भूमिका निभाने वाले अभिनेता का नाम लिख दीजिए। साथ ही फिल्म नाग नागिन में नज़र आए थे राजीव कपूर, नाचे नागिन गली गली में मीनाक्षी शेषाद्री, और शेष नाग में जितेंद्र और रेखा ने अहम भूमिका अदा की थी।

और अब बात होगी इस गाने की, जिसका नागिन डांस सभी शादियों में किया जाता है। एक इच्छाधारी नागिन खलनायक से अपना बदला लेना चाहती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब खलनायक घर आकर अपनी बीन बजाते हुए तांत्रिक शक्तियों से ये सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश करता है कि रजनी कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक नागिन है। अंत में नाटकीय संघर्ष होता है जिसमें बुराई का अंत और अच्छाई की जीत होती है। तो जल्दी से बताइए कि इस फिल्म में अमरीश पुरी का नाम क्या था, और ये भी बताइए कि क्या आप

नागिन डांस किया है ज़रूर बताइए। और इस फिल्म का पार्ट टू भी तो आया था, क्या नाम था उसका? और गीतकार हैं इस गीत के आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम तो आप जानते हैं।

फिल्म का नाम था नगीना और इस फिल्म में थे श्रीदेवी और ऋषि कपूर और खलनायक थे अमरीश पुरी जिनका नाम था भैरवनाथ और दूसरे फिल्म का नाम था निगाहें जिसमें नायक थे सनी देओल खलनायक थे अनुपम खेर। हमारे एक दोस्त ने लिखा है कि मेरा छोटा बेटा अभी तक हजारों सांपों जीव जंतुओं पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर चुका है और इन्होंने बहुत सारी फिल्मों के नाम लिखे हैं कि नाग नागिन नागमणि नाग पंचमी निगाहें नगीना नागिन पुरानी नागिन नई आई मिलन की रात नाचे नागिन गली गली दूध का कर्ज नाग देवी। ये तो पूरी लिस्ट दे दी आपने हमें। पहले के समय में अनेक तरह के जानवर लेकर मदारी आता था गली मोहल्ले में। वो तब तकरीबन बंद हो चुका है वन्य जीवन कानून के अनुसार। अब बंदर या किसी और जानवर का तमाशा करना अवैध है, अपराध है। नाग नागिन वाली फिल्मों के गीत सुनने में हमें आनंद तो बहुत आ रहा है मगर डर भी लग रहा है कहीं से कोई सांप ही ना निकल आए। अच्छा, विविध भारती के चाहने वालों, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर एकदम लाइव। फिल्म हम आपके हैं कौन में क्लाइमैक्स में सबसे बड़ा हीरो था टॉफी नाम का डॉग जो भगवान के सामने से चिट्ठी उठाकर सही इंसान तक पहुंचा देता है। तो टॉफी वो चिट्ठी किस अभिनेता को देता है उसका नाम बताएं, फिल्म के निर्देशक का नाम भी लिख दें। तब तक सुनते हैं ये गीत लता मंगेशकर SP बालसुब्रमण्यम और साथियों की आवाज़ों में। गीतकार हैं देव कोहली, संगीतकार हैं राम लक्ष्मण और ये भी तो बताइए कि हम आपके हैं कौन।

साथियों, आपके जवाब हमें मिले हैं कि सलमान खान, माधुरी दीक्षित निर्देशक थे इस फिल्म के, सूरज बरजातिया टॉफी जिनको चिट्ठी देता है वो अभिनेता थे मोहनीश बहल।

0: एक साथी ने लिखा है कि हम आपके हैं कौन इस पारिवारिक ब्लॉकबस्टर फिल्म में टॉफी नाम का प्यारा सा डॉग एक अहम किरदार में था, जो क्लाइमेक्स में एक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाकर फिल्म की कहानी को सुखद मोड़ देता है। साइंस कहता है कि सांप के कान नहीं होते, उसे सुनाई नहीं देता, फिर बीन का क्या रोल है। बिल्कुल सही बात कही आपने। और ये भी मैसेज मिला है कि आप हमारे हैं बहुत ही प्यारे उद्घोषक जी, धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी रोज़ाना घर पर जो खाना बनाती है उसमें से पहली रोटी हम गाय के लिए रखते हैं और आखिरी रोटी डॉग को देते हैं, ऐसा हम हमेशा करते हैं। दोस्तों, भीरू नाम की स्ट्रीट डॉग को बचाने के लिए बच्चों की गैंग बहुत संघर्ष करती है। भावुक कर देने वाली कहानी थी फिल्म चिल्लर पार्टी में। होली, अमिताभ बच्चन के इस फिल्म में अल्लाह रखा नाम का बाज मुख्य किरदार के साथ साई की तरह चलता है और दुश्मनों पर हमला कर हीरो की जान बचाता है। तो हीरो की माताजी की भूमिका निभाने वाली दिग्गज अभिनेत्री कौन थी और किसने उन्हें किडनैप कर लिया था, उस खलनायक का नाम बताएं। और इस वक्त हम आपको सुनवाएंगे फिल्म मर्द का गीत। इसमें एक घोड़ा और एक श्वान दोनों ही सहनायक की तरह थे जो अंग्रेज़ों से लड़ते थे। इस गीत में उन दोनों के नाम छुपे हैं, सुनकर बताएं क्या नाम है दोनों के। और गीत में आवाज़ मोहम्मद अजीज़ की, गीतकार हैं प्रयागराज, संगीतकार हैं अन्नू मलिक। फिल्म का नाम है मर्द।
1: जाको राखे साईयां मार सकें

मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला।

क्यों भाई बादल क्यों भाई मोदी मैं कहता हूँ मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला।

अपनी किस्मत हैरान है, माँ क्यों परेशान है, माँ अपनी किस्मत है।

0: भाई बादल क्यों भाई मोदी, मैं सच कहता हूँ मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला, तुझे दुश्मन क्या मारेगा।
1: साथियों, आपके जवाब हमें मिले हैं कि कुली में अमिताभ बच्चन की माताजी की भूमिका में नजर आई थी वहीदा रहमान, मुख्य खलनायक थे कादर खान। और इस गीत में जो जानवर नजर आए थे उनके नाम थे बादल और मोती। साथियों, कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ा जा रहा है। मैंने प्यार किया एक आइकॉनिक रोमांटिक फिल्म, प्रेम और सुमन की दोस्ती का एक उसूल था कि नो सॉरी नो थैंक यू। तो ये जो गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं, उस कबूतर का नाम बता दीजिए जल्दी से।

साथियों, आवाज़ थी लता मंगेशकर की, गीतकार थे असद भोपाली, संगीतकार थे राम लक्ष्मण, फिल्म का नाम था मैंने प्यार किया और उस कबूतर का नाम था हैंडसम। सुरीला सफ़र के बन के हम सफ़र, आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार, बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए, आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। आज की तरह कल भी तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफ़र, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ। कार्यक्रम सुरीला सफ़र अब समाप्त होता है।

0: श्रोताओं नमस्कार। भारत एक ऐसा देश है जहां तीन तरह के मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। इन मौसमों में अलग अलग तरह के व्यंजन पकाए और खाए जाते हैं। खाने पीने और पकवानों की बातों से ही हमारे मुंह में पानी आने लगता है। दरअसल इन पकवानों और व्यंजनों के साथ जुड़ी बहुत सी कहानियां और बहुत से लोकगीत भी हैं और दादी नानी के समय से चली आ रही रीति रिवाज भी। हमारे देश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को बेहतर जीवन के लिए खान पान के बारे में शिक्षित करना, उचित खान पान और संतुलित आहार के महत्व के बारे में जागरूक करना और कुपोषण को दूर करना है। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह आयोजन भारत सरकार के खाद्य एवं पोषण बोर्ड द्वारा 1982 से किया जा रहा है। संतुलित आहार लेकर किस तरह से बेहतर सेहत पाई जा सकती है? सही पौष्टिक आहार से बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की समस्या से निपटना, खान पान से होने वाली बीमारियों के प्रति सचेत करना, कुपोषण को दूर करने के लिए लोगों को जागरूक करना, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर जानकारी दी जाती है।
1: ये समझो और समझाओ।

साथियों, हमें कुछ बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। खाना बनाते समय साफ सफाई का ध्यान रखना सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इससे खाने में कीटाणु नहीं जाते और बीमारियां दूर रहती हैं। खाना बनाते समय हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं, बर्तन सिंक खाना पकाने की सतह को धोकर साफ रखें, छिलके और कचरा फेंकने के लिए कचरा पात्र रखें। खाना बनाते समय साफ और शुद्ध पानी का इस्तेमाल करना पेट की बीमारियों से बचाता है। भोजन को ढककर पकाना और उसे बार बार गर्म न करना पोषण को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है, जिससे समय और ईंधन की बचत होती है। बार बार गर्म करने पर भोजन के जरूरी पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं।

मौसम के अनुसार अपने स्थानीय इलाके में मिलने वाले फल और सब्जियों का सेवन करना सबसे बेहतरीन उपाय है। मौसम के अनुसार मिलने वाले फल सब्जियां सीजन के दौरान ये चीजें भारी मात्रा में उपलब्ध होने के कारण दाम भी कम होते हैं और लंबे समय तक ताजा रखने के लिए केमिकल को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। परिवार के साथ एक साथ बैठकर भोजन करने से सेहत बनती है और आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं। शांति से साथ बैठकर खाने से पाचन क्रिया अच्छी रहती है। परिवार के साथ खाने से रिश्तों में मजबूती, प्यार और अपनापन बढ़ता है। दिन भर की थकान मिटती है और मानसिक शांति मिलती है।

साथियों, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के सही खानपान पर विशेष ध्यान देकर हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह को सही तरीके से मना सकते हैं। आज की त्रिवेणी अब संपन्न होती है।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता की। दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री टेओ फ्रॉन्कन ने संवाद, उच्च स्तरीय यात्रा और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने एआई डेटा केंद्रों और वैश्विक क्षमता केंद्रों पर सरकार का दृष्टिकोण दोहराया। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ा और किदांबी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। भारत और बेल्जियम ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर क्राइम और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन और रक्षा सहयोग पर आशय पत्र सहित विभिन्न समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी

0: दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत और बेल्जियम के संबंध दीर्घकालिक हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में बेल्जियम में हजारों भारतीय सैनिकों का साहस और बलिदान दोनों देशों की साझा स्मृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वो 10 साल पहले बेल्जियम गए थे और पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच भागीदारी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
0: पिछले एक दशक हमारी साझेदारी ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आज हमारे सहयोग का दायरा ट्रेडिशनल सेक्टर से आगे बढ़कर डिफेंस और क्लीन एनर्जी जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। हम जोरावर टैंक जैसे आधुनिक रक्षा उपकरणों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हम दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट में से एक डेवलप कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला दोनों देशों की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा पर आज हुए समझौता ज्ञापन से सतत सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: रिन्यूएबल एनर्जी पर आज हुआ MOU हमारे सस्टेनेबिलिटी सहयोग को नई गति देगा। क्रिटिकल मिनरल्स में हमने प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। सेमीकंडक्टर्स में बेल्जियम की एक्सपर्टाइज और भारत का स्केल एक दूसरे के पूरक है। इस दिशा में हम बेल्जियम के IMEC इंस्टीट्यूट को भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए मिलकर काम करेंगे।
1: वार्ता में भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। इससे पहले बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने आज सुबह राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वो 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रेंकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही।
2: ये दौर गंभीर राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का रहा है। इन परिस्थितियों में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने उनका मजबूती से सामना किया। ऐसे समय में आपके जैसे मित्र और महत्वपूर्ण साझेदार से मुलाकात विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।
1: बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रेंकन ने भारत को घनी आबादी तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया। उन्होंने दोनों देशों के बीच मित्रता को और आगे ले जाने की भी बात कही।
3: भारत और बेल्जियम मित्रता साझेदारी के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। हम भारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बेल्जियम एक तकनीकी रूप से विकसित देश है और उन्नत तकनीक हमारे लिए खासकर यूरोप में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश के साथ भविष्य की परियोजनाओं में सहयोग हमारे लिए बेहद जरूरी है।
1: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग संवाद, उच्च स्तरीय यात्राओं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के जरिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रमुख क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा केंद्रों को बढ़ावा देना, वैश्विक क्षमता केंद्रों का समर्थन करना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना और बैंकों के निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करना शामिल है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने कहा है कि 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही है। ये दर्शाती है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। श्री क्वात्रा ने भारत सरकार और

0: देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नवाचार, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमतों के बल पर भारत में विश्व की नंबर एक ऑटोमोबाइल उद्योग बनने की क्षमता है। उन्होंने नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 66वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि देश की आर्थिक वृद्धि में इस उद्योग का योगदान लगातार बढ़ता रहेगा।
1: ऑटोमोबाइल उद्योग का कुल आकार करीब 22,75,000 करोड़ रुपए है। देश के कुल जीएसटी संग्रह में ऑटोमोबाइल उद्योग का योगदान लगभग 15% है। यह उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। वर्ष 2025-26 ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरान उद्योग के निर्यात में 24% की वृद्धि दर्ज की गई।
0: श्री गडकरी ने भारत नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम को एक बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि 11 कंपनियों के 30 से अधिक वाहन मॉडल पहले ही प्रमाणित हो चुके हैं। इस कार्यक्रम ने प्रशिक्षण लागत को काफी कम कर दिया है, साथ ही वैश्विक बाजारों में भारतीय वाहनों की विश्वसनीयता को भी मजबूत किया है। उन्होंने घोषणा की कि इस कार्यक्रम का दूसरा चरण अगले वर्ष अक्टूबर से प्रभावी होगा, जिसमें दुर्घटना से बचाव, पैदल यात्री सुरक्षा और दुर्घटना के बाद निकासी सहित उन्नत सुरक्षा मानक शामिल होंगे। श्री गडकरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए हाल ही में स्वच्छ परिवहन के लिए शुरू की गई परिवर्तन योजना के बारे में जानकारी दी। पंजाब में सरकारी शवगृहों में रखे अज्ञात और लावारिस मृतकों की पहचान के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक पहचान पोर्टल पहचान शुरू किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: ये देश में अपनी तरह का पहला पोर्टल है जो भारत और विदेश में रहने वाले लोगों को दुर्घटनाओं या अन्य कारणों से जान गंवाने वाले अपने प्रियजनों की पहचान करने में मदद करेगा। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अकेले पंजाब में लगभग 5 से 6 हजार मृतकों की पहचान नहीं हो पाती है। पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कल इस पोर्टल की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि पहचान पहल के अंतर्गत पंजाब के किसी भी सरकारी शवगृह में पोस्टमार्टम के 48 घंटे के भीतर प्रत्येक ज्ञात और लावारिस शव की चेहरे की तस्वीर, जन्म चिन्ह और शारीरिक विकृतियों जैसे चिन्हों के साथ उसका विस्तृत शारीरिक विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। राज्य के सभी 23 जिले और 346 सरकारी अस्पताल इस पोर्टल से जुड़े हुए हैं। जलंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। बिहार में पटना और कई अन्य जिलों में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इससे नए इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
4: आपदा प्रबंधन विभाग ने गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पटना के गांधी घाट पर आज रात और मोकामा के हाथीदह में कल दोपहर गंगा का जलस्तर उच्चतम बाढ़ स्तर को पार कर सकता है। भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद के नदी किनारे तथा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और जोखिम से बचने की अपील की गई है। आपात स्थिति में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के 1070 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: वहीं झारखंड में भी पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश के बाद कई हिस्सों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है।
5: रांची में गेतलसूर डैम के 4 रेडियल गेट खोले गए हैं, जबकि स्वर्णरेखा नदी के तेज बहाव को देखते हुए हुंडरू फॉल और नदी किनारे के इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जमशेदपुर में कल शाम मानगो पुल के पास स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर 121.26 मीटर दर्ज किया गया, जबकि आदित्यपुर पुल के पास खरकई नदी 129.76 मीटर पर बह रही थी। हालांकि मंगलवार की तुलना में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन खरकई नदी अब भी खतरे के निशान से 7-6 सेंटीमीटर ऊपर है। प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और किसी भी स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बाढ़ की स्थिति और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फर्रुखाबाद जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे

किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की और बाद में प्रभावित लोगों को जमीन के पट्टे और राहत सामग्री बांटे। इस बीच मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र, सिक्किम, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर बाद मिला जुला असर देखा गया। सेंसेक्स 19 अंक बढ़कर 76,590 पर और निफ्टी 6 अंक घटकर 23,908 पर पहुंच गया। और अब बात खेलों की। किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत का सामना हांगकांग के ली चेक ल्यू से होगा। उधर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच दुबई में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता की। दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रॉन्कन ने संवाद, उच्च स्तरीय यात्रा और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा। और किदांबी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नखमे। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है आप आए बहार आई।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है अनजाना।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है खिलौना।

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी,
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावेन इलवालरीवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं, और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडल

0: भेजते हैं। और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंडाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
1: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए सुनिए लता मंगेशकर को अगले गीत में। नगमा निगार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए आशा भोसले की आवाज में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है आए दिन बहार की।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश की आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और सरकार समय समय पर कर्मचारियों और पेंशनरों की देनदारियों को बिना किसी दबाव के अदा कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि सरकार ने 67 वर्ष से अधिक के पेंशनरों का एरियर जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों की सभी बकाया देनदारियों का भुगतान करेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के सभी पेंशनरों की देनदारियां अदा कर दी हैं और वर्ष 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त पेंशनरों के 55% देनदारी भी दे दी गई है।
2: 67 साल से ऊपर के सभी जो पेंशनर है उनका पेंशन का एरियर्स पूरा दे दिया गया है और क्लास 4 के जितने भी कर्मचारी है वो 58 साल से जो रिटायर हुए उनका पूरा पेंशन का एरियर दे दिया गया। 1/1/16 के बाद से 31/1/2022 तक का हमने क्लास ठीक तकरीबन 57% मतलब अप्रोक्सीमेटली इतना और क्लास 4 का पे एरियर का हमने 20,000 रुपया दिया। क्लास 1 और क्लास 2 का पेंशन एरियर है जो 1/1/16 के बाद का है तो हमने 15%। मैं किसी के दबाव में आके नहीं दूंगा, जैसे कि परिस्थितियों के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशन के अधिकारी जो भी है और जो पेंशन जिनका मिलना चाहिए हम सबको दे।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके राजस्व अर्जित किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा राहत के लिए 1500 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की थी लेकिन हिमाचल को अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज माल रोड शिमला स्थित सहकार सदन के नवीनीकरण कार्य का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। इस कार्य पर 2,85,00,000 रुपए खर्च होंगे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत इमारत की हर मंजिल को विशेष रूप से व्यवस्थित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकार भवन के नवीनीकरण का कार्य अगले वर्ष 15 जून तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बहुमंजिला इमारत का कायाकल्प कर इसे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और विधायक संजय अवस्थी व रामकुमार सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। शिमला में आयोजित हुए देश प्रदेश विधानसभा के 10 दिवसीय मॉनसून सत्र के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए 1908 विद्यार्थियों ने विधानसभा की कार्यवाही देखी। इस दौरान उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानी

0: से मुलाकात कर विधानसभा की कार्यप्रणाली व सत्र संचालन के बारे में जानकारी ली। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी छात्रों को विधानसभा की कार्यवाही की जानकारी देते हुए बताया कि हमारा देश व प्रदेश नियमानुसार लोकतांत्रिक प्रणाली से संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार चलता है। उन्होंने कहा कि आज के सभी युवा लोकतंत्र के प्रहरी हैं और इस देश की संसदीय प्रणाली को मजबूत करना युवाओं की जिम्मेदारी है। कुलदीप सिंह पठानिया ने सभी विद्यार्थियों से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने का आह्वान भी किया। 16वें वित्त आयोग के तहत पेयजल योजनाओं के लिए पंचायतों को मिलने वाली धनराशि जल शक्ति विभाग को ट्रांसफर करने के प्रदेश सरकार के आदेशों का सिरमौर जिला के नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों ने विरोध किया है। पांवटा साहिब विकास खंड की 22 पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने आज प्रधान संघ के बैनर तले नाहन में उपायुक्त के साथ बैठक कर चर्चा की। प्रधान संघ पांवटा साहिब के अध्यक्ष रणबीर सिंह ने बताया कि पंचायतों में पेयजल योजनाओं के लिए मिलने वाली राशि का पैसा जल शक्ति विभाग को देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले का पंचायतों के विकास कार्यों पर असर पड़ रहा है।
1: जो हमने आज अपनी पांवटा संघ की जो डिमांड रखी है, जो हमारी प्रधानों को समस्याएं आ रही है, ऐसे पंचायतों में सेक्रेटरी का एक या दो दिन होना, क्योंकि पंचायतें ज्यादा हैं, सेक्रेटरीज कम है, जीआरएस कम है, तो उसकी वजह से हमने डीसी मैडम के पास अपनी समस्याएं रखी है। दूसरा है जो हमारा आईपीएच का 16 वित्त का पैसा है, तो उसमें हमारे को आदेश हुआ है 25% पैसा अपने आईपीएच को देना है। तो इस बार क्या हमने सभी प्रधान संघ पांवटा से प्रधानों का एक ही निर्णय है कि जो ये पैसा है हम तब तक नहीं देंगे जब तक पिछला संविधान नहीं होगा।
0: प्रधान संघ ने मॉनसून की बारिश के दौरान पंचायतों में बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी जिला उपायुक्त से बजट उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
2: मनीष सूद, वाचक स्वर है राकेश शर्मा का।
0: मंडी शहर में जलापूर्ति व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। जल शक्ति विभाग इस माह हिम जलदूत मंडी मोबाइल ऐप लॉन्च करेगा। इसके माध्यम से नगर निगम मंडी के 13 वार्डों के करीब 10,900 उपभोक्ता सीधे डिजिटल व्यवस्था से जुड़ेंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि ऐप का उद्देश्य केवल ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करना नहीं, बल्कि जलापूर्ति व्यवस्था को पारदर्शी, जवाबदेह और उपभोक्ता केंद्रित बनाना है। इस ऐप के माध्यम से उपभोक्ता अपने क्षेत्र में पानी की सप्लाई का शेड्यूल देख सकेंगे, साथ ही पानी की गुणवत्ता का लाइव स्टेटस, क्लोरीन, पीएच और टर्बिडिटी की जानकारी भी उपलब्ध होगी। पाइपलाइन में लीकेज या सीवरेज की समस्या होने पर लोग फोटो और जियो टैग लोकेशन के साथ शिकायत दर्ज कर सकेंगे और शिकायत की स्थिति भी ऑनलाइन देख सकेंगे। जल रक्षकों, स्लूस वॉल्व, जल स्रोतों और टैंकों की भी डिजिटल निगरानी की जाएगी। ढांगसीधार और कांगनीधार जल स्रोतों सहित मंडी के करीब 20 टैंकों को इस डिजिटल प्रणाली से जोड़ा गया है। आम नागरिक सार्वजनिक स्थानों पर पानी की बर्बादी, लीकेज और सीवरेज से जुड़ी समस्याओं की सूचना भी ऐप के माध्यम से दे सकेंगे। स्वच्छता और नशा मुक्ति का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन ने जमीनी स्तर पर अभियान तेज किया है। सुंदरनगर के SDM अमर नेगी ने स्वच्छ हवा और नशा मुक्त सुंदरनगर अभियान के तहत शहर की स्लम बस्तियों का दौरा किया और स्थानीय लोगों से सीधा संवाद किया। उन्होंने लोगों को स्वच्छता बनाए रखने तथा नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया। SDM ने बस्तियों में स्थानीय लोगों और मकान मालिकों से बातचीत कर स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लिया। मकान मालिकों को अपने परिसरों और आसपास नियमित साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वच्छता व्यवस्था में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छ, स्वस्थ और नशा मुक्त सुंदरनगर का लक्ष्य केवल प्रशासनिक प्रयासों से हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए समाज के प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने का भी आह्वान किया। अभियान का उद्देश्य सुंदरनगर की प्रत्येक बस्ती तक स्वच्छता और नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाना है। करसोग उपमंडल के दूरदराज क्षेत्रों में लोगों को घर द्वार के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत सराहन में स्वास्थ्य विभाग की ओर से शिविर लगाया गया। शिविर में 82 लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर के दौरान 80 लोगों के एक्सरे किए गए, जबकि 77 लोगों की बीपी और शुगर की जाँच की।

0: इसके अलावा 45 लोगों के एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और सिफिलिस के परीक्षण किए गए। विभाग की टीम ने लोगों की जांच के साथ उन्हें आवश्यक परामर्श और दवाइयां भी उपलब्ध करवाई। बीएमओ करसोग डॉक्टर गोपाल चौहान ने बताया कि दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए ऐसे शिविर नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि अगला आयुष्मान आरोग्य शिविर तेबन में लगाया जाएगा। शिविर में चिकित्सकों के साथ स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, काउंसलर, रेडियोग्राफर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और आशा कार्यकर्ताओं ने सेवाएं प्रदान की। मंडी के किंडर क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में 133 इकोलॉजिकल टास्क फोर्स ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। टास्क फोर्स ने किंडर क्षेत्र में 90 हेक्टेयर दुर्गम और बंजर भूमि पर वृक्षारोपण कार्य पूरा किया। इससे क्षेत्र को धीरे धीरे हरित क्षेत्र में परिवर्तित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसी अवसर पर किंडर तालाब के पुनरुद्धार और स्वास्थ्य की स्वच्छता के सामुदायिक पहल भी की गई। 133 इकोलॉजिकल टास्क फोर्स के जवानों ने वन विभाग के प्रतिनिधियों, ग्राम पंचायत के प्रधानों और सदस्यों तथा स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर तालाब की सफाई और पुनरुद्धार का कार्य किया। इस पहल का उद्देश्य जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के साथ साथ स्थानीय लोगों में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी और भागीदारी की भावना को मजबूत करना है। सुंदरनगर में स्वयं सहायता समूह को मजबूत बनाने और उनके बेहतर संचालन के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कृषक प्रशिक्षण केंद्र सुंदरनगर ने जायका परियोजना की जिला इकाई हमीरपुर के सौजन्य से आयोजित इस प्रशिक्षण में बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिलों के 36 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। स्वयं सहायता समूह में भूमिका और जिम्मेदारियां विषय पर आयोजित प्रशिक्षण शिविर में विशेषज्ञों ने समूहों के गठन और संचालन, बचत बैंक खाता प्रबंधन, नेतृत्व विकास, क्षमता निर्माण और विवाद समाधान जैसे विषयों पर जानकारी दी। समूह बैठकों के आयोजन, आवश्यक दस्तावेजों के रखरखाव, पारदर्शिता, आपसी विश्वास और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया पर भी विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम के समापन पर कृषक प्रशिक्षण केंद्र के उप प्रधानाचार्य डॉक्टर जगदीश कुमार जनसेना ने प्रशिक्षुओं से संवाद किया और प्रशिक्षण से उन्हें मिले लाभों की जानकारी ली। इसके साथ ही मंडी जिला की चिट्ठी संपन्न हुई। नमस्कार।
1: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

0: बहुत सुंदर गीत हमने सुनवाए हैं अपने श्रोताओं को आरती
1: जी, बिल्कुल बहुत ही अच्छा गीत था।
0: हाँ, और संगीत भी कहते हैं कि वैसा ही काम करता है जैसा कि आपके जीवन में
1: बिल्कुल खाना हो या दवाई हो क्योंकि हम खाने की बात कर रहे हैं, इसलिए आज मैं बात-बात में आपको कह रही होंगी ना खाने की बात।
0: हाँ, खाना बहुत याद आ रहा है आज और मुझे तुम्हारा पोहा भी याद आ रहा है जिसमें तुम दुनिया भर की अंकुर दालें डाल के खा जाती हो चुपचाप से, और वो राज तुमने आज खुला है हमारी सखियों से
1: बना के लाऊंगी आपके लिए।
0: चलिए देखते हैं। तो बात चल रही थी पोषण की, पोषण सप्ताह भी चल रहा है और पोषण पर हम कितना ध्यान दे पाते हैं अपने जीवन में। अभी हमने कहा कि घर के जो, वैसे तो सभी सदस्यों को अच्छा पोषण लेना चाहिए, लेकिन खास तौर से जो नवजात शिशु हैं या बच्चे हैं, बढ़ते हुए बच्चे हैं, और हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए पोषण कैसा हो, आज विशेष रूप से हम वृद्धावस्था और पोषण पर बातचीत करना चाहते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो जहाँ अनुभवों की एक दौलत होती है ना, वो कौन सी उम्र होती है ना, वो एक जो उम्र हम वहाँ पहुँच जाते हैं ना, तो अनुभवों की उम्र होती है, उसको वृद्धावस्था कहते हैं। तो कहा जाता है कि उम्र का बढ़ना जीवन की एक प्रक्रिया है, लेकिन स्वस्थ रहना हमारी सजगता और सावधानी का परिणाम होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ना, तो शरीर में कई सारे प्राकृतिक परिवर्तन भी आने लगते हैं जो कि जो आते ही हैं हमेशा। तो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता भी बदल सकती है और मांसपेशियों की ताकत भी कम हो सकती है और पाचन और भूख में भी बदलाव महसूस हो सकता है। इसलिए इस उम्र में भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा आरती कि संतुलित और जो पौष्टिक आहार है वो हमारे बुजुर्गों को सक्रिय रहने और शरीर की ताकत बनाए रखने और दैनिक जीवन को बेहतर ढंग से जीने में मदद भी करता है। और इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि भोजन में क्या शामिल हो, जैसे शरीर की मांसपेशियों और ताकत के लिए प्रोटीन।

0: महत्वपूर्ण है। तो जब गृहिणी भोजन बनाए तो उसे पता होना चाहिए कि हमारे घर के भोजन में दालें हो, दूध हो, दही हो, पनीर हो, और जो नॉनवेज खाते हैं, मान लीजिए अंडा खाने का भी आपकी आदत हो अंडा खाना, तो आप इसको भी हिस्सा बना सकते हैं। और इसके अलावा फल है, सब्जियां हैं अच्छी मात्रा में, आप खा सकते हैं रंग बिरंगे फल सब्जियाँ। ये जो है भोजन को पौष्टिक बनाते हैं और इनमें कई पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे घर के वृद्ध हों, वो नानुकुर भी करते हैं, मुझे ये पसंद नहीं है, ये मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा नहीं है, उन्हें समझाना है कि साबुत अनाज और रेशेदार भोजन वृद्धावस्था में आपके पाचन को बेहतर बनाता है, और इसमें जो हड्डियों का आपका जो स्वास्थ्य है वो भी खास अच्छा हो जाता है। दूध है, दही है, ये खाद्य पदार्थ आहार का हिस्सा बनाए जाने चाहिए।
1: बिल्कुल, और किसी विषय जो कोई विशेष जो पोषक तत्व होता है कि उसकी आवश्यकता जो होती है हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के हिसाब से अलग अलग होती है। किसी के अंदर किसी की चीज़ की कमी हो सकती है, किसी के अंदर किसी चीज़ की कमी हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: तो इसलिए डॉक्टर या योग्य पोषण विशेषज्ञ की सलाह लेना भी बहुत ज़रूरी होता है कि क्या हम खाएं कि वो उससे उसके ज़रिए हमारी जो पोषण आवश्यकता है वो पूरी हो सके। तो इसके साथ अक्सर ये भी देखते हैं कि बुज़ुर्ग जो है वो पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी भूल जाते हैं, और शरीर को तरल पदार्थों की आवश्यकता होती ही है। इसलिए दिन भर उचित मात्रा में पानी और अन्य स्वास्थ्य के जो तरल पदार्थ होते हैं, जैसे कि जूस हो गया, तरह तरह के फलों के, तो वो लेना भी बहुत जरूरी होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और वृद्धावस्था में स्वास्थ्य बेहतर बनाकर कहते हैं कि उम्र को भी आप मात दे सकते हैं, है ना। कई बार हम देखते हैं ना, कुछ लोग बड़ी उम्र के होते हैं लेकिन कहते
1: हैं
0: पता ही नहीं चलता है। एक एड भी आया करता था, है ना, इतने साल के बुजुर्ग या जवान। हाँ। तो मतलब लगता था कि अरे इतने बुजुर्ग आदमी भी जवान की तरह दौड़ते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये आप अपने भोजन पर ध्यान रखकर कर सकते हैं। संतुलित भोजन लें, भोजन बिल्कुल ताजा और साफ सुथरा होना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें कि बहुत अधिक नमक है, कई बार ऊपर से नमक डालने की जो हमारी गंदी आदत है ना, उससे हमें बचना चाहिए। बहुत मीठी चाय चीनी डाल
1: एकदम, कुछ लोग एकदम
0: शरबत पी रहे हैं जैसे, है ना, वो कैसे पीते हैं पता नहीं। और अत्यधिक जो तले भुने खाद्य पदार्थ हैं उनका भी सेवन हर बार नहीं करना चाहिए। कभी कभार आपकी इच्छा हो गई एक अलग बात है।
1: और इसके साथ साथ भोजन को व्यक्ति की चबाने और पाचन की क्षमता के अनुसार ही तैयार करना जरूरी है। जो भी भोजन बना रहा है ना, या आप खुद भी बना रहे हैं तो अपने हिसाब से उस हिसाब से आप भोजन को बनाएं। जैसे कि दांतों की समस्या होने पर नरम और पौष्टिक भोजन को ही चुनना चाहिए, और भोजन का समय नियमित रखने की बहुत कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि भोजन का अनुशासन जो होता है वो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालता है।
0: बिल्कुल, आप अगर एक समय निश्चित कर लेते हैं तो शरीर उसी हिसाब से आपको रिप्रेजेंट भी करता है कि किस तरह से शरीर वो आपको संकेत दे देता है कि भोजन का वक्त हो गया, भोजन कर लेना।
1: बिल्कुल, आपके पेट में गुड़गुड़ होने
0: लग जाती है, और कई बार पता हम देर कर देते हैं तो फिर कई और दूसरी सिम्टम्स हमें परेशान करते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि समय पर खाना नहीं मिलेगा तो हमें एसिडिटी हो जाएगी,
1: या सिर में दर्द हो जाएगा,
0: तो समय समय पर आप भोजन लें, और साथ में ये भी ध्यान रखें कि अच्छे भोजन के साथ हल्की शारीरिक जो एक्सरसाइज है, वो गतिविधि है जिसे हम कहते हैं, वो भी आप करते रहें अपने स्वास्थ्य के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से। टहले, है ना, दिनचर्या का आपकी हिस्सा होना चाहिए टहलना। हाँ, किसी नई व्यायाम योजना को शुरू करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
1: बिल्कुल, और वृद्धावस्था कमजोरी का नहीं बल्कि अनुभव, समझ और जीवन की उपलब्धियों का समय होता है। सही पोषण, नियमित दिनचर्या, पर्याप्त पानी, उचित गतिविधि और परिवार का स्नेह, ये सभी मिलकर जीवन को अधिक स्वस्थ और सुखद बना सकते हैं। इसलिए याद रखिए कि स्वस्थ भोजन शरीर को शक्ति देता है और अपनों का प्यार जीवन में ऊर्जा भर देता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और एक बात जो अभी आपने कही ना कि दांतों की जो समस्या एक उम्र के बाद शुरू हो जाती है, तो जो घर में खाना बनाने वाली हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से अपने घर के बुजुर्गों को वो खाना दें। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने खाना तो रख दिया लेकिन उन्हें चबाने में बहुत टाइम लग जा रहा है। कई बुजुर्ग हमने देखे घंटों खाते हैं उस खाने को, ठंडा हो जाता है खाना, बेस्वाद हो जाता है क्योंकि वो चबा नहीं पाते। तो ऐसे समय में आप ध्यान रखिए, उसको रोटी है तो चूर के दें, चावल है, दाल चावल है, दलिया है, खिचड़ी है, ऐसा दें ताकि जो बुजुर्ग है वो उसे आराम से खा सके।
1: बिल्कुल,
0: थोड़ी सी रोटी अगर बना के रख दिया
1: और गर्म रहेगी रोटी तो कड़ी नहीं होगी,
0: और आपने फटाफट रख दिया कि मैंने तो अपना खाना पूरा दे दिया है, अभी खाएंगे। जब वो खाते खाते खाते खाते घंटों बीत जाते हैं क्योंकि उनके दांत काम नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है
1: जी।
0: और सबसे बड़ी बात है जैसे कि प्रोटीन युक्त जो दूध है, दही है, पनीर है, दालें हैं, अंकुरित है, अनाज जो है, अंडा है, आप ले सकते हैं। हरी सब्जियां हैं, फल है, विटामिन और मिनरल्स के लिए आप ये ले। साबुत अनाज जैसा कि रोटी खा सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, ओट्स का दलिया आप खिला सकते हैं। पानी तो आपने भी बताया कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है, समय समय पर बुजुर्गों को याद दिलाते रहे। और कैल्शियम और विटामिन डी ये भी जरूरी है हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए। और कम नमक की बात आपने बताई, और सबसे बड़ी बात कम चीनी, और हो सकता है तो चीनी छोड़ ही देना एक समय बाद। क्या जरूरत है चाय में चीनी डालने की या बहुत ज्यादा मीठा खाने की, क्योंकि आपका जो ब्लड प्रेशर है और आपकी जो शुगर है वो नियंत्रित रहेगी। तो जो बुजुर्ग हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में आसानी से पचने वाला संतुलित भोजन उन्हें करवाना चाहिए, क्योंकि वो खुद तो नहीं कर सकते ना अगर ज्यादा बुजुर्ग हो गए हैं तो। घर में जो भी गृहिणी है या बाल बच्चे हैं वो ध्यान रखें घर के बुजुर्गों का, और समय समय पर उन्हें गर्म भोजन दें और स्वच्छ भोजन दें।
1: बिल्कुल। और इसी बात को लेकर हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भेजा भी हमें लिखकर। तो एक हमारे श्रोता हैं जो कहते हैं कि वृद्धावस्था में सुपाच्य स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना चाहिए, फल और सब्जी अधिक खाने चाहिए, तले भुने भारी भोजन नहीं करने चाहिए, सूखे मेवे कद्दू के बीज रात भर पानी में भिगोकर सुबह नाश्ते में लेने चाहिए।
0: और क्या लिखा है, कुछ और भी लिखा है?
1: हाँ बिल्कुल, लिखा है कि मैंने आज अंकुरित, हाँ उन्होंने अपना खुद का लिखा है कि मैंने आज अंकुरित मूंग और चने को पीस कर उसके चीले बनाए, बहुत बढ़िया। फिर तो ऐसे भी सीनियर्स को अंकुरित अनाज थोड़ा उबाल कर खाना चाहिए, उसमें कुछ भुने हुए सीड्स दो होते हैं और हल्के से चाट मसाला या नींबू का प्रयोग करें। प्रोटीन को पचाने के लिए कुछ रसेदार जो सिट्रिक जो फल होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं, तो उनको आप उनका सेवन करें। तो इन्होंने इतना अच्छा चीला बनाया भाई,
0: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल हमें प्रयोग करते रहने चाहिए ताकि घर के बुजुर्ग स्वस्थ रहे और दूसरे जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनके लिए भी आप बनाए।
1: बिल्कुल,
0: है ना, चूंकि बात वृद्धावस्था की चल रही है इसलिए उनको खास ध्यान दिया जा रहा है कि वृद्धावस्था में पोषण का कितना बड़ा योगदान है। एक श्रोता लिखते हैं कि वृद्धावस्था और पोषण बहुत बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। बूढ़ा होने पर भूख और ऊर्जा कम होने लगती है, इसलिए कुछ नया खाने की इच्छा होती है। इस सब्जेक्ट से पहले कविता सुनाना चाहता हूँ। वो यारों की हंसी ठिठोलियाँ, वहाँ नेताजी का बुत लग गया, देखो विकास सब चर गया, चौमासे बरसाती नदी वहाँ बन गया, नदी अब बन गई नाला, नाले भी हो गया गड़बड़ झाला। कुछ कविता लिखने की कोशिश की है और लिखते हैं कि हमारे दादी के घर वहाँ सब्जी रोटी और घी साथ होता है, मतलब कि घी से सनी रोटी हम खाते हैं सब्जी के साथ।
1: अच्छा, ये भी अच्छी चीज है, घी खाना ही चाहिए। सोचने लोग कि ना घी खाने से मोटे हो जाएंगे, नहीं, आप घी खाइए उससे आपकी हड्डियां मजबूत बनती हैं।
0: हाँ, लेकिन घी हरे, वही बात होती है कि आपका शरीर क्या कहता है, अपने शरीर के संकेतों को ध्यान में रखिए कि घी पचता भी है कि नहीं।
1: हाँ बिल्कुल, हल्का फुल्का ही खाए, बहुत ज्यादा नहीं
0: हिसाब से। और एक श्रोता लिखते हैं कि वृद्धावस्था जीवन का वो चरण है जब व्यक्ति उम्र के अंतिम पड़ाव में प्रवेश करता है। इस अवस्था में बुजुर्गों को परिवार के प्यार, सम्मान, देखभाल और सहयोग की आवश्यकता होती है। उनका अनुभव और जीवन की सीख समाज के लिए बहुत मूल्यवान होती है। हमें हमेशा अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनकी जरूरतों का ध्यान भी रखना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये उम्र ही ऐसी होती है जब व्यक्ति को पर्याप्त पोषण की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है कि उनके खाने में सभी प्रकार की दालें, चावल, प्रोटीन से युक्त चीजें और कैल्शियम की कमी उनको न होने पाए। इसके लिए दूध वगैरह ये सब जरूर शामिल करें उनके खानों में, और ध्यान रहे कि उन्हें ऐसी चीज दें जो उनको सूट करती हो। ये चीज बहुत ध्यान रखने योग्य है कि इस उम्र में कुछ भी खिला देना बुजुर्गों को सूट नहीं करता है, इसलिए कोई भी ऐसा खाना ना दे जो उनके सेहत से खिलवाड़ करे।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि कुछ अच्छा, कुछ टेस्टी वैरायटी खाना हफ्ते में एक बार ठीक रहता है, और सप्ताह में एक दिन सिर्फ दूध, फल, फ्रूट खाना अच्छा होता है। नमक और चीनी फ्रूट वाले दिन परहेज करनी चाहिए, और मैंने करके देखा है तो लग रहा है कि ये सेहत के लिए ठीक है। सेहत ठीक रहे तो दुनिया अच्छी लगती रहेगी। बचपन के मजे, ये सब बातें इन्होंने लिखी हैं।
0: ये बात तो सही कहा इन्होंने, अगर सेहत ठीक है ना आरती,
1: सब कुछ अच्छा लगता है,
0: सब कुछ अच्छा लगता है। अगर सेहत सही नहीं होती ना तो सब कुछ अच्छा होते हुए भी सब बेकार लगता है।
1: बिल्कुल। और अभी एक गीत सुन ले तो और अच्छा लगेगा,
0: हमारी सेहत और अच्छी हो जाएगी।
1: बिल्कुल।

0: हाँ तो आरती, जब हम स्वस्थ होते हैं ना तो ऐसा ही लगता है ये जमी गा रही होती है, आसमान गा रहा होता
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: हर जगह संगीत सुनाई
0: देता है। बिल्कुल सही कहा।
1: और आज हम बात करने जा रहे हैं किनकी, नीदुमोलु सुमति की, जो कि कला क्षेत्र में उन्होंने अपनी बहुत अच्छी पहचान बनाई है। तो पद्मश्री के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं इनकी। तो आज हम बात कर रहे हैं नीदुमोलु सुमति की, जिन्हें दंडामुड़ी सुमति के नाम से भी जाना जाता है। भारत की प्रसिद्ध मृदंगम वादिका और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की वो बहुत बड़ी कलाकार
0: हैं।
1: और वो भारत की शुरुआती महिला मृदंगम वादकों में गिनी जाती हैं।
0: क्या बात है।
1: और लय विन्यास की पहली महिला कलाकार के रूप में भी उनका उल्लेख है। और इनका जन्म हुआ था 16 अक्टूबर 1950 को आंध्र प्रदेश के एलुरु में।
0: सबसे बड़ी बात, और देखिए ना मृदंग बजाना, अरे बड़ा मुश्किल काम है। ज्यादातर हमने पुरुषों को ही देखा है, है ना, लेकिन महिलाओं ने भी बहुत जगह अपने जो है कदम रख दिए हैं।
1: बहुत ताकत लगती है, बहुत ज्यादा उसके अंदर कैसे मृदंग बजाते हैं।
0: गजब गजब। तो जब नीदुमोलु सुमति को हम सुनते हैं तो सुनते ही रह जाते हैं। और पता चला कि इनके जो माता पिता है, नीदुमोलु राघवैया और नीदुमोलु वेंकट रत्नम्मा, इनके माता पिता है। और उनके पिता स्वयं मृदंगम के विद्वान थे। उन्होंने सुमति की संगीत प्रतिभा को बचपन से प्रोत्साहित किया और सुमति ने 6 वर्ष की उम्र में मृदंगम सीखना शुरू कर दिया था।
1: बहुत बढ़िया।

0: उनके पिता उन्हें संगीत कार्यक्रमों में ले जाते थे, जिससे उन्हें मंच और शास्त्रीय संगीत की दुनिया को करीब से समझने का भी मौका मिला।
1: बिल्कुल, और लगभग 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया। सुमति ने मृदंगम में प्रमाण पत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी पूरा किया और 1964 के बाद उन्होंने प्रसिद्ध मृदंगम कलाकार दंडामुड़ी राममोहन राव से प्रशिक्षण लिया और राममोहन राव आगे चलकर उनके गुरु के साथ साथ उनके जीवन साथी भी बने। अपने गुरु से उन्होंने मृदंगम की जटिल तकनीकों, लय, ताल और प्रस्तुति की बारीकियों को बहुत अच्छी तरीके से सीखा।
0: बिल्कुल सही कहा। और लगातार जब अभ्यास के कारण वे धीरे धीरे संगत कलाकार से स्वतंत्र और एकल प्रस्तोता के रूप में स्थापित हो गई। निदुमोलु सुमति की यात्रा जो है केवल एक सफल संगीतकार की कहानी मात्र नहीं है आरती, उन्होंने ऐसे समय में मृदंगम को पेशेवर के रूप में अपनाया जब इस क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बहुत कम थी। उन्होंने निरंतर अभ्यास, अनुशासन और प्रतिभा के बल पर यह साबित किया कि कला में सफलता का आधार साधना, समर्पण और योग्यता है।
1: बिल्कुल, उनकी उपलब्धियों ने मृदंगम जैसे पारंपरिक वाद्य के प्रति नई पीढ़ी की रुचि बढ़ाने और महिला कलाकारों के लिए रास्ते खोलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मृदंगम पारंपरिक रूप से पुरुष कलाकारों का प्रमुख क्षेत्र माना जाता रहा है। ऐसे वातावरण में भी सुमति ने अपने प्रतिभा और निरंतर साधना से अलग पहचान बनाई। उनके वादन में ताल की सटीकता, लय की जटिलता और प्रस्तुति का संतुलन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा।
0: बिल्कुल सही कहा। और अपने लंबे संगीत जीवन में सुमति ने अनेक प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय संगीत कलाकारों के साथ मृदंगम पर संगत भी की, जैसे एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, महान गायिका सुभा लक्ष्मी, डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण, जोशी, चिट्टी बाबू, एन रमणी और यू श्रीनिवास जैसे प्रमुख नाम जो है हम शामिल करते हैं। और इससे उन्हें देश के प्रमुख संगीत मंचों पर अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर मिला। साथ ही मृदंगम वादन से उनकी प्रतिष्ठा जो है वो भी बहुत ही मजबूत हुई।
1: बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, अभी हम लोग का समय हो रहा है एक अंतराल का,
0: और ले दी एक अंतराल
1: फिर बात।

0: इस अंतराल के बाद सभी हमारी सखियों और सखाओं का स्वागत है। तो बात चल रही थी मृदंगम की।
1: बिल्कुल, और हम बात कर रहे थे सुमति जी की, जो मतलब उनकी मृदंग को सुनकर ना ऐसा लगता है कि सारे दिमाग के पूरे शरीर के तार एकदम झनझना उठे।
0: मैं तो पता है उनके बारे में बात करते करते खो भी गई हूँ। मुझे लग रहा है कि उन्हें सामने मृदंग बजाते हुए देख रही हूँ। इतना मतलब गहरा उनका अभ्यास जब देखा और पढ़ा तो लगता है कि कितना कलाकार खुद को मानता है, तब जाकर वो एक अच्छा
1: एक तपस्या ही तो है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और सुमति ने वर्ष 2000 में लय वेदिका नामक संस्था की स्थापना की। उनकी इस संस्था का उद्देश्य मृदंगम और ताल प्रधान संगीत को प्रोत्साहित करना था। संस्था के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिताएं और संगीत संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए गए और प्रतिभाशाली कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। इस पहल से उनकी भूमिका भारतीय ताल परंपरा के संरक्षण और नई पीढ़ी को प्रेरित करने वाली मार्गदर्शक की बन गई।
0: बिल्कुल। और वर्ष 2015 में सुमति ने सता मृदंगा वाद्य निवाली नामक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें लगभग 100 मृदंगम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर उनके गुरु और जीवन साथी दड़ामुड़ी राममोहन राव को श्रद्धांजलि दी। और ये कार्यक्रम उनके संगीत जीवन की उल्लेखनीय पहलों में गिना जाता है। सुमति को उनकी कला के लिए कई सम्मानजनक उपाधियों से भी संबोधित किया गया है।
1: बिल्कुल, उनकी उपाधियों की बात करें तो मृदंग शिरोमणि, मृदंग महारानी, नाद भागीरथ, मृदंगालय विद्यासागर, मृदंग विन्यास, कला भारती और नादलय साम्राज्ञी जैसी उपाधियां शामिल हैं। निदुमोलु समिति को उनके लंबे संगीत सफर में अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें

0: मद्रास म्यूजिक एकेडमी का बेस्ट मृदंगिस्ट अवार्ड पालानी सुब्रमण्या पिल्लई मेमोरियल पुरस्कार उनको मिला और बहुत सारे पुरस्कार उनको मिले।
1: बिल्कुल, और इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी चेन्नई का बेस्ट मृदंगिस्ट अवार्ड, बेस्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया अवार्ड, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, उगादी पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार का, पालानी सुब्रमण्या पिल्लई मेमोरियल अवार्ड, और वर्ष 2021 में भारत सरकार ने निदुमोलु सुमति को पद्मश्री से सम्मानित भी किया।
0: वो है भी इतने सारे इन पुरस्कारों के को बहुत ज्यादा उनके मिलने भी चाहिए, इतना उनका जो पूरा व्यक्तित्व है ना, पूरा व्यक्तित्व प्रेरणादायक है।
1: बिल्कुल, ऐसी महान कलाकार को हम सैल्यूट करते हैं।
0: बिल्कुल।

0: संगीत ने जो है झूमने पर मजबूर हाँ। कर दिया।
1: बहुत प्यारा गीत है ना। और हाँ। साथ ही आज हम बात करने वाले हैं अपने बचपन की तरफ थोड़ा सा जाने वाले हैं, है ना। और हम
0: बचपन की तरफ जाने वाले हैं। अभी कार्यक्रम शुरू हुआ तब से हम बचपन की तरफ।

0: जाते थे उस
1: हाँ
0: बाल मनपिन, और ये ऐसा नहीं करते, फिर बड़ों के हम
1: हाँ
0: भी वही बात आगे कहते रहे। तो ये बचपन में हमें जिस तरह से समझाया गया, डराया गया, सो जाओ नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, तो हम बचपन में
1: हाँ
0: समझते थे सचमुच गब्बर सिंह आने वाला है,
1: हाँ बिल्कुल, कोई ना कोई आए पकड़ लेगा अगर हम
0: पकड़
1: सोए नहीं
0: लेगा,
1: तो
0: है ना। तो सब चीजें हमें बताई जाती थी, कही जाती थी, जिसे हमारे मन में हम अंकित कर लेते थे, बाल मन था हमारा। तो वो अब जब बड़े हो गए हैं तो हमें हंसी आती है कि अरे हम
1: बिल्कुल।
0: कैसे किया करते थे। तो क्या लिखते हैं श्रोता?
1: तो एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि बचपन में ऐसा था कि बहुत भोला बहुत होता है बचपन, किसी भी बात पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। जब हम भाई बहन छोटे थे तो थूजा के पेड़ की पत्तियों को, जिसे हम लोग विद्या का पेड़ भी कहते थे, अपनी किताब में रख लेते थे, क्योंकि उससे विद्या आ जाती है, ऐसा हम लोगों
0: हाँ
1: को अंधविश्वास था। और जिस विषय में ज़्यादा डर लगता था उसमें खूब सारी पत्तियाँ रख लेते थे कि अब कितनी विद्या है ये तो पता नहीं, मतलब पत्तियाँ रख लेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे उसमें
0: पढ़ाई नहीं करके भी
1: कि
0: हम
1: वो
0: पास हो
1: विद्या आ जाएगी
0: जाएंगे।
1: हमारे
0: हाँ,
1: अंदर।
0: हर पेज के अंदर मोर पंख भी हम रखा करते थे बचपन में। सहेलियां देखती थी किसकी किताब में कितने मोर पंख हैं,
1: बिल्कुल।
0: कॉपियों में कितने मोर पंख हैं ना। और कई बार पेड़ जो पत्तियां हैं वो भी हम रखा करते थे, कई बार शौकिया भी रखते थे,
1: हाँ
0: किसी पेड़ की जो पत्ती हमें पसंद होती थी ना उसका कलेक्शन करके भी हम लोग अपनी नोटबुक
1: और
0: में
1: मुझे
0: रखा
1: पीली पड़
0: करते।
1: जाती थी, उसको अच्छा लगता था
0: हाँ,
1: देखने
0: है ना।
1: में।
0: तो ये ऐसा भी होता था। और एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन की वो दुनिया जहाँ न मोबाइल था, न इंटरनेट की चिंता थी, न सोशल मीडिया का दबाव था, बस शरारती थी, खेलकूद, दादी नानी की कहानी और उनके बताए कुछ ऐसे नियम जिन्हें हम बिना कोई सवाल किए सच मान लेते थे। याद है बचपन में अगर कोई कहता था कि रात में नाखून मत काटो तो हम तुरंत नाखून काटना बंद कर देते थे। कोई पूछता क्यों तो जवाब मिलता बस मत काटो, अच्छा नहीं होता। अब हमें ये जानने की फुर्सत ही कहाँ कि अच्छा क्यों नहीं होता, बड़ों ने मना किया है मतलब जरूर कोई बहुत बड़ी बात है।
1: और एक हमारे श्रोता है लिखते हैं कि फल जो होता है उसका बीज अगर निकल जाओगे तो पेट में पेड़ उग जाएगा,
0: हाँ
1: है ना, ऐसा होता
0: बिल्कुल
1: था ना।
0: सही कहा। और एक और श्रोता लिखते हैं कि अगर आंख फड़क जाए तो जो है घर में कोई भविष्यवाणी शुरू हो जाती थी कि कुछ अच्छा होने वाला है, नहीं नहीं कुछ खबर आने वाली है, भी दाई आंख फड़की कि बाई आंख फड़की।
1: ये जरूर पूछा जाता था कि आंख
0: हाँ,
1: कौन सी
0: तो हम
1: फड़की
0: भी डर
1: आपकी।
0: के मारे पता क्या करते थे, उसके ऊपर कागज काट के छोटा सा आंख पर चिपका लेते थे, हमें ऐसा कहा जाता था। और झाड़ू पर पैर मत रखो, इस तरह की
1: हाँ
0: बहुत सारी बातें हमें कही जाती थी, लेकिन हमने कभी पूछा नहीं क्यों, बस हमने उसको सत्य मान लिया।
1: बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे समाज जो परिवार में ये प्रथा रही कि किसी बच्चे का दांत टूट जाता था तो हमें ये सिखाया जाता था कि दांत टूटने पर उस दांत को चांद के सामने ये प्रार्थना करनी होती थी कि हे चांद बाबा, मैं तुझे पुराना दांत दूँ और तू मुझे नया दांत दे, इस तरह से कहना होता था। और ऐसा विश्वास था कि दांत चांद बाबा कुछ दिनों बाद हमें नया दांत भी दे देते थे। ऐसे हमारे बुजुर्ग हमें प्रेरित करते
0: बिल्कुल
1: कहते
0: बिल्कुल,
1: थे कि आप हमारा ये दांत ले लीजिए और
0: और
1: हमें
0: हमें
1: दूसरा
0: नया दांत दे दीजिए।
1: दांत।
0: तो मुझे अपना भी याद है आरती, जब मेरा दांत टूटा था मैं सूरज देवता के सामने खड़े होके गई थी, सूरज देवता मेरा ये दांत टूट गया है, मुझे नया दांत दे दो ना। तो ये चूंकि कहा गया होगा ऐसा, और मुझे
1: जी
0: वो सीन अब याद हो आया कि मैंने भी बचपन में ये किया है ना। अब समझ
1: बिल्कुल
0: आता है कि हम कितने भोले हुआ करते थे, जैसा कहा जाता था हम मान लिया करते
1: बिल्कुल।
0: थे।
1: और एक हमारे और श्रोता है जो कहते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो उसका निदान था कि अपनी उंगलियों से हवा में क्रॉस बनाओ या स्वास्तिक एक बना दीजिए आप, तो
0: अच्छा
1: उससे मतलब उसका प्रभाव हट जाता है। तो ये बिल्ली वाला तो आज भी चल रहा है
0: कि बिल्ली ने रास्ता काट
1: अंधविश्वास।
0: दिया है।
1: कितना भी जरूरी काम क्यों ना, हम वहीं
0: हाँ
1: रुके रहते हैं,
0: बिल्कुल,
1: खिलते
0: मतलब
1: नहीं।
0: कैसा दिमाग में अंकित हो गई है कुछ चीजें,
1: जी
0: उनके तर्क कुतर्क अगर हम करने लगे तो फिर बहुत सारी बातें निकल आती हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हम झाड़ू को देखकर ऐसे निकलते थे जैसे घर में कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठा हो। इसके अलावा बचपन में उल्लू, छिपकली, छींक, रास्ते में कोई चीज मिलना, इन सबके भी
1: हाँ
0: अपने अपने मतलब बताए जाते थे। और अगर घर से निकलते समय किसी ने छींक दिया तो हम रुक जाया करते थे। ये
1: हाँ
0: तो होता था
1: ये
0: कि
1: तो
0: तुम्हारा
1: आज भी होता
0: छींको, दूसरी छींक, अरे दो छींक आई, अब निकलो, है ना।
1: है।
0: कितना
1: बहुत
0: जीवन
1: बहुत
0: में,
1: सारी
0: हाँ
1: चीज़ें।
0: बिल्कुल।
1: और हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि जब हम छोटे थे तो ये बात पता नहीं किसने फैलाई थी कि पेंसिल के छिलके दूध में भिगो कर रखने पर उससे इरेजर बन जाता है, मतलब रबड़ बन जाती है। तो हम बच्चे पेंसिल के छिलके दूध में भिगो कर रख देते थे, हालांकि कभी भी उससे इरेजर नहीं बना। ये चीज़ तो मैंने भी करी हुई है, कुछ नहीं बनता उससे, सिर्फ डांट पड़ती है, थप्पड़ पड़ते हैं।
0: ये
1: जी
0: देखिए बचपन के वो दिन हम याद कर रहे हैं जिन्हें हम
1: हाँ
0: कई बार भूल भी जाते हैं, और आज उस टॉपिक के माध्यम से वो दिन याद आ लगाने लगे हैं। और लिखते हैं कि एक श्रोता कि सच तो ये है कि इन बातों में से बहुत सी बातें हमें बचपन में सच लगती थी, आज हम बड़े हो गए हैं, तर्क और विज्ञान को समझने लगे हैं, हमें किसी भी बात को बिना सोचे समझे सच नहीं मानना चाहिए, लेकिन इन पुरानी

0: बातों की याद आते ही चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाती है। हमें तो हंसी आ रही है,
1: बिल्कुल
0: मुस्कान तो क्या कहें, क्योंकि ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं थे, ये हमारे बचपन की यादों का हिस्सा थे। दादी नानी की सख्त हिदायतें थी, माँ की डांट और हमारी मासूमियत थी।
1: बिल्कुल सही बात है। और हमारे एक श्रोता जी लिखते हैं कि जब मैं स्कूल में था उस समय से मुझे इंडिया की जो नेशनल टीम है उसके मैच देखने का बहुत दीवानापन था। तो मुझे अंधविश्वास था कि अगर टेलीविजन पर मैं लाइव मैच देखूंगा तो इंडिया की जो टीम है वो हार जाएगी, इसलिए टीवी बंद करके मैं रेडियो कमेंट्री सुना करता था। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बहुत अच्छा किया। और ऐसा मेरे साथ कई बार सच में हुआ भी था। बाद में अगर उस समय मैच के मुख्य अंश दिखाए जाते थे तो टेलीविजन पर देख लेता था। अब क्रिकेट मैच में मैं इंजॉयमेंट के लिए लाइव हूं, पर अंधविश्वास नहीं है, जो मैच जीते वही सिकंदर।
0: सही कहा आपने कि इतना हमें पैशन रहता था कि टीम में कब क्या हो रहा है, हम लोग इतनी शक्ति लगा देते थे उस मैच को देखने में कि अगर उस दौरान कोई उठ गया तो हम कहते तो उठा क्यों भाई, वो बिल्कुल बॉल चली गई है ना, वो आउट हो गया प्लेयर हमारा। या तो इस तरह की कई बातें हमें याद आती है। और मुझे एक चीज और याद आती है आरती, हमारी सहेलियां कहती थी कि जो गिलहरी है ना इसकी पूंछ पर पत्थर मारो वो 25 पैसे देती है।
1: ये तो
0: हमें याद है, हमारे दीवारों पे छत की मुंडेर पर गिलहरियां आती थी, हम पत्थर इकट्ठे कंकर करके उसको मारते थे। अब वो कंकर ना उसके वहां लगता ही नहीं था पूंछ पे, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट होती थी।
1: गिलहरी आपके पकड़ में कभी नहीं आती।
0: हमें लगता काश ये 25 पैसे दे दे हमको, काश ये 25 पैसे दे दे हमको।
1: और एक हमारे भाई साथी है वो भी लिखते हैं कि बचपन में एक और अंधविश्वास था, जैसे ही तारा टूटा दिखाई दिया तो या 5 फल का नाम ले लो या 5 उंगली मुंह में डाल लो, और हम ये करते भी थे। बहुत बढ़िया,
0: बहुत सुंदर। तो और कुछ है बताइए। हाँ, श्रोता ने
1: एक हमारे श्रोता है जो लिखती है कि कोई तारीफ कर इसमें बड़े होने के बाद भी कुछ कितने ही अंधविश्वास में जीते हैं, जैसे बाहर निकलने पर बिल्ली का रास्ता काटना, कोई तारीफ कर दे तो नजर लगने का डर होना। हम लोग जब स्कूल में थे तब हम लोग एक मैना देख लेते थे तो लगता था कि कुछ बुरा होने वाला है, और जैसे ही 2 मैना दिख जाती थी तो हम लोग खुश हो जाते थे। तो मैं तो अब इन बातों पर भरोसा नहीं करती, पर मेरी सहेली जो कि मतलब जॉब करती है तो अभी भी इस बात को मानती है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग मिले तभी उसे 1 महीना मैना दिखाई दी तो बहुत मायूस हो गई कि वो कहने लगी कि इसलिए मैं अपने मोबाइल में 2 महीना की तस्वीर रखती हूँ। हम सारी सहेलियां उसकी इस बात पर बहुत हंसे, और मेरी मम्मी का कहना है कि कभी भी मुझे 1 आंख मत दिखाया करो, और वो दिन भर 1 आंख दिखाने में गुस्सा हो जाती।
0: बिल्कुल सही कहा, जब हम किसी एक पक्षी को देखते हैं तो कहते हैं 1 for sorrow और 2 जोड़ा दिखता है तो हम कहते हैं 2 for joy।
1: हाँ।
0: तो ये इस तरह की हमने धारणाएं बना ली हैं कि जोड़ा दिखेगा तो अच्छा कुछ होगा, अकेला कोई दिखेगा तो बुरा कुछ होगा। ये इस तरह की धारणाएं आज भी हमारे साथ चल रही हैं और गाहे बेगाहे हम उससे प्रभावित होते भी।
1: बिल्कुल, और बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने मैसेज भेजे हैं, कमेंट भेजे हैं, लेकिन इतना हम गीत नहीं सुनेंगे तो फिर संगीत की कमी हो जाएगी थोड़ी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: हाँ तो आरती, प्यार तो हम अपने आप से भी करते हैं, अपने परिवार वालों से
1: और
0: भी
1: हम एक
0: करते
1: दूसरे
0: हैं,
1: से भी करते हैं और अपने सखियों अपने सखाओं से भी करते हैं,
0: बिल्कुल करते हैं, और अपनी रसोई से भी करते हैं जहाँ
1: हाँ।
0: हमें सुस्वादु भोजन बनाना पड़ता है,
1: स्वास्थ्यपूर्ण
0: भोजन बनाते हैं, है ना। तो क्या लिखा है हमारी सखियों ने कि कैसे रखती है वो अपनी रसोई को साफ सुथरा?
1: एक हमारी जो सखी है वो कहते हैं कि रसोई को चमकती और साफ रखने के लिए रोज खाना बनाने के बाद गैस और काउंटर को साफ कर लीजिए अच्छे तरीके से। बर्तन को तुरंत धोकर व्यवस्थित करके रखें। फर्श पर गिरे पानी या खाने को तुरंत साफ करें। सप्ताह में एक बार अलमारियों और फ्रिज की सफाई करें। सूखे और साफ कपड़ों से सतहों को पोंछें। कूड़ेदान को रोज खाली करें। इस तरह थोड़ी सी नियमित सफाई करने से रसोई जो है वो हमेशा साफ और चमकती रहेगी।
0: बिल्कुल, हमारी एक सखी लिखती है कि रसोई को हमेशा चमकता और व्यवस्थित रखने के लिए सबसे जरूरी है कि नियमित रूप से छोटे छोटे उपाय अपनाएं। किचन सिंक की सफाई, सिंक को साफ करने के लिए आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, थोड़ा सा बर्तन धोने का जेल और विनेगर मिलाकर घोल बनाएं। इस मिश्रण से सिंक और स्टील के नलों पर लगे हार्ड वाटर के जो दाग हैं आसानी से हट जाते हैं और बदबू भी नहीं आती है। काउंटर टॉप और स्लैब की देखभाल मैजिक ब्रिक्स की किचन टीप क्लीनिंग जो गाइड है उनके अनुसार करें। बाबरे, बहुत ही इन्होंने तो टेक्निकली लिख दिया है। काउंटर टॉप की सामग्री के आधार पर सुरक्षित सफाई करें, घोल चुने, गर्म पानी हल्के साबुन के घोल से जिद्दी दागों को तुरंत पोंछे ताकि चिकनाई न जमे। फर्श पर तेल या दूध गिरने से फर्श या उसको साफ भी रखें। सूखा आटा छिड़क कर भी साफ रख सकते हैं। आटा सारा तेल सोख लेता है जिससे 5 मिनट बाद अखबार या कपड़े से पोंछने पर चिकनाई आसानी से साफ हो जाती है। तांबे के बर्तनों को चमकाना है तो पुराने और काले पड़ चुके तांबे और पीतल के बर्तनों के बेस को साफ करने के लिए टोमेटो केचप का इस्तेमाल करें। केचप लगाकर कपड़े से रगड़ने पर बर्तन तुरंत चमक उठते हैं और किचन का हर कोना जिद्दी और गंदगी को आसानी से साफ करने के लिए हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है।
1: बिल्कुल, और हमारे एक साथी जो लिखती हैं कि रसोई में सभी दाल चावल मसाले जो भी हैं या तो उनको ट्रांसपेरेंट जो ऐसे दिखने दिखते हैं जो ऐसे डिब्बों में रखें और उन पर नाम लिख देने चाहिए ताकि कोई चीज ढूंढनी ना पड़े। हर बार भोजन बनाने के बाद आसपास गिरे सभी गंदगी को साफ कर देना चाहिए। मसालों और दाल आटे के डिब्बे को भी साफ कपड़े से पोंछते रहना चाहिए। इस तरह थोड़ा बहुत साफ करते रहने से रसोई साफ रह सकती है। एक ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा वहां पे फैन लगा होना चाहिए जिससे कि रसोई में दम घुटन सी ना हो और धूप आने से ऐसी कोई खिड़की भी होनी चाहिए और हवा के लिए अच्छा रास्ता होना चाहिए। तो धूप आने से रसोई का वातावरण शुद्ध रहता है। कुछ सफाई हफ्ते में और महीने भर में एक बार करनी

0: लेनी चाहिए। जो शुद्ध रसोई में भोजन शरीर जो करते हैं जब बनाते हैं तो शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक लिखते हैं कि बारिश के मौसम में रसोई में नमी, सीलन और चिकनाई जल्दी होती है। कुछ आसान घरेलू उपायों से इसे साफ सुथरा और चमकदार रखा जा सकता है। बहुत सारे इन्होंने उपाय लिखे हैं। और इसके अलावा लिखते हैं कि किचन साफ सुथरा होना ही चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि जब भी कुछ सब्जियां काटें उनके छिलकों को अच्छी तरह से समेटें, फेंके नहीं। कभी कभी छिलके जमीन पर पड़े रहते हैं और उनसे पैर फिसलने का डर भी बना रहता है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे केला खाते हैं, छिलका फेंक देते हैं तो कोई आएगा अचानक पैर फिसलेगा सड़क पर, कहीं भी आप धड़ाम से गिर जाएंगे।
0: बिल्कुल, और बहुत जरूरी है कुछ चीजों को ध्यान रखें तो, क्योंकि रसोई ऐसी जगह है ना कि अगर हम साफ नहीं रखेंगे तो हाँ। जो खाना पड़ा रह गया अगर वहाँ पे तो चूहे या इस तरीके की चीजें हाँ,
1: कॉकरोच
0: आ जाते हैं।
1: बिल्कुल, कीट पतंगे जो है वो घर में होते ही हैं। और इनका ध्यान रखने के लिए सबसे बड़ी बात है कि कम सामान रखें और इतना सामान रखें जितनी रसोई में जरूरत हो।
0: कई बार खाली डिब्बे जमा मत करिए।
1: बर्तन इकट्ठा कर लेते हैं शौकिया, और किचन में और सिंक में दुनिया भर के बर्तन लगा देती हैं गृहिणियाँ दिन भर, कि शाम को साफ कर लेंगे या बाई आएगी तो अगले दिन मांझ लेगी। वो जो ढेर होता है बर्तनों का वो घर में एक अलग सी स्थिति पैदा कर देता है। और ऐसी स्थिति में खाना बनाना भी जो है अच्छा नहीं लगता,
0: और वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक रहता
1: है। बिल्कुल, स्वास्थ्य से तो हम खिलवाड़ करते ही हैं। और बहुत कुछ चीजें जो है हमारे घर की गृहिणी पर निर्भर करती है कि वो अपनी रसोई को किस तरह से साफ सुथरा रख,
0: साफ सुथरा रखिए और जो फालतू के सामान है उनको जमा मत करिए।
1: हाँ।
0: और इस समय एक छोटा सा गीत सुनते हैं।
1: बिल्कुल
0: प्यारा सा।

0: आरती, बहुत सुंदर गीत था ये, और मुझे लग रहा है कि मैं भी तुम्हारा नाम गुलमोहर रख दूं। और पता है गुलमोहर का अर्थ क्या होता है? गुल यानी फूल, मोहर मतलब चमक, जो सुंदर है, जो शोभित है। यानी गुलमोहर जो एक सुंदर पेड़ का नाम भी है जिस पर चमकीले लाल नारंगी फूल खिलते हैं, और इसलिए ये नाम खुश सुंदरता का, खुशहाली का, रंगों और प्रकृति की शोभा का हम प्रतीक मानते हैं। और तुम अभी बिल्कुल वैसी ही लग रही हो, खिलाती भी सुंदर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको ये।
0: तो चलिए अब जो है सखी सहेली कार्यक्रम से हम अपने श्रोताओं से इजाजत लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इस कार्यक्रम से आज मंदाकिनी जोशी
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजे हैं और हमारे केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से रिले किए जा रहे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: दोस्तों विविध भारती का स्टूडियो नंबर एक हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। तो बढ़ा लीजिए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज, देखते हैं ये पहला कॉल कहाँ से आया है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो मैम नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैहर एमपी से।
0: एमपी कहाँ से, कौन सी जगह से? एमपी के
1: मैहर से बात कर रहा
0: हूँ। मैहर से? भाई मैहर तो तीर्थ स्थल है, वहाँ लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो अभी वहाँ पर सीढ़ियाँ बहुत सारी चढ़नी पड़ती थी, तो कोई अभी सड़क वगैरह बन गई, व्यवस्था हो गई कि आसानी से आप चढ़ सके?
1: जी जी जी मैम, अभी तो आसानी से दर्शन करने के लिए आते हैं, बाकी सुविधा तो पूरी तरह से हो गई है मैम।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया, चलिए फिर ये तो बहुत अच्छी बात बताई। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: जी फिल्म इतिहास सुनवा दीजिएगा, वो गाने के बोल है जुदा अपने दिलवर से होने लगी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो
1: हेलो
0: फरमाइश
1: हेलो फरमाइश
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम सूरत से बोल रहे हैं सर। मेरा
0: नाम आपका?
1: जितेंद्र।
0: जितेंद्र जी, बताइए क्या हाल है?
1: सलून का दुकान है मेरा।
0: अच्छा, तो बताइए गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: जीत जाएंगे हम जिंदगी हर कदम, जंग फिल्म का गाना है।
0: अगर मन में चाहत हो तो सचमुच हर कदम पे आपकी जीत हो सकती है, और बस अपनी मेहनत करते रहना है ज़िंदगी में, यही तो फलसफा है ज़िंदगी का।
1: ओके मैडम।
0: ठीक है, तो धन्यवाद आपको कि आपने हमें फ़ोन किया। तो अभी आप बातचीत कर रहे हैं ख़त्म, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: कल्याण पोस्ट औरंगाबाद जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से रूप सिंह साक्य बात कर रहा हूँ।
1: रूप सिंह
0: साक्य
1: साक्य, अच्छा बताइए रूप सिंह जी क्या हाल है और अपने कासगंज है उस गांव के बारे में भी बताइए।
0: हमारा गांव तो एक देहाती एरिया में है और खेती बाड़ी कर रहा हूँ मैं।
1: खेती बाड़ी में कौन सी फसल उपजती है वहाँ पर?
0: सभी तरह की उपजती है, जैसे बाजरा है, धान है, मक्का है, आलू है जी।
1: तो आप
0: धान और मूंगफली की खेती लगी हुई है।
1: अच्छा बढ़िया, तो व्यापार भी करते हैं आप?
0: व्यापार नहीं करते हैं अभी।
1: ओके, सिर्फ मतलब खाने भर की उपज होती है।
0: जी जी जी
1: जी, बताइए गानों के शौकीन है, गाना सुनना चाहते हैं?
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो कौन से गाने पसंद आते हैं, पुराने गाने या नए गाने?
0: पुराने सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, मोहम्मद रफी है, मुकेश है, किशोर कुमार हैं, लता मंगेशकर, आशा भोसले जैसे।
1: जी जी, इन गायक गायिकाओं की आवाज भला कौन नहीं पसंद करेगा। बताइए फिर कौन सा गाना सुनवाए आपको?
0: फिल्म है जीने की राह।
1: जीने की राह
0: जी, और गाने के बोल हैं, एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए।
1: क्या बात है भाई, बड़ा ही दर्शन वाला गाना चुना है आपने, और सचमुच जीने की राह के बारे में पता चल जाए तो जीवन कितना आसान हो जाए ना।
0: जी बिल्कुल
1: जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: कोई दौलत पे नाच करता है, कोई शोहरत पे नाच करता है, जो सुनता है आकाशवाणी मुंबई वो अपनी किस्मत में नाच करता है।
0: क्या बात है, और आपकी आवाज़ सुनते ही विविध भारती के लोग नाच करते हैं। बताइए अपना नाम और जगह का नाम। वैसे आवाज़ तो पहचान चुकी हूँ मैं।
1: जी हसीना भी मंसूरी बोल रही मैडम, फालदा नाका इंदौर से, और आपसे बहुत सालों के बाद बात हो रही लग रही है।
0: हमारी आपकी बात हुई थी हेलो सहेली प्रोग्राम में और हेलो फरमाइश में भी। बताइए अपने बारे में और इंदौर के बारे में, क्या कर रही हैं इन दिनों आप?
1: इंदौर तो बारिश थोड़ी कम हो रही है मैडम, मगर अच्छी है, ठीक, ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, मगर बारिश होना चाहिए।
0: बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो पानी की कमी हो जाएगी, फसलें सूख जाएंगी।
1: पानी कमी अभी इस साल भी बहुत कमी थी पानी की, और अभी तो बारिश हुई नहीं, तो फिर अगले साल क्या पता क्या होगा। नहीं
0: जी, तो पानी की बचत के लिए आप कुछ करती हैं निजी स्तर पर?
1: मैं तो पानी की बचत इस तरह से करती हूँ, अगर कपड़े धोना रहता तो बाल्टी में पानी निचोड़ के उसको ही इस्तेमाल करते हैं, और बर्तन भी मांजते तो बर्तन में ये टब में पानी लेके बर्तन मांजते ही ज्यादा व्यस्त धुले नहीं, नल के नीचे डायरेक्ट नहीं बर्तन धोते, और नल के नीचे धोना ही पड़ता, बहुत मद्दा करके धोते हैं, आराम से बर्तन धोते हैं, और कहीं पर भी रास्ते में जाते हैं नल खुला दिखता है तुरंत उसको बंद करते हैं, और घर में भी कहीं कोई पानी ढोलता रहता तो बहुत गुस्साती फिरला देते हैं हम लोग।
0: जी बिल्कुल, और पानी के एकत्रीकरण के लिए भी मुहिम चलानी चाहिए मिलजुल कर। और आपका काम काज बढ़िया चल रहा है?
1: हाँ बढ़िया चल रहा, पर अभी थोड़ी तबीयत ऐसी चल रही तो जा नहीं रहे मैडम, बुखार आ गया था और आवाज भी ऐसी हो रही, बहुत मुश्किल से निकल।
0: आवाज तो अच्छी खासी आपकी आ रही है, बढ़िया, तो आवाज में तो कोई समस्या नहीं दिख रही है, आपकी आवाज बढ़िया आ रही है।
1: चलो ठीक है, शुक्रिया। हाँ। बढ़िया आ रही।
0: तो बताइए अब कौन सा गाना सुनवाए
1: मैडम? फिल्म का नाम है जाने मन, और गाने के बोल है आएगी आएगी आएगी किसी को हमारे

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, ममता दीदी जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम है पांडुरंग मोरे, मुक्काम पोस्ट वारंगाफाटा, तालुका कलमदुरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ बहन जी।
0: पांडुरंग जी बताइए, क्या हाल है आपका?
1: ठीक ठाक है, हमारे वारंगे फाटे की खिचड़ी खाने को आओ, खिचड़ी प्रसिद्ध है वारंगा फाटा की।
0: अच्छा भाई, वाह, जरा उसकी रेसिपी बता सकते हैं तो बताइए, कैसे बनती है खिचड़ी, क्या खासियत है खिचड़ी की?
1: तुम्हारे को यहाँ से हम सेंट छोड़ेंगे, बोले तो उसका स्वाद छोड़ेंगे।
0: जी जी जरूर।
1: खिचड़ी का
0: हाँ, तो अभी बताइए उसमें क्या खासियत है उस खिचड़ी की? वैसे तो दाल चावल,
1: बोले तो मसूर की दाल है और चावल है और बाकी सब मसाला रहता है, गरम मसाला।
0: अच्छा जी जी, तो किसी विशेष दिन बनती है क्या ये खिचड़ी की, रोज खाई जाती है?
1: नहीं नहीं नहीं, विशेष नहीं, हमारे यहाँ की प्रसिद्ध है वारंगाफाटा, बोले तो खिचड़ी पहले से शुरुआत में ये प्रसिद्ध है।
0: बढ़िया भाई, खिचड़ी तो सुस्वादु भोजन नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ जो मसालेदार खिचड़ी तो अच्छी लगती है और फायदेमंद बहुत है, तो है ना, कहा जाता है कि सप्ताह में एक दिन तो खिचड़ी खानी चाहिए। पर
1: नाश्ते में खिचड़ी मिलती है, और भजिया मिलता है,
0: तो बना भी लेते, आप बना भी लेते हैं कि सिर्फ खाने के शौकीन है?
1: नहीं नहीं, बना लेते नहीं, हम देते हैं ग्राहक को।
0: अच्छा अच्छा, आपकी कोई शॉप है क्या?
1: हाँ होटल है, होटल है।
0: अच्छा,
1: वारंगाफाटा में होटल है।
0: क्या बात है, अब देखिए हमारे श्रोता सुन रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि हमको भी मौका मिले कभी वारंगाफाटा जाने का। वैसे
1: भी मिलेगा खिचड़ी नाश्ता और खुश हो जाएंगे खाने के बाद।
0: वैसे जिस शहर में जाए, जिस जगह पे, वहाँ की कोई मशहूर चीज हो तो वो जरूर चखना चाहिए, स्वाद चखना चाहिए, है ना?
1: हाँ हाँ, इधर नागपुर रोड जाता है, अकोला नांदेड़ रोड जाता है, चौक रास्ता है, टी पॉइंट है, और हर तरफ से गाड़ी आए थे हमारे गांव से ही जाते हैं।
0: अच्छा, क्या बात है भाई, चलिए बड़ा अच्छा लगा जानकर। अब बताइए कि गाना आपको कौन सा पसंद आ रहा है समय?
1: गाना सुना है रोटी कपड़ा मकान में का, महंगाई मार गई।
0: तो आपको कहते हैं धन्यवाद और सुनवाते हैं आपको ये गाना, फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान।

क्या मैंने कहा चाहत तेरी, मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी एक हमें।

0: हेलो फरमाइश।
1: न जाने ये नजर क्यों उदास रहती है, न जाने से किसकी तलाश रहती है, ये जान के भी किस्मत में हमारी के फोन कॉल लगे या ना लगे, मैडम जी हमें फिर भी फोन लगने की आस रहती है।
0: क्या बात है, और हमें भी आस रहती है।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं ये बताइएगा, और हम आपके जो आपने शुरुआत की उसके जवाब में ये कहना चाह रहे हैं कि आज तो हमें भी रहती है कि हमारे श्रोताओं के कॉल लग जाए और हमारी बातचीत हो जाए। कहिए।
1: सतीश गुलियानी, दिलकुशा मार्केट, जलंधर, पंजाब से बोल रहा हूँ।
0: सतीश गुलियानी
1: जी। जी जी
0: जी, तो बताइए वहाँ के बारे में, जलंधर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: जलंधर में जानकारी मैडम सबसे बढ़िया, यहाँ देवी तलाब मंदिर है हमारी माता जी का, जिनके सहारे हम जीते हैं। बहुत बढ़िया पुराना मंदिर है ये, बहुत सब मनोकामना यहाँ पूरी होती है। बाकी घूमने फिरने बच्चों के लिए वंडरलैंड है, बहुत बहुत कुछ है मैडम यहाँ देखने को। नान खाने को बहुत अच्छे हैं यहाँ।
0: क्या खाने को?
1: छोले छोले भटूरे।
0: अच्छा,
1: छोले भटूरे जो पंजाबी खाते हैं जी।
0: छोले भटूरे तो वैसे भी पंजाब के बहुत मशहूर होते हैं जी।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
0: और बताइए वहाँ के थोड़े कल्चर के बारे में बताइए। पंजाब का जो लोक संगीत है बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सारे लोक धुनों पर आधारित पंजाबी गाने आजकल फिल्मों में भी शामिल किए जा रहे हैं, और बहुत सारे फिल्मी गीत पंजाबी शब्द।
1: पंजाबी जैसे जैसे ये एक लाइन है,
0: हाँ,
1: ओ पेके जान वाली है नी किन्ना, ओए होई नी किन्ना, आय नी किन्ना चीर लाएंगी। ये गाना पंजाबी है जी हमारा।
0: क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया,
1: बहुत चलता है।
0: हाँ जी, तो पंजाब की पृष्ठभूमि पर एक फिल्म भी आई थी, बहुत मशहूर हुई थी, और वहाँ के गायक हैं जो बहुत मशहूर हुए थे, याद है क्या?
1: सारे गायक सारे मशहूर हैं यहाँ पे, हम भी मशहूर हैं मैडम यहाँ पे, ऐसी बात नहीं।
0: अच्छा, आप किस लिए मशहूर है भाई, बताइए, बहुत बड़े अच्छी बात है ये तो।
1: हम रेडियो रेडियो के लिए मशहूर हैं, जो कि जब प्रोग्राम चलता है ना।
0: हाँ हाँ,
1: तो उसमें हम भी फोन यहाँ पे लोकल फोन करते हैं हम।
0: अच्छा, मतलब फोन करने के लिए मशहूर है कि आपके कॉल हर प्रोग्राम में लग जाता है। वाह भाई, क्या बात है।
1: जी जी जी जी।
0: और अपने
1: जी
0: बारे
1: जी
0: में बताइए, करते क्या है आप?
1: हमारा मैडम फूड सप्लीमेंट का काम है।
0: अच्छा,
1: हम तो यही कहते हैं कि नशों से दूर रहो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, जल्दी सुबह उठो,
0: जी जी
1: करो,
0: बिल्कुल।
1: और सबसे बड़ी बात कि अपने माता पिता की सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो।
0: बिल्कुल, तो आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं ना?
1: मैडम मेरे माता पिता नहीं है, मेरी उम्र अष्टम बहुत ज्यादा हो गई है, 67 है।
0: अच्छा, ओहो।
1: मैडम मैं जब छोटा था तो मुंबई दौड़ गया था एक्टर बनने के लिए।
0: फिर लौटे कैसे?
1: लौटे मैडम, किस्मत में साथ नहीं दिया, मैं वीरू देवगन के साथ था।
0: बढ़िया।
1: हाँ जी,
0: आपकी तो आवाज भी अच्छी कड़कदार है।
1: हाँ मैडम, वक्त ने अपन के साथ वफा नहीं किया, लेकिन वक्त की हम अभी भी बहुत कदर करता है।
0: जी जी जी,
1: बिल्कुल मैडम। यहाँ वहाँ पे पता नहीं कब आपकी किस्मत पलटी खा जाए।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: आप किस्मत बदल दे। और देखो मैंने वहाँ ऐसा देखा है कि लोग चाहे भूखे भी रहते हैं, कहते हैं हम रहेंगे मुंबई में, वापस नहीं जाएंगे।
0: जी, बहुत सारे जो ऐसे कलाकार हैं जो आज आकाश की ऊंचाइयों पर हैं, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है।
1: ये धर्मेंद्र जी हमारे पंजाब के हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
1: इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। मैं भी अपने शूटिंग में जाता था, मैं भी
0: जी
1: शूटिंग में जाता था, मुझे उसका काम मिला था, लाइट मैन का।
0: अच्छा अच्छा बढ़िया।
1: लेकिन मुझे मुझे किसी ने बताया कि आपकी आवाज है लाइट मैन, ये लेवर वाली नहीं है, आप किसी साइड मास्टर के साथ मिल जाओ।
0: अच्छा, वाह।
1: तो फिर मैं मिल गया था जी वीरू देवगन जी के, अजय देवगन जी के पिताजी हैं, वीरू देवगन के पिताजी हैं, उनके साथ।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो बात खास होनी हो गई एक दिन रात को जरा सी बात पे, कि मैं बिना बताया उनके कमरे में चला गया, उन्होंने कहा गेट आउट, बाहर निकल जाओ।
0: अच्छा,
1: बस बाहर आ गया, मुझे मूड खराब हो गया। मैंने कहा यहाँ तो, यहाँ पे मेरा होटल था उस टाइम, 10-10 वर्कर काम करते थे। तो मैं इसी घमंड में था कि यहाँ मेरा इतना बड़ा होटल है।

0: वर्कर काम करते हैं, ये वहां मुझे झिड़के मार रहे हैं, लेकिन वो झिड़के उनकी प्यार वाली थी। अगर सहा जाता तो आज मैं कामयाब होता।
1: इसमें दो बातें हैं, कई बार क्या होता है बड़ों की डांट आपके लिए बहुत मायने रखती है और अच्छी भी लगती है, लेकिन कई बार आपका जब सेल्फ रिस्पेक्ट चोटिल होता है तो आप वहाँ नहीं रहना चाहते हैं।
0: जी जी,
1: तो ये
0: जी,
1: आपने
0: जी,
1: अपने आप चुना। कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं, कौन सी फिल्में देखी हैं धर्मेंद्र जी की जो बहुत पसंद?
0: सारी फिल्में देखी है मैडम, सारी फिल्म देखी है। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा छोड़ूंगा नहीं लाला, बहुत फिल्में देखी है मैडम, मैंने बहुत पिक्चर देखी है, क्या क्या नाम बताऊंगा इनका, बहुत
1: क्या बात है। अब बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
0: इज्जत फिल्म का गाना सुना दो जी, ये दिल आकाशवाणी में, आकाशवाणी में ना लगता नहीं हम क्या करें।
1: अच्छी बात है जी, इज्जत फिल्म का गाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया और इतनी सारी बातें साझा की। अब बातचीत को दे रहे हैं विराम, आपको सुना रहे इज्जत फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते जी।
1: मैं छत्तीसगढ़ कटोला तालाब रायपुर से मोहन लाल देवांगन मास्टर कौन से बोल रहे हो मैडम जी?
0: जी मोहन लाल देवांगन जी, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। बहुत ही पुराने श्रोता हैं आप तो।
1: जी हाँ। देखिए मैं विविध भारती का बहुत दीवाना हूँ और मैं बता दूं कि मेरे परिवार भी वैसे दीवाना है।
0: जी ये दीवानापन हमेशा बना रहे, यही हमारी शुभकामना है और हमारी यही कोशिश भी रहेगी कि प्रोग्राम की गुणवत्ता बनी रहे ताकि आप सभी का दीवानापन जारी रहे।
1: जी बिल्कुल।
0: अब बताइए,
1: धन्यवाद मैडम जी।
0: क्या काम काज है आपका? हमारे श्रोताओं को बताइए, जो नए श्रोता हैं वो भी आपके बारे में जाने।
1: जी बिल्कुल। देखिए मैं ट्रेडिंग शॉप है मेरा करोड़ा रायपुर में मोहन चाय के नाम से, और मेरा बेटा भूपेश देवांगन और तुषार देवांगन फैशन डिजाइनर है।
0: अच्छी बात है, क्या बात है।
1: हम लोग साथ में मिलकर सब करते रहते हैं। और उसके बाद जो है कि देखिए मेरा बेटा जो फैशन डिजाइनिंग किया है, एक जो दिल्ली से किया है और एक छत्तीसगढ़ से किया है।
0: जी जी।
1: तो वो सब हम एक साथ सब काम करते रहते हैं। और मेरा एक और दुकान यहाँ पर शोरूम बड़ा बनने जा रहा है, मतलब बन के लगभग तैयार होने पर है, हो जाएगा इस महीने में।
0: जी जी, बहुत बढ़िया। तो ये मिल

0: जुलकर जो काम कर रहे हैं, शोरूम भी तैयार हो गया, तो ये आपकी मेहनत का कमाल है कि आपने अपने
1: जी
0: बच्चों को अच्छी परवरिश दी होगी कि वो मेहनती हैं
1: जी जी
0: और उस
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: आपके बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं ना। तो नए बच्चों को भी गानों से जोड़ रखा है, रेडियो से जोड़ रखा है आपने।
1: वो तो मैं समझता हूँ कि मेरे से ज्यादा सुनते हैं मैडम जी। सुबह
0: अच्छा।
1: वो वर्कशॉप में रहते हैं तो कोई रेडियो चलता रहता है, सुबह 6 बजे चालू हो जाता है और रहते हैं रात को 11 बजे बंद होता है, टीवी देखते रहते हैं लेकिन रेडियो बंद नहीं होता।
0: ये बात बहुत अच्छी है कि जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें भी पुराने गानों से और पुरानी परंपरा से, पुरानी विरासत से जोड़ के रखना जरूरी है।
1: जी
0: तो
1: जी जी जी
0: अब
1: जी
0: बताइए कौन सा गाना सुनवाया जाए मोहनलाल जी।
1: देखिए मैडम जी, इस समय देखिए मेरा जन्मदिन होता है मोहनलाल जवाहर के नाम होता है मोहन मुरारी, लेकिन अब ये कृष्ण जन्माष्टमी का भी है। मैं सभी श्रोताओं को, आप विविध भारती परिवार को सबको शुभकामनाएं देता हूँ।
0: और कृष्ण जन्माष्टमी की जब बात चले तो हम ये जानना चाहते हैं कि कृष्ण कर्म का संदेश देते थे, लेकिन कृष्ण के बहुत सारे रूप हैं। एक बाल रूप है, उनका सखा रूप है, और एक ऐसा रूप है जो दर्शन सिखाता है। आपको कौन सा वाला रूप पसंद आता है श्री कृष्ण का?
1: मुझे तो उसका बचपना रूप बहुत अच्छा लगता है,
0: बाल रूप।
1: बाल रूप बहुत बहुत अच्छा लगता है। और उनका जो बाल रूप में हर एक पास में नटखट जो होता है ना, वो बहुत ही
0: नटखट
1: अच्छा
0: रूप।
1: लगता है मैडम जी।
0: जी जी उनके बाल रूप का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है सूरदास ने। कभी पढ़िए सूर की पद रचना, उन्होंने एक जगह लिखा है, किलकत कान घुटुरवन यावत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकरि बे धावत। तो श्री कृष्ण जी के लिए ये रचना उन्होंने की है। तो आप जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि सचमुच कृष्ण का बाल रूप सामने आ गया है। कौन सा गाना सुनवाया जाए मोहनलाल जी?
1: मैं गीत चुना हूँ फिल्म खुद्दार का, और आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, और उसका बोल है, मच गया सुर सारी नगेरी रे, आया भी अज का बाका संभाल तेरी जगेरी रे।
2: अरे मच गया शोर।

0: हेलो फरमाइश जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से?
1: खलील अहमद
0: जी। खलील जी बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: हम फिल्म है पगला कहीं का और तुम मुझे यूं भुलाना पाओगे, ये गाना सुनना चाहेंगे
0: जी। अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं?
1: हम तो रिटायरमेंट है, अभी घर में है फिलहाल।
0: अच्छा, क्या काम काज करते थे?
1: हम तो ईट जुड़ाई का काम करते थे।
0: अच्छा, तो भाई ये तो बहुत बड़ा काम है, ईंट अगर ना हो तो घर कैसे बने? घर का निर्माण करना है तो ईंट बनाना ही पड़ेगा।
1: जी जी जी जी
0: जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश मैम
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: संत हिराम नगर भोपाल से बोल रहा हूँ मैम।
0: आपका शुभ नाम?
1: बाबूलाल सेन बोल रहा हूँ मैम।
0: जी बाबूलाल जी,

0: अपने बारे में कुछ बताइए, क्या काम काज है आपका?
1: क्या सैलून की दुकान है मैम
0: जी, और भोपाल शहर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी देंगे?
1: भोपाल अच्छा शहर है मैम जी, तालाब वगैरह है देखने के लिए, अच्छे है जगह बने हैं बढ़िया है। कमला पार्क है
0: जी, जी मैम। और गाना किस तरह का पसंद करते हैं? पुराने गाने पसंद है या नए गाने पसंद है आपको?
1: पुराने गाने मैम, पुराने गाने।
0: तो आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: आज मैम सुनेंगे हम दाता फिल्म का गीत और बाबुल का घर ये बहना।
0: बेहतरीन गाना चुना है आपने, अब सुनते हैं आपके पसंद का ये गाना।

0: हेलो
1: ठीक
0: फरमाइश।
1: है। हेलो,
0: हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं निर्मल डिस्ट्रिक्ट भैंसा गांव से मोतीराम पिंगले बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी मोतीराम जी, बताइए अपने गांव के बारे में, बताइए जरा, और अपने बारे में भी जानकारी दीजिए।
1: एक कस्बा है मैडम, उतना कोई खास नहीं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर सरस्वती माता का एक टेम्पल है। यहाँ
0: हाँ
1: पर काफी लोग महाराष्ट्र से आते हैं, दूर दूर से आते हैं मैडम दर्शन करने के लिए।
0: लोग कैसे हैं वहाँ के?
1: लोग अच्छे हैं मैडम, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई हादसा नहीं होता है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। इतना सेफ एरिया है मैडम हमारा।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर तो
1: हाँ हाँ
0: खास हो
1: मैडम,
0: गया ना
1: हाँ।
0: आपका शहर। लड़कियों की शिक्षा के लिए वहां पर लोग कोशिश करते हैं, मतलब लड़कियां पढ़ने
1: कोशिश
0: लिखने
1: नहीं
0: जाती?
1: मैडम, बहुत आगे है मैडम।
0: क्या बात है ये।
1: यहाँ पर SSC या इंटरमीडिएट जब एग्जाम्स होते हैं ना, सबसे ज्यादा लड़कियां पास होती है मैडम।
0: अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: संगम फिल्म का मैडम, मुकेश का गाना, राज कपूर के ऊपर फिल्म आया गा, ओ महबूबा मेरे दिल के पास ही तेरी मंजिल है मजबूत।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन
1: मैम
0: किया।
1: मैम एक एक एक एक रिक्वेस्ट है मैडम, क्या मैं गाना गाकर सुना सकता हूँ मैम?
0: जरूर जरूर सुनाइए।
1: ओ मैं

0: हेलो, फरमाइश।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोनमर्ग से, मैं आपका नेमी श्रोता लतीफ अहमद रैना
0: सोनमर्ग से बोल रहे हैं। सोनमर्ग तो भाई पर्यटकों के लिए बड़ी खूबसूरत जगह मानी जाती है।
1: हाँ हाँ, यहाँ तो पर्यटक हर लगभग 1500 से ज्यादा ज्यादा एक दिन में आते हैं।
0: गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम।
1: हाँ, गुलमर्ग, सोनमर्ग, दूध पथरी है ना, बड़गाम के साइड में दूध पथरी।
0: तो इस समय वहाँ पर मौसम कैसा है, ठंडा है या नॉर्मल है?
1: मैं नहीं उतना गर्मी, नहीं उतना ठंडी, नॉर्मल।
0: तो आपका क्या काम है?
1: बस मैं तो खेती किसानी करता हूँ
0: वहाँ पर। खेत के लिए जब खेत में काम करते हो तो किस तरह की फसल उपजती है, मतलब वहाँ की पैदावार कैसी है?
1: पैदावार तो बहुत अच्छी यहाँ, इस साल तो यहाँ बारिश की वजह से बहुत कम फसल उगाया है।
0: कौन सी फसल उपजती है ज्यादातर
1: यहाँ पे? ज्यादा और धान और मक्का एक ही फसल बनते हैं ना साल में यहाँ पे।
0: अच्छा, बर्फ गिरती है तो आप लोगों को बड़ी परेशानी होती होगी, है ना?
1: हाँ, बहुत परेशानी है, 3 फुट कभी 4 फुट ऐसा ऐसा बारिश आता है, बर्फ आता है यहाँ पे,
0: जम जाता है बर्फ। और जो बाहर से घूमने जाते हैं उन्हें बर्फ बहुत ही रोमांचित करती है और बर्फ देखने के लिए लोग जाते हैं।
1: वो सोनमर्ग में तो लगभग 7-8 महीने तो बर्फ ही रहता है।
0: जी, तो
1: हाँ,
0: बताइए तो कश्मीर की वादियों में कौन सा गाना आपके लिए भेजा जाए, आपकी पसंद का?
1: फिल्म का नाम है कुली नंबर 1, इसको दूसरे गाड़े कोई भी सुनाइए।
0: तो ठीक है,
1: हाँ,
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फ़ोन किया इतनी दूर से और कश्मीर के बारे में इतनी सारी जानकारी भी दी। और आपको अब सुनवा रहे हैं कुली नंबर 1 फिल्म का ये गाना।

0: तो दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के फोन कॉल आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक कृपया फोन ना करें ताकि अन्य श्रोताओं को भी इसमें सहभाग का मौका मिले। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल करते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का STD कोड 022। टेलीफोन नंबर एक और है, इसे भी आप नोट कर लें, 400-24662, मुंबई का STD कोड 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता दें, 2867-0288। इसके अलावा एक नंबर और 400-24662, मुंबई का STD कोड 022। चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग सौरभ घारू का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है, रोजाना सुनिए पिटारा।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने आतंकवाद से निपटने के लिए व्यापक और वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों नेताओं ने कहा कि आतंकवाद किसी भी रूप में, किसी भी स्थान पर और किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवादियों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया। दोनों नेताओं के बीच बातचीत के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ बेल्जियम की एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने पहलगाम हमले की फिर से कड़ी निंदा की। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए। दोनों देश आतंकवाद के बदलते खतरों से निपटने में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत बेल्जियम संयुक्त आतंकवाद निरोधक कार्य समूह का गठन करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम सहित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। इससे पहले भारत और बेल्जियम के बीच आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें रक्षा सहयोग पर आशय पत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
1: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश और एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने यह बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री टियो फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। श्रीमती सीतारामन ने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय कल से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को एक साथ आने का अवसर मिलेगा। इस दौरान न्यायपालिकाओं के बीच संवाद और न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास से संबंधित समकालीन मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे क्षमता बढ़ाने और सिग्नल व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि मुंबई में 18,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए

कान्हा की बंसी सिर्फ एक वाद्य नहीं बल्कि प्रेम भक्ति और आत्मा की पुकार है। उन उसकी धुन सुनकर राधा ही नहीं पूरा ब्रज भाव विभोर हो उठता था। अब बढ़ते हैं एक ऐसे भजन की ओर जो श्री कृष्ण की असीम महिमा का सुंदर वर्णन करता है। उनकी माया, उनकी लीला, उनका विराट स्वरूप जिसका पार पाना किसी के लिए आसान नहीं।

गुड इवनिंग सभी को और सभी का कार्यक्रम युवा मंच में स्वागत। दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है, हम दिन भर बहुत सारी बातें करते हैं, कुछ बातें याद रह जाती हैं, कुछ भूल जाती हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर मन सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो हमने भी सोचा आज क्यों ना आपसे ऐसी ही बातें की जाएं, बिना किसी लेक्चर के, बिना किसी बोरिंग ज्ञान के, बस आप हम और कुछ इंटरेस्टिंग सी कन्वर्सेशन। क्योंकि युवा मंच प्रोग्राम का मतलब सिर्फ जानकारी देना नहीं, मतलब है आपसे कनेक्ट करना, आपकी दुनिया की बातें करना और हर बार कुछ नया लेकर आना। तो चलिए आज की कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। आज के प्रोग्राम में मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त नीलम, जिसकी बातें नहीं होती कम और बातें आज कम होंगी भी नहीं, क्योंकि बातों के बिना इस प्रोग्राम में काम ही नहीं होगा। बातें हम आपके साथ साझा करेंगे, तभी तो आपको बता पाएंगे कि आज क्या कुछ हम आपके लिए इस प्रोग्राम में लेकर आए हैं। रोजगार समाचार और विज्ञान जगत सेगमेंट के अंतर्गत आज बातें होंगी बहुत सारी और जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल बातों को थोड़ा सा ब्रेक हम देंगे और एक प्यारा सा गीत अपने युवा दोस्तों श्रोताओं को सुनवाएंगे।

0: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: डॉक्टर साहब, मीनू बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है, इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं, देखो ना कैसी पीली पड़ गई है।
3: इसे अनीमिया है, इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाकर खिलाओ और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
2: जी डॉक्टर साहब,
3: सिर्फ इसे नहीं सभी को अनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
4: नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश जनहित में जारी।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
7: वेलकम बैक एक बार फिर सभी का कार्यक्रम युवा मंच में। दोस्तों, करियर की राह में एक सही मौका कभी कभी पूरी दिशा बदल देता है। जरूरत है तो बस मौके को पहचानने की, अपनी योग्यता पर भरोसा रखने की और समय रहते कदम बढ़ाने की, क्योंकि रोजगार सिर्फ नौकरी पाने का नाम नहीं, ये आत्मनिर्भर बनने का रास्ता है, अपने हुनर को पहचान देने का मौका है और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की शुरुआत है। तो ये वो दोस्तों, अब अगर आप भी करियर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में हैं, तो आइए अब आपको अवगत कराते हैं आज के रोजगार समाचारों से। रोजगार समाचार में सबसे पहले बात स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन 2026 की। एसएससी ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन 2 सितंबर से शुरू हो चुका है और 22 सितंबर 2026 तक आवेदन किए जा सकते हैं। परीक्षा 2 अक्टूबर 2026 में प्रस्तावित की गई है और योग्यता तथा आयु सीमा पद के अनुसार अलग अलग है। इच्छुक उम्मीदवार पूरी जानकारी और आवेदन के लिए एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं। रोजगार समाचार में अब जानकारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए से। एनडीएमए में यंग कंसल्टेंट फायर रिस्क मैनेजमेंट के पद के लिए भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 अक्टूबर 2026 तक है। योग्यता और आवेदन संबंधी पूरी जानकारी के लिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की ऑफिशियल वेबसाइट employmentnews.gov.in पर जाकर आप अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। रोजगार समाचार में अब जानकारी कॉनकॉर यानी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से। कॉनकॉर ने मैनेजमेंट ट्रेनी और असिस्टेंट ऑफिसर के 77 पदों की भर्ती निकाली है। आवेदन 31 अगस्त से शुरू हो चुके हैं और 30 सितंबर 2026 तक इन पदों के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। योग्यता और आवेदन की पूरी जानकारी के लिए concorindia.co.in पर जाकर आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। रोजगार समाचार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं इस समय और ये वो मंच कार्यक्रम में ये जानकारी हम साझा कर रहे हैं और साथ ही विज्ञान जगत पर भी आज कार्यक्रम में बात की जाएगी। फिलहाल कार्यक्रम में एक बार फिर से वक्त है युवा दोस्तों के श्रोताओं के मनोरंजन का, तो लीजिए सुनिए ये गीत।

0: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला और साथ ही आप हमें सुन रहे हैं प्रसार भारती की ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी। युवा मंच कार्यक्रम आप सुन रहे हैं इस समय और रोजगार समाचारों की बात हो रही है। रोजगार समाचार में अब जानकारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी यानी NIAB से। NIAB में साइंटिस्ट बी और अन्य पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेज से जुड़े उम्मीदवारों के लिए एक अच्छा अवसर है। आवेदन की अंतिम तारीख 11 सितम्बर 2026 है और विस्तृत जानकारी तथा आवेदन के लिए NIAB की ऑफिशियल वेबसाइट niab.res.in पर आप जा सकते हैं। रोजगार समाचार में अब जानकारी है यूको बैंक से संबंधित। यूको बैंक ने मैनेजर AIML इंजीनियर और मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के कुल 20 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन 29 अगस्त से शुरू हो चुके हैं और 18 सितंबर 2026 तक आवेदन किए जा सकते हैं। विस्तृत योग्यता और आवेदन के लिए यूको बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट yuko.bank.in के जॉब अपॉर्चुनिटीज सेक्शन पर जाकर आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। रोजगार समाचार में अब बारी बैंक ऑफ बड़ौदा से। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोकल बैंक ऑफिसर यानी LBO के कुल 2482 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये भर्ती देश भर के विभिन्न स्थानों के लिए है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 7 सितंबर 2026 है। इच्छुक उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य पात्रता शर्तों की जानकारी आधिकारिक विज्ञापन से हासिल कर सकते हैं। आवेदन की विस्तृत जानकारी के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.bank.in के करियर सेक्शन पर जाकर आप ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये भर्ती पैन इंडिया है, यानी कई राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए है, लेकिन हर राज्य में वैकेंसीज की संख्या अलग है और उम्मीदवार को जिस राज्य के लिए आवेदन करना है उसकी स्थानीय भाषा में प्रोफिशिएंसी भी जरूरी है।
1: तंबाकू का किसी भी में सेवन जानलेवा है। तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर, हार्ट अटैक, लकवा, गैंग्रीन और अंधापन जैसी अनेक खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं।
2: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और शिक्षण संस्थान के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है। प्रदेश में गुटखा, खैनी और खुली सिगरेट बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
1: प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने में सहयोग दें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: तो ये साथियों, ये थे सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण रोजगार समाचार। याद रखिए, वैकेंसी देखना पहला कदम है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना सबसे जरूरी कदम है। योग्यता, आयु सीमा, आवेदन की अंतिम तिथि और दूसरे सभी नियम ध्यान से जांचें और आवेदन हमेशा संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ही करें। मौका आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है, बस आपको तैयार रहना है, अपने हुनर पर भरोसा रखना है और सही समय पर आगे बढ़ना है। इसी उम्मीद और नई जानकारी के साथ कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, और कार्यक्रम में आगे बढ़कर हम बात करेंगे विज्ञान जगत के अंतर्गत। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
3: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम युवा मंच आकाशवाणी धर्मशाला से। विज्ञान जगत, जी हाँ, विज्ञान जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और हर वक्त हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो विज्ञान से संबंध रखता है। आज विज्ञान जगत में बात करेंगे चींटियों के बारे में। बिना GPS के चींटियां कैसे रास्ता अपना ढूंढती हैं, इस बारे में आज बात होगी। और विषय हमारा आज का रहेगा चींटियों का सीक्रेट GPS। जी, इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है युवा दोस्तों के, श्रोताओं के मनोरंजन का एक बार फिर, और ये गीत उन सब के लिए।

जी हाँ, जुगनू की तरह ही एक छोटा सा क्रिएचर है चींटी। और चींटियों की ही बात आज के इस कार्यक्रम युवा मंच में विज्ञान जगत के अंतर्गत हम करेंगे। दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए कि एक छोटी सी चींटी जब अपने घर से निकलती है, उसे खाना ढूंढना है, वो चलती जाती है, कभी इधर मुड़ती है, कभी उधर मुड़ती है, इधर उधर भोजन तलाश करती है, फिर अचानक उसे खाना मिल जाता है और अब होती है असली कहानी शुरू। वो खाना लेकर वापस घर पहुंचती है और कुछ देर बाद दर्जनों चींटियां उसी रास्ते पर पहुंच जाती हैं और बेहद ही हैरानगी का ये विषय होता है। ना कोई गूगल मैप्स, ना कोई मोबाइल, ना कोई जीपीएस, फिर भी उन्हें रास्ता कैसे पता चलता है? क्या चींटियों के पास कोई सीक्रेट नेविगेशन सिस्टम है? जी हाँ फ्रेंड्स, विज्ञान जगत में आज इसी साइंस को हम समझेंगे। चींटियों के पास एक बेहद इंटरेस्टिंग तरीका होता है। जब कोई वर्कर आंट खाना ढूंढ कर वापस अपनी कॉलोनी की तरफ जाती है, तो वह रास्ते पर फेरोमोन नाम के केमिकल सिग्नल्स छोड़ सकती है। अब दूसरी चींटियाँ उस केमिकल ट्रेल को अपनी स्मेल से रिसेप्टर्स की मदद से डिटेक्ट कर सकती हैं, यानी पहली चिंटी जैसे कह रही हो इधर आओ खाना इस तरफ है, लेकिन आवाज से नहीं, स्मेल के जरिए। मान लीजिए एक चिंटी को खाना मिला, वापस कॉलोनी की तरफ गई और रास्ते में फेरोमोन ट्रेल छोड़ा। अब दूसरी चिंटी उसी ट्रेल को फॉलो कर सकती है और अगर उन्हें वही रास्ता यूजफुल लगता है तो वो उसी ट्रेल को और मजबूत कर सकती है। धीरे धीरे एक क्लियर केमिकल रूट बन सकता है, यानी चिंटियों का जीपीएस सिग्नल नहीं आता लेकिन चिंटियों के बीच केमिकल सिग्नल जरूर होता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अभी बाकी है। मान लीजिए दो रास्ते, एक रास्ता छोटा है, दूसरा लंबा है। चींटियां दोनों रास्तों को एक्सप्लोर करती हैं। छोटे रास्ते से आने जाने वाली चींटियां जल्दी वापस पहुंचती हैं और उस रास्ते पर बार बार फेरोमोन डिपॉजिट कर सकती हैं। समय के साथ शॉर्टर

रूट पर केमिकल ट्रेल ज़्यादा स्ट्रोंग हो सकता है और कॉलोनी उस रास्ते को ज़्यादा फॉलो करने लगती है। साइंस में इस तरह की बिहेवियर को कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी किया जाता है। किसी एक चिंटी के पास पूरा मैप नहीं, फिर भी कॉलोनी मिलकर एक एफिशिएंट रूट खोज सकती है। एक सवाल मन में ये भी पैदा होता है, क्या एक ही चींटी स्मार्ट है या पूरी की पूरी कॉलोनी स्मार्ट है? यही तो सबसे मज़ेदार सवाल है। अक्सर एक इंडिविजुअल आंट के पास पूरी सिचुएशन की जानकारी नहीं होती, लेकिन हजारों चींटियां छोटे छोटे सिग्नल पर रिएक्ट करती हैं और मिलकर ऐसा बिहेवियर दिखा सकती हैं जो बाहर से तो बहुत इंटेलिजेंट लगता है। इसे आप ऐसे समझिए, एक चींटी के पास पूरा प्लान नहीं, लेकिन कॉलोनी मिलकर सॉल्यूशन निकाल लेती है। इसी कॉन्सेप्ट ने साइंटिस्ट को बहुत ही इंस्पायर किया है। एक सवाल अब मन में और आता है कि अगर बारिश हो जाए और फेरोमोन ट्रेल कमज़ोर पड़ जाए तो चींटियां क्या करेंगी? यही नेचर की खूबसूरती है। उनका नेगेवेशन सिर्फ एक सिग्नल पर डिपेंड नहीं करता। कुछ स्पीशीज जो होती हैं उनमें इन्वायरमेंटल लैंडमार्क और दूसरे सेंसरी क्ल्यूज का भी इस्तेमाल करना आता है। यानी छोटी सी चींटी लेकिन नेगेवेशन का पूरा टूलकिट। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि चींटियों को रास्ता देखने के लिए या एक दूसरे को रास्ता दिखाने के लिए किसी गूगल मैप की ज़रूरत नहीं होती। उनकी दुनिया में फेरोमोन ट्रेल एक ऐसा इम्पॉर्टेंट नेगेवेशन टूल है और पूरी कॉलोनी मिलजुल कर छोटे छोटे सिग्नल से बड़े डिसीजंस ले सकती हैं। अगली बार जब आपको ज़मीन पर चींटियों की एक लाइन दिखाई दे तो इसे सिर्फ चींटियों की एक कतार मत समझिएगा। हो सकता है चींटी जो है वो नीचे एक इंडिविजुअल केमिकल हाईवे पर काम कर रही है और बहुत सारी चींटियां मिलकर इसे कामयाब करती हैं। और युवा मंच में हमारी कोशिश यही रहती है कि रोज़मर्रा की चीज़ों में छुपी वो साइंस आपके सामने लेकर आए जिसे आप सुनकर अच्छा महसूस करें और जिसे आप सुनकर ये सोचें कि इस चीज़ के पीछे का क्यों हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। तो क्यूरियस रहिए और अगली बार फिर आपसे मिलेंगे एक और वाओ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप क्वेश्चनिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग समहाउ। बाय फॉर नाउ। चलते चलते आपको छोड़े जा रहे हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

103.4 MHz पर हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 5:55 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रमों का विवरण। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से आप सुन सकते हैं प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन। कार्यक्रम सुरमई सांझ लेकर हाजिर होंगे शाम 6:05 पर। 6:30 पर किसान बागवान भाई बहन सुनेंगे कार्यक्रम मौजा गराइंदियां। शाम 7:00 समाचार सुने जा सकते हैं। 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। शाम 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम किसान वाणी, जिसे आकाशवाणी शिमला से रिले किया जाएगा। 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 8:00 आकाशवाणी शिमला से ही आप सुनेंगे विधानसभा समीक्षा। रात 8:15 पर श्रोता आज सुनेंगे आकाशवाणी मथुरा द्वारा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के उद्घाटन समारोह पर आधारित ये कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। 8:30 पर देशभक्ति गीत सुनवाए जाएंगे। रात 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9:00 News@9 आप सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे। रात 9:15 का समय रहता है कार्यक्रम एक ही कलाकार के प्रसारण का। और आज कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे अभिनेता अभिनेत्री क्रम में अभिनेता विवेक ओबेरॉय द्वारा अभिनीत फिल्मों से कुछ गीत। गजलों का आनंद लीजिएगा। रात 9:30 पर कार्यक्रम होगा रंगे गजल। रात 10:00 आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रिले किया जाएगा। आकाशवाणी दिल्ली से ही सभा के अंत में समाचार आप सुनेंगे। रात 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये था कार्यक्रमों का विवरण। और कार्यक्रम विवरण में जानकारी हमने आपके साथ साझा की उन कार्यक्रमों की, जो हमारे केंद्र से अब रिले और प्रसारित किए जाएंगे रात 11:00 तक। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 5:58 हुए हैं। अब से कुछ देर में यानी 6:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं।

0: उधर कांगड़ा जिला में जनवरी से अब तक स्वाइन फ्लू के 38 मामले आए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उमेश भारती ने कहा कि इनमें से कोई भी मरीज गंभीर स्थिति में नहीं है। उन्होंने बताया कि स्वाइन फ्लू के शुरुआती लक्षण सामान्य सर्दी जुकाम हो सकते हैं।
1: जनवरी से अभी तक जो है 127 टेस्ट किए हैं, जिसमें से 38 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी गंभीर मामला नहीं। हमने एडवाइजरी भी जारी की है कि लोग जो है वो अपना जब भी सिम्टम आए तो मास्क लगा के रखें और ख्याल रखें एक दूसरे से ना फैले, और दूसरा ये कि अपनी न्यूट्रिशन ठीक रखें, अपना हाइड्रेशन ठीक रखें, पानी ज्यादा पिए, और किसी को भी यदि कोई सर्दी जुकाम या कोई दर्दे या बुखार कोई सिम्टम होते हैं तो तुरंत हॉस्पिटल जाके अपनी जाँच।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 6:05 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम सुरमई सांझ। नमस्कार दोस्तों, शाम के इस खूबसूरत वक्त में आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम सुरमई सांझ में। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त नीलम। आज की शाम कुछ ऐसे नगमों के नाम जिनमें है किसी से मिलने की खुशी, साथ निभाने का भरोसा और कुछ खूबसूरत वादे और मुलाकातों की मीठी यादें। तो आज कोशिश करेंगे आपके दिल को खुश करने की, और जब दिल खुश हो तो कदमों को भी जमीन की परवाह नहीं रहती। जिनसे प्यार की खुशी इतनी हो कि दिल जमीन पर ठहरता ही नहीं, चेहरे पर मुस्कान होती है और मन बस अपनी ही धुन में चलता है, इसी मस्त मौला एहसास के साथ लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत।

0: एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरमई सांझा आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। जी हाँ श्रोताओं, आपने कभी नोटिस किया है कि जिस इंसान का साथ हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उसके साथ वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है। बस इसी छोटी सी बात में छिपी है इस अगले गीत की पूरी कहानी।

जी हाँ, जब अपने किसी पसंदीदा का साथ हो तो वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। और जब बात साथ निभाने की हो तो एक छोटा सा वादा भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि मुश्किल रास्तों पर अक्सर मंजिल से ज्यादा जरूरी होता है किसी का साथ। बिल्कुल कुछ इस गीत की तरह।

सुरमई सांझ ये कार्यक्रम आकाशवाणी धर्मशाला से अभी आपने सुना। शाम के 6:30 वक्त है और अब लेकर हाजिर हैं हम किसान बागवान भाई बहनों के लिए कार्यक्रम मौजा गराइंदियां।

कार्यक्रम मौजा गराई दिया सुनने वाले साढ़े जितने भी किसान बागवान भाई बहन हैं जितने भी श्रोता हैं तिना सारे जो साड़ा प्यार भरिया नमस्कार कने सारे जो राम राम सारे दा कार्यक्रम च करदे स्वागत। जी असा उम्मीद करते हैं कि साढ़े जितने भी श्रोता किसान बागवान भाई भैन हैं सब जड़े से कुशल मंगल होने कने अजकल जड़ा मौसम है स बरसात दाए

बरसाती ते भी अपना पूरा बचाव करा दे होने न, क्योंकि मौसम जड़े हैं सह अपने टाइम के अनुसार जड़े हैं सह होने हैं, कने हर मौसम च असा जो कुछ सावधानियां बरतनिया होंगे, तो बरसात का मौसम भी अपने कने बड़ी ज़्यादा रिस्क लेके आता है, कने साड़ी कोशिश होंगी कि असा सारे जड़े हैं अपने घर कुशल मंगल रहन, कने जड़िया हैं प्राकृतिक आपदा तेना ते तबाही असा बच नहीं सकते, क्योंकि हाँ कभी कभी ऐसे काम हाँ इंसान करी आते प्रकृति का दोहन करी लेंदे, पेड़ पौधे जड़े हैं तिना कारण ही असा कट्टी आ दे तिना दा हनन करी आ दे, ता इसका खामियाजा जड़ा है सांझो भुगतना पवा दा, तो कोशिश करा जड़ा तुहाड़ा आस पास पर्यावरण है अपने घर अखे बखे जड़ी भी जगह है तिथू स्वच्छता सफा साफ सफाई जड़ा है इसका ध्यान रखन, कने पर्यावरण के संरक्षण का भी पूरा ध्यान जड़ा है सह सांझो ही रखना है जी। काला महीना नेरियां राती लगी पियां, कने कल है कृष्ण जन्माष्टमी, तो सारे जितने भी श्रोता हैं किसान बागवान भाई भैन कार्यक्रम सुना कर दे सारे जो साड़ी औरतें जन्माष्टमी दियां बड़िया बड़िया बधाइयां, कने अपनी गलबात असा अगे बधानी है, लेकिन तिसते पहले असा तुसा सारे जो सुनाना है एक लोक गीत गलाई लिया लोक भजन गलाई लिया कुछ भी, तो इसका आनंद लिया बाकी दियां गल्लां इसते बाद कर दें।

0: जी बिल्कुल, भादो महीना कने कालियां राती नेरियां राती अजकल होंदियां तां साड़ा प्रयास जड़ा इस साड़ी कोशिश जड़ी है सारियां दी रहना चाहिए कि अपने जड़े घर हैं अपने घर के अखे बखे जड़ी भी जगह है तिथु साफ सफाई रखन, क्योंकि जिजुआ कंडुआ का जड़ा डर होंदा कने ये डर कई बार कुसी बड़ी दुर्घटना का कारण बनी आता, तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए सांझो कने। तुसा सारे सोचा दे होने कि कार्यक्रम जालू दा शुरू होया यही गल हाँ करी आ दे कार्यक्रम च कि पर्यावरण संरक्षण कने साफ सफाई का ध्यान रखना। तो जी बिल्कुल, अज कार्यक्रम च यही विषय जड़ा असें लेके आए उन पर्यावरण संरक्षण कने स्वच्छता के बारे च अज कार्यक्रम च अस गल करनी है। सारे श्रोतिया ने एक गल असा करनी है कि कभी विचार किया अस अपने घर जालू होने देना तो अस कोशिश करते कि साड़ा घर जड़ा है सै बिल्कुल चकाचक हो, बिल्कुल सफाई हो, कोई धूल मिट्टी ना हो, कने साड़ा घर सारे ते साफ सुथरा लगेगा। जो कि कोई त्रीया बंदा अगर साढ़े घर आता है तो कोई नुक्स ना कड़ी दे कि नहीं इन्हों के घर सफाई नहीं होंगी या इन्हों का घर जड़ा है सह साफ सुथरा नहीं होंगे, खिलारा पिया रहा या धूल मिट्टी होंगी, तो कोशिश साड़ी होंगी कि सब ये करन कि वाह वाह इन्हों घर बड़ा साफ सफाई है। तो यही जड़ा अस अपने घर पर आजमाते ना कि हाँ का घर बिल्कुल साफ सुथरा हो, अपना बरेंडा दिखी लिया, अपना आंगन दिखी लिया, एन चकाचक रखा होंगे असा, तो साड़ी कोशिश होना चाहिए कि जोड़े साढ़े घर के अखे बखे के आले दुआले की जगह है गुआड़ा पछवाड़ा है तिथु भी हाँ साफ सफाई का पूरा ध्यान रखन, कने ना केवल अपने घर के अखे बखे, इंसान होने के नाते साड़ा फर्ज सारे तो बड़ा यही बनता है कि पर्यावरण संरक्षण कने स्वच्छता सारे तो बड़ी साड़ी जिम्मेदारी है। जे असा गलान कि किताबा च पढ़ी के इस दे बारे च सांझो जानकारी मिले या कोई सांझो इस विषय के बारे च समझाए तो भाई ये तो सरासर ना समझी हो जानी, बच्चे वाली गल हो जानी, क्योंकि ये चीज़ा जड़ियाँ सांझो अपने आप ही साढ़े जहन च आदियाँ साढ़े दिमाग च आदियाँ कि पर्यावरण का संरक्षण कितना करी जरूरी है, कने साफ सफाई जी स्वच्छता है सै भी कितनी करी जरूरी है। जी हाँ हाँ बच्चे गलाते ना कई बार कि यह तो कॉमन सेंस होंगी इस शब्द का प्रयोग हाँ अक्सर करते, तो कॉमन सेंस है कि पर्यावरण जड़ा है इसका संरक्षण भी असा करना है, कने स्वच्छता जी है साफ सफाई जी है सै भी सांझो जी है सै बनाई रखनी है ताकि साड़ा जड़ा पर्यावरण है साड़ा समाज है साड़ा अपने प्रदेश की गल करिए अपने देश की गल करिए सब कुछ जड़ा है सै साफ स्वच्छ हो, क्योंकि एक साफ स्वच्छ वातावरण जो है इस ही एक स्वस्थ इंसान जड़ा है सै रही सकता। तो पर्यावरण जो हाँ किसी भी तरह ने दूषित कर गए स्वच्छता हाँ नहीं रख गए कने पर्यावरण ने हस्तक्षेप कर गए बिना मतलब ते हाँ प्रकृतिक जड़िया साड़िया चीज़ें तो इन्होंने छेड़छाड़ कर गए तो तिदा कुसी ना कुसी रूप च जड़ा है सांझो खामियाजा जड़ा है सै भुगतना पौंदा। तो कोशिश करा कि पर्यावरण संरक्षण च कने साफ स्वच्छ अपने इलाके जो अपने देश जो रखने वास्ते असां जड़ी से अपनी भागीदारी जो है जिसे बड़ी चढ़ी करी अगे आन मौजा कराई दिए कार्यक्रम तुसा सुना करदे इस वेले आकाशवाणी दे धर्मशाला केंद्र ते, कने कार्यक्रम च फिलहाल वक्त है एक कमर्शियल ब्रेक दा, ते इसते बाद असा श्रोतियां दा फिर मनोरंजन करना है, किसान बागवान भाई भैणां दा फिर मनोरंजन करना है एक लोकगीत करना है।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला, SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला, SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

जी, पहाड़ों का नज़ारा सच्ची सांझू बड़ा प्यारा लगता। कने इन पहाड़ों के गब्बे असा बैठे इस टाइम कने आकाशवाणी धर्मशाला से तुसा वास्ते प्रसारित करा दे कार्यक्रम मौजा गराई दियाँ। मौजा गराई दियाँ कार्यक्रम च अज जिस विषय पर असा गल करा दे से है पर्यावरण संरक्षण कने स्वच्छता। अच्छा, तो स्वच्छता की गल अस करिए स्वच्छता का मतलब सिर्फ झाड़ू लगाना नहीं है। झाड़ू लाईता कने अपने घरें पोचा लाईता स्वच्छता हुई जी नहीं, अपने घरे का कूड़ा कढ़िया कने जे गली ते बाहर रखीता तसेता बिल्कुल भी स्वच्छता नहीं है, है ना। कने जे गल करिए दुकानदार की, अपनी दुकाना की खरी सफाई करी ली प्यागा आए कने झाड़ू मारी लिया खरा किता कने जितनी भी धूल मिट्टी है साफ करी ली सारी कने सड़क बाहर दुकाना बाहर जो दरवाजा है इसते कन्ने कन्ने ही सड़क पर जो प्लास्टिक के लफाफे पे होता सह भी स्वच्छता नहीं मनी जानी क्योंकि अपनी दुकान ही साफ सुथरी ना हो जो दुकाना के आले दुआले जगह है तो इतों भी साफ सफाई होनी चाहिए। कने जो पिकनिक मनाना गए तो इतों मजा किया खूब सारिया फोटो खिंचिया कने वापिस आते टाइम जरा इतों कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते असें बोतल छट्टी आए कने चिप्स वगैरह खाधे उस पैकेट तू छट्टी आए तो फिर घर तो कुछ हाँ लेके गए हैं तिदे जो रैपर हैं तिच लपेटी के लिए सब तिथों सट्टी आए तो यह भी स्वच्छता नहीं है। स्वच्छता जेड़े ऐसे साड़ा मिले जुले एक प्रयास होना चाहिए कने स्वच्छता सही मायने स्वच्छता होना चाहिए क्योंकि कई बार क्या होंगे दिखा ना हाँ अपने ग्राएं की गल कर लीए हाँ शहर जो तो बड़ा बोलते हैं कि शहर च बड़ा बारी कूड़ा कचरा बिखरिया होंगे। अगर ग्रां की गल करिए कई बार अपने परसनल एक्सपीरियंस कने मैं बोला करती है जी हाँ अपने ग्राएं तो हाँ निकलते तो थोड़ी की दूर जाए कि जी हाँ मनी लिया कि कोई सुनसान दिया रस्ता आता है तो तिथों कई बार दिखा तो कूड़े का ढेर लगे होंगे क्योंकि लोग जिम्मेदारी नहीं समझते तो इन्हें लगता कि बस अपने घर से कूड़ा कढ़ीता तो बस सफाई हुई गई कने यही स्वच्छता है यही स्वच्छता का असली मतलब है। तो स्वच्छता का मतलब यही है दिखा अहां अपना प्रयास

0: करी सकदे। कन्नै कन्नै सरकार जेह्ड़ी ऐ सै बी पूरा प्रयास करा दी ऐ, घरें घरें जेह्ड़े हैन सै कूड़े आह्लियां गड्डियां जेह्ड़ियां हैन सै गलियें च बी जा दियां अंदर, ते सै कैह्दे वास्ते इस सब करा दे कि कूड़ा जेह्ड़ा ऐ सै इक जगह कट्ठा हो ते इसदा सही निपटारा जे सै होए। तो जेह्ड़े कूड़े आह्ले बोलदे कि गिला कचरा लग देना है, सुखा कचरा लग देना है, इसदे पिछे भी कोई ना कोई कारण होंदा, क्योंकि गिले कचरे दी जेह्ड़ी ऐ सै खाद वगैरह बनाई लैंदे कूड़े आह्ले, कन्नै सुखा कचरा जेह्ड़ा ऐ सै जेह्ड़ा रीयूज होने आह्ला ऐ रिसाइकल होने आह्ला ऐ उसे अलग करी लैंदे, कन्नै जेह्ड़ा जलाने आह्ला ऐ सै जलाया जांदा। कन्नै गल्ल कीती जाए प्लास्टिक दी, तो श्रोताओ प्लास्टिक जेह्ड़ा ऐ सै समाज वास्ते, साढ़े देश वास्ते, पूरे पर्यावरण, पूरे मतलब विश्व वास्ते जेह्ड़ा ऐसा एक बड़ा ही बड़ा खतरा है। कई बार अस सोचते कि एक छोटा जिहा पैकेट तो है, चल मैं सट्टी देंगी या मैं सट्टी देंगा तो क्या ही फर्क पौंदा, तो एक पैकेट थमां सट्टिया एक कुनी होर सी सट्टना, एक एक करके हुण थमां आपूं सोचा जालू 10-12 लफाफे कट्ठे होई जाने सै, फिर फकोने फकोंदे तो सै हैं नहीं, असें कट्ठे होई जाते फिर सै जिहड़ा है साड़ी जमीना जो खराब करा दे, जमीना की जिहड़ी उपजाऊपन है तिस जो नष्ट करा दे। तो गां जिहड़ा है सै अहां कियां अपना जिहड़ा भोजन है अपनी खाद्य वस्तुआं जिहड़ी हैं अहां जमीन ते उगाणियां, अगर इस तरीके ने जमीन जिहड़ी है सै अपनी जिहड़ी उर्वरकता है अपनी जिहड़ी एक जमीना च पोषण तत्व वगैरह होंदे सै अगर मुक्की जांगे तो अहां अपना जिहड़ा खाने पीने का क्रम है से कियां जारी रखना, क्योंकि किसान जिहड़ा है इसकी सारे बड़ा हथियार यही है खेतीबाड़ी, है ना। कहीं खेतीबाड़ी ऐसा कर दे, कहीं हाँ जल खेतीबाड़ी कर दे पूरी शिद्दत इतने तो अहाँ का अहें ये भी लगता कि हाँ इतनी मेहनत की है तो अहें इस मेहनत का फल जड़ा सह मिले। कने इस तरीके के काम जलू अहाँ करगे कि प्लास्टिक अहाँ इतू उतू सटना, फिर सै कुत्थी जाई करी जाम लगा दा, फिर सै नाले बंद होई जा दे, फिर इस हाबे ने मच्छर पनपा दे या तो फिर डेंगू होता या दे दियाँ बीमारियां फैल दियाँ, तो जोड़ा नुकसान है सै छोटे दे एक कम्मे ने शुरू होंदा, जियां मेरी छोटी दी लापरवाही है तिस ते शुरू हो जाना या तुहाड़ी छोटी दी लापरवाही है, तो कोशिश करा कि कुत्थी थोआं दिखदे हैं कोई कूड़ा कचरा प्लास्टिक पिया, तो अखे बखे अजकल हर जगह तुहां जो जड़े है कूड़ेदान डस्टबिन जड़ा गलांदे सै कुत्थी ना कुत्थी तो तुहां जो मिली आने। कन्नै कोशिश करा जे हाँ बाहर कुत्थी घूमना चले हो या अपने परिवार कन्नै जांदे हैं कुत्थी भी सफर पर, तो अपने बैगे च एक छोटा जिहा कैरी बैग रखा कि तिस च अपना जड़ा है कूड़ा कचरा बिच पा इत्थों उत्थों सटने ते, क्योंकि अहां सोचदे कि मैं सट्टिया उन्नी नहीं सट्टना तो काम चली पौना, इं नहीं होना, अहां सारे जो कोशिश करना पौनी है, कन्नै पहला कदम जड़ा ऐसे सांझो अपने आप लैना पौना है अपनी। अगर मैं गल करें भाई मैं सच गल लांदी कि मैं अपने बच्चों जो भी समझांदी कि कुत्थी भी जाइए कोई कुछ भी खांदे ना कोई टॉफी खांदे चॉकलेट खांदे अपना रैपर जड़ा ऐसा बैगे च पाई नहीं लो, बैग नहीं है सकता जेबा च पाई किलो, कन्नै जेब भी नहीं तो हत्थे च पकड़ी किलो असै, या तो थोड़ा डस्टबिन मिलता है तिथु सट्टा या फिर जड़ा कचरा ऐसे अपने घर आई करी कूड़ेदान च पा, जो कि अगले दिन चलो कूड़े वाली गड्डी होगी तो सै इस हाबे ने कूड़े ढंगे ने लेके जाएंगे, कहीं इसका सही तरीके ने निपटारा करगे। तो इस हाबे ने साढ़े छोटे छोटे जोड़े प्रयास हैं ना, इसने असा एक अच्छी पहल जैसे करी सकते पर्यावरण संरक्षण के योगदान च भी, कन्नै स्वच्छता साफ सफाई जी अस करना चाहते या रखना चाहते अपने समाज अपने देश कन्नै अपने पूरे विश्व। तक गलबात जो थोड़ी देर वास्ते विराम देंदे हैं कार्यक्रम च, एक छोटा जिहा कमर्शियल ब्रेक असा लेना है, इसके बाद एक और लोकगीत सुनना है।
1: आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों में शुरू किए हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां साधारण बीमारियों के साथ ब्लड प्रेशर शुगर कैंसर जैसी बीमारियों की जांच और निशुल्क इलाज भी होगा।
2: हर केंद्र पर टेलीमेडिसिन सुविधा से उपलब्ध होगा विशेषज्ञों का परामर्श, साथ ही बेहतर स्वास्थ्य के लिए होगा योगा और व्यायाम प्रशिक्षण भी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी।

जी इस वेले तुसीं सुना करदे हन कार्यक्रम मौजा कराई दी आकाशवाणी दे धर्मशाला केंद्र ते। जी हाँ, पर्यावरण संरक्षण कने स्वच्छता दे बारे च अज असां गल करा दे। हुण गल करनी है असां पेड़ पौद्यां दी। पेड़ पौद्यां दा संरक्षण बड़ा ही जरूरी है श्रोताओ, क्योंकि पेड़ जिहड़े हन असें ना केवल सानू लकड़ी दिंदे, ना केवल साढ़े पशु जिहड़े हन तिन्हां जो चारा दिंदे, बल्कि पेड़ जिहड़े हन हवा जो शुद्ध करदे, कने गर्मी जो घटांदे। इस तरीके ने जिहड़ा संसार च जिहड़ी ग्लोबल वार्मिंग जिहड़ी बड़ा करदी है, इक धरती दा तापमान जिहड़ा बड़ा करदा है, इस ते भी साढ़ा बचाव जिहड़ा इस पेड़ां दे कारण ही होंदा। तो कोशिश करा कि जालू भी बड़ी है जरूरत पर सानू पेड़ कटना पोए तो पेड़ जिहड़ा है जरूर असा लाना है। कने पेड़ जालू लाना है तो इसकी फोटो खिंची के सैल्फी लेके जिहड़ी असें इस पर पाई थी अपनी सोशल मीडिया पर, ये करना इतना कई काम नहीं है। इसके बाद जिहड़ा असें पेड़ लाया है, तुसीं पानी देना, इसकी देखभाल करना, तुसीं पशुआं ते बचाना, ये भी साड़ी जिम्मेदारी होना चाहिए। तो ही जिहड़ा पेड़ लाने का साड़ा प्रयास है इसे सफल होना है। कने इसके कन्ने कन्ने सानू ये भी कोशिश करनी है कि पानी जड़ा है तो इस चीज़ को बचाना है। बूंद बूंद जड़ा जल है कीमती है, कने आने वाला जड़ा जड़ा कल है साड़ा, तो इस वास्ते अगर जल संरक्षण असा हल्ली ते कर

कुथी हाँ नलका बगदा दिखा रहे थे, वो बंद करा, कुछ दी जड़ी टूटी से लीक होवा दी थोड़ी थोड़ी, तो उतना फौरन इलाज करा, क्योंकि जियाँ बूंद बूंद पौंदी तो घड़ा भरी आंदा, तो इं बूंद बूंद अगर टपकती रहे तो घड़ा खाली भी हो सकता। तो छोटी छोटी जो आदत हैं अस अपने जीवन च अपनी दिनचर्या च शामिल करनी है, कने पर्यावरण संरक्षण कने स्वच्छता अपने आस पास अपने पर्यावरण अपने वातावरण अपने देश अपने विश्व जो साफ स्वच्छ करने वास्ते असा मिली जुली करी सहयोग देना है। अज की गलबात जी है इतों ही मुकती है, चलते चलते अस कार्यक्रम च संझा दे बेले तुहानू जो एक होर लोक भजन जड़ा है से सुना करते हैं, तो आनंद लिया इस लोक भजन का।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7 बजने को है कुछ ही देर में। पहले हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे। समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और बेल्जियम ने आज व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार में विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती भागीदारी का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया और इसे समय पर लागू करने का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह के गठन की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण

0: माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश और एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने यह बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिक्षा क्षेत्र में भारत को नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। किदांबी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में कनाडा के विक्टर लाई को हराया, जबकि सात्विक और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी ने फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव को हराया। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला तनिषा क्रेस्टो को हार का सामना करना पड़ा। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में आज ग्रुप ए में भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत ने पहले मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान व बागवान भाई बहनों को हमारा नमस्कार।
7: किसान श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि किसान वाणी कार्यक्रम के माध्यम से हम सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी आपको समय समय पर देते रहते हैं। किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी शिमला के मीडियम वेव से प्रत्येक मंगलवार, वीरवार और शनिवार को शाम 7:10 से 7:45 तक किया जाता है। इसे उसी समय आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से भी रिले किया जाता है। इस अंक में मैं हूँ कुलदीप।
6: और मैं हरी सिंह चंदेल।
7: हरी जी, कैसे हाल चाल है आपके?
6: कुलदीप जी, मैं तो ठीक हूँ, और उम्मीद करते कि हमारे जो किसान और बागवान भाई बहन है वो भी स्वस्थ होंगे और आजकल अपने कृषि और बागवानी के कार्य में जो है व्यस्त होंगे।
7: जी बिल्कुल। वैसे तो हरी जी, हमारे जो सभी किसान और बागवान भाई बहन वर्ष भर काफी ज्यादा व्यस्त रहते हैं, लेकिन जो आजकल उनकी व्यस्तता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए काफी सारी जो फसलें हैं उनके खेतों में या बाग बगीचों में तैयार हो चुकी है, और साथ ही साथ आने वाली फसलें हैं उसकी तैयारी भी करनी है, और देखिए बरसात का मौसम चल रहा है, तो बरसात के मौसम में सभी फसलों का ध्यान रखना है कि कोई रोग या कीट या कोई बीमारी आपकी फसलों में तो नहीं लगा है, और अगर कोई रोग या कीट उनकी फसलों में लगा है तो उसके निदान के लिए समय रहते उनको उपाय कर लेने हैं।
6: जी, और बात करें बागवानी की कुलदीप जी, हिमाचल की आर्थिकी की रीढ़ मानी जाने वाली बागवानी के लिए ये महीना जो है व्यस्तता से भरा रहता है
7: जी,
6: क्योंकि इसमें ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में सेब की तुड़ाई, ग्रेडिंग, पैकिंग और उन्हें मंडी तक भेजने का काम जो है अपने चरम पर होता है
7: जी।
6: इन दिनों बागवान भाई जहाँ पर तुड़ाई पूरी हो चुकी है वहाँ तौलिए साफ कर सकते हैं। कीटों और बीमारियों से बचाव के लिए उचित कवकनाशी का छिड़काव भी हमारे बागवान भाई इन दिनों कर सकते हैं
7: जी। तो देखिए हरी जी, सबसे पहले अपने सभी किसान और बागवान भाई बहनों को जानकारी देना चाहेंगे आज के मुख्य मुख्य आकर्षणों की। तो देखिए आज काम की बातों के अंतर्गत हम बातचीत करेंगे अपने किसान भाइयों से प्राकृतिक खेती में उर्वरक प्रबंधन के बारे में। देखिए प्यारे प्यारे पहाड़ी लोकगीत भी हम अपने किसान और बागवान भाई बहनों के लिए लेकर आए हैं, और एक जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण हम सुनवाएंगे जिसका विषय रहेगा
6: खरीफ मौसम में मक्की में एकीकृत कीट प्रबंधन। इस विषय पे ज्यादा जानकारी देंगी डॉक्टर पूजा भरमेरा और उनसे बातचीत करेंगी निशा शर्मा
7: जी। तो देखिए हरी जी, हम अपने किसान भाइयों को बता चुके हैं कि आज हम बातचीत करेंगे प्राकृतिक खेती में उर्वरक प्रबंधन के बारे में। देखिए हरी जी, अगर हम बात करें तो आज जो हमारी खाद्य श्रृंखला है वो जहर से युक्त हो चुकी है
6: जी।
7: किसानों को उसकी फसल का पूरा लागत मूल्य भी कई बार प्राप्त नहीं होता है। उपभोक्ता जो है वो जहर युक्त खाद्य आहार खाने पर मजबूर हो चुका है। यदि इस जहर युक्त खाद्य आहार से बचना है तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि ना तो जहर उगाना है और ना ही हम खाएंगे और ना ही किसी और को खाने देंगे। इसका एक ही हल हो सकता है कि हम जो है वो प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हो
6: जी। किसान भाइयों, देखने और सुनने में लगता है कि जीरो लागत कुछ भी नहीं है, कुछ तो खर्च करना पड़ता होगा, पर जब आपको फसल उत्पादन के लिए कुछ भी खरीद कर ना डालना पड़े तो आप इसे क्या कहेंगे? जो भी खेत में डालना है तो वही डालना है जो किसान के घर या खेत में मौजूद है या उगता है। तो किसान भाइयों बताइए कि इसमें क्या अतिरिक्त खर्च हुआ? इसमें किसी भी प्रकार का रसायन या कीटनाशक डालने की आवश्यकता नहीं होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसान जो है जहर मुक्त भोजन को पैदा कर रहा है और अंतिम उपभोक्ता तक उसको पहुँचा रहा है
7: जी। यानी हरी जी, आपके कहने का तात्पर्य है कि अगर हम प्राकृतिक खेती करना चाहते तो प्राकृतिक खेती का मतलब ही यही होता है कि आपको उत्पादन के लिए बाहर से कोई भी वस्तु नहीं लानी है, जैसे खाद है, उर्वरक है, जो स्थानीय तौर पर उपलब्ध आपके पास साधन है जैसे कि गोबर है या अन्य जो उपलब्ध सामग्री है उसी का उपयोग करके आपको अपने कृषि और बागवानी करनी है।
6: किसान भाइयों, जिस प्रकार मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार पौधे को भी अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत होती है, लेकिन प्राकृतिक खेती में इन पोषक तत्वों की पूर्ति करने का तरीका रासायनिक खेती से अलग होता है। पौधे को मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे प्रमुख पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन सभी फसलों को हर पोषक तत्वों की समान मात्रा में आवश्यकता नहीं होती, इसलिए संतुलित पोषण बहुत महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक खेती में फसल

0: को पोषण देने के लिए जिन संसाधनों का उपयोग किया जाता है उनमें आते हैं जीवामृत, घन जीवामृत और आच्छादन यानी कि मल्चिंग।
1: जी, तो हरी जी सबसे पहले बात करेंगे जीवामृत के बारे में।
0: जी
1: तो जीवामृत की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो जीवामृत में बहुत अधिक संख्या में लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो भूमि में जामण का काम करते हैं और पौधों के लिए आवश्यक तत्व भी है ये प्रदान करते हैं। साथ ही साथ अगर हम जीवामृत की विशेषताओं की बात करें हरी जी, तो जीवामृत मिट्टी में विशाल प्राकृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है और फसल के लिए पोषक तत्व उपलब्ध करवाता है। जीवामृत को 2 हफ्ते में एक बार या फिर कम से कम महीने में एक बार इसका उपयोग जो है करना सबसे बेहतर माना जाता है। ह्यूमस बनाने के लिए आच्छादन का प्रयोग जीवामृत गुणों को बढ़ा देता है। जीवामृत को उर्वरक और भारी कार्बनिक खाद के विकल्प के रूप में भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। बात करें इसके बनाने की सामग्री की, तो देखिए इसके लिए आपको पानी लेना है 200 लीटर, देसी गाय का मूत्र आपको लेना है 5 से 10 लीटर, गुड़ लेना है लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम, बेसन 1 से 1.5 किलोग्राम, खेत या मेड़ की मिट्टी आपको लेनी है लगभग 1 मुट्ठी के आसपास।
0: जी, अब बात कर लेते हैं इसके बनाने की विधि की। तो सबसे पहले आपने एक ड्रम में 200 लीटर पानी भरकर उसमें 5 से 10 लीटर गौमूत्र मिला लेना है। फिर इसमें 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर भी मिला लेना है। उसके बाद इसमें 1 से 1.5 किलोग्राम गुड़ भी मिला दें। फिर 1 से 1.5 किलोग्राम बेसन और 1 मुट्ठी खेत के मेड़ की मिट्टी भी इसमें मिला देनी है।
1: जी
0: अब इस घोल को घड़ी की सुई की दिशा में आपने धीरे धीरे घोलना है। इस मिश्रण से भरे ड्रम को जूट की बोरी से ढककर 72 घंटे के लिए रख देना है। अगर मौसम जो है सर्दियों का हो तो इसे 4 से 5 दिन रहने दें। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घड़ी की सुई की दिशा में धीरे धीरे अपने इसको हिलाते रहना है। बात करें इसके भंडारण अवधिकाल की, तो इस घोल का उपयोग 14 दिन के अंदर अंदर कर लें, लेकिन तैयार होने के 7 से 10 दिन के दौरान सबसे अच्छे परिणाम देखने को जो है आपको मिलेंगे।
1: जी तो ये तो बात हुई किसान भाइयों जीवामृत की। साथ ही साथ बात करना चाहेंगे हम घन जीवामृत की। तो घन जीवामृत जीवाणु युक्त सूखी हुई गोबर का जामण है जिसे बुआई के समय या पानी के 2 से 3 दिन बाद आप दे सकते हो। ये फसल की सभी गौण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता पूरी करता है। इसके उपयोग करने से कृषि भूमि में 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद या फिर केंचुए की खाद या फिर यूरिया या डाई अमोनियम फास्फेट डालने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसके लाभों की बात करें यानी घन जीवामृत के लाभों की बात करें किसान भाइयों, तो घन जीवामृत जीवाणु युक्त सूखी गोबर भूमि को उपजाऊ बनाने का कार्य करता है। ये भूमि की उर्वरा क्षमता में भी काफ़ी ज़्यादा देखिए सुधार करता है। इसके उपयोग से फसलों को तत्काल ऊर्जा मिलती है और आपकी जो फसलें हैं वो स्वस्थ तैयार होती हैं। सीमित सिंचाई एवं वर्षा ऋतु आधारित क्षेत्रों में भी फसल को बहुत अच्छा लाभ इसके कारण पहुंचता है। बात करें इसके बनाने की सामग्री की, तो किसान भाइयों आपको लेना है देसी गाय का सूखा गोबर लगभग 1 क्विंटल के आसपास, गुड़ या फलों का गूदा भी किसान भाइयों आपको लेना है 1 किलोग्राम, बेसन आपको लेना है लगभग 2 किलोग्राम के आसपास और देसी गाय का मूत्र आप आवश्यकता अनुसार ले सकते हो।
0: जी, बात करें इसकी बनाने की विधि की, तो किसान भाई इसको अपने खेत पर ही तैयार कर सकते हैं। इसके लिए देसी गाय का सूखा गोबर लें। यदि देसी बैल भी हो तो 50-50 किलोग्राम गाय और बैल दोनों का आप ले सकते हैं। इसमें 1 किलोग्राम गुड़ या मीठे फलों का 1 किलोग्राम गूदा और 1 किलोग्राम बेसन डालें। यदि गोबर सूखा है तो थोड़ा सा गौमूत्र डाल लें। अब इसको फावड़े या किसी कस्सी से अच्छे प्रकार मिलाकर छाया में रख दें। किसान भाइयों, घन जीवामृत तैयार करते समय यह अवश्य ध्यान रखें कि यदि शीतलहर है उसे बोरी से ढक दें, नहीं तो ढकने की आवश्यकता नहीं है। इस पर बारिश का पानी और सूर्य की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए।
1: जी तो बीजामृत के लाभों की बात करें, तो बीजामृत बीजों में अंकुरण क्षमता बढ़ाता है, बीजों की सुप्तावस्था जो है वो बीजों की जल्दी टूटती है, बीजों में उम्र बढ़ने के निरोधक समाप्त होते हैं और बीज जो है वो लंबी आयु के होते हैं यानी काफी समय तक आप इनका उपयोग कर सकते हो। बीजों में एक समान अंकुरण होता है। आरंभिक अवस्था से ही मौसमी कीटों और रोगों से बचाव आप बीजामृत के द्वारा अपने बीजों का कर सकते हैं और साथ ही साथ बीजामृत के उपयोग से स्वस्थ जो है वो पौधे तैयार आप कर सकते हो। अगर आप बीजामृत बनाना चाहते हैं तो आपको सामग्री क्या क्या लेनी है। पानी लेना है 20 लीटर, देसी गाय का मूत्र 5 लीटर, देसी गाय का गोबर लगभग 5 किलोग्राम के आसपास, चूना लेना है 50 ग्राम और खेत या मेड़ की मिट्टी आपको लेनी है 1 मुट्ठी के आसपास।
0: जी, बात करें इसके बनाने की विधि की, तो सबसे पहले आपने पानी में गौमूत्र मिलाने के बाद इसमें ताज़ा गोबर जो है मिला लेना है, उसके बाद उसमें चूना मिला देना है, उसके बाद घोल में 1 मुट्ठी खेत की मेड़ या फसल की जड़ के पास की मिट्टी मिला लें, उसके बाद सभी सामग्रियों को मिलाने के बाद इस घोल को लकड़ी के डंडे की सहायता से घड़ी की सुई की दिशा में धीरे धीरे घुमाकर मिला लेना है। इसको छांव में बोरी से ढककर रात भर के लिए रख दें। इस घोल को 24 घंटे रखने के बाद आप बीजों को जो है उपचारित कर सकते हैं। बात करें इसके उपयोग की, तो इसका उपयोग आप अनाज वर्गीय फसलें और दलहनी फसलों में कर सकते हैं। दलहन के बीजों का छिलका पतला होने के कारण हाथों से रगड़ने पर निकल जाता है, इसलिए चयनित बीज को फर्श पर फैलाकर अनुमान से बीजामृत उस पर छिड़क दें। दोनों हाथों की हथेलियां फैलाकर बीजों को धीरे धीरे ऊपर नीचे कर उन्हें मिला लें, उसके बाद छाया में सुखाकर बीज जो है आप बो सकते हैं।
1: जी,
0: इसके अलावा आप फलों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। पौधशाला में बीज डालने के पहले बीज का संस्कार करें, उसके बाद ही उनकी रोपाई करें। पौधशाला से पौधे निकालकर उनकी जड़ों को बीजामृत में डुबोकर ही रोपाई करनी चाहिए।
1: तो किसान भाइयों, ये तो हुई बातचीत प्राकृतिक खेती में उर्वरक प्रबंधन के बारे में। तो देखिए हरि जी, इस जानकारी के बाद हमारे सभी किसान और बागवान भाई बहनों को इंतजार होगा एक प्यारे से पहाड़ी लोकगीत का। तो आइए सुनते हैं समूह स्वरों में ये प्यारा सा पहाड़ी लोकगीत।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना समूह स्वरों में ये लोकगीत। तो कुलदीप जी, अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है जानकारीपूर्ण बातचीत के पुनः प्रसारण का, जिसका विषय है खरीफ मौसम में मक्की में एकीकृत कीट प्रबंधन। इस विषय पे ज्यादा जानकारी देंगी डॉक्टर पूजा भरमेरा जी और उनसे बातचीत करेंगी निशा शर्मा।
1: किसान भाइयों नमस्कार। कृषि जगत के इस अंक में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारी। और जानकारी का हमारा जो विषय है वो है खरीफ मौसम में मक्की में एकीकृत कीट प्रबंधन। और आज हमारे साथ इसी संदर्भ में ज्यादा जानकारी देने आ रही हैं डॉक्टर पूजा भरमेरा। तो डॉक्टर पूजा, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
2: धन्यवाद निशा जी।
1: डॉक्टर साहब, तो मक्की में कई तरह के रोग और कीट लग जाते हैं, तो किस तरह से कैसी कैसी किस्में लगानी चाहिए और किस तरह से कीट बीमारियों का प्रबंधन जो है वो करना चाहिए, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मक्की के जो मुख्य कीट हैं, बीमारियां हैं, वो कौन कौन सी हैं, हमारे किसान भाइयों को विस्तार से बताएं।
2: जी निशा जी, सबसे पहले किसान भाई बहनों को मेरी ओर से नमस्कार। मक्की हिमाचल प्रदेश की खरीफ की मुख्य फसल है और विभिन्न कीट और बीमारियों की वजह से इसमें काफी नुकसान होता है। और इसके मुख्य कीट हैं तना बेदक, बालों वाली सुंडियां व टिड्डे, कटुआ कीड़ा, काला भृंग तथा सफेद सुंडी और धारीधार भृंग। और बीमारियों में है जीवाणुज तना बिगलन, पत्तों का झुलसा, भूरा धारीदार रोग, भुट्टे की कंगियारी, बीज गलन व पौध झुलसा रोग और अंत में पत्तों का झुलसा।
1: तो जी डॉक्टर साहब, देखिए आपने बात की कीटों के बारे में, तो सबसे पहले आपने कहा तना भेदक जो कीट है, तो इसके बारे में आप बताएं कि इस कीट की पहचान जो है हमारे किसान भाई किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से अपनी फसल का बचाव कर सकते हैं।
2: इसके लक्षण में ऐसा होता है कि शुरुआत में जो सुंडियां होती हैं वो पत्तों में घुस जाती हैं और उसमें छोटे छोटे छेद कर देती हैं, फिर वो सुंडियां बाद में तने के अंदर चली जाती हैं और तने को खाती हैं और उसे एकदम से खोखला कर देती हैं, जिसके कारण जो पौधा होता है वो सूख कर मुरझा जाता है
1: जी।
2: और ये वाली जो सुंडियां होती हैं ये छोटे पौधों में ज्यादा नुकसान करती हैं और बड़े पौधों में कई बार ये भुट्टे के अंदर चली जाती हैं और जो दाने पक रहे होते हैं उनको खाती हैं। इसके रोकथाम के लिए किसान भाई बहनों ने ऐसा करना है कि खेत में हल चलाना है, जिससे वो जो खेत का घास होगा और खरपतवार होंगे वो नष्ट हो जाएंगे
1: जी।
2: उसके बाद इसमें बिजाई के समय पर आपने बीज की मात्रा जो है वो ज्यादा रखनी है, ताकि बाद में अगर कोई आपको कीटग्रस्त पौधा दिखता है तो आप उसको निकाल सकें
1: जी।
2: बिजाई के समय आपने बीजों को फोरेट की दवाई उसमें डालकर आपने उसका उपचार करना है, फिर उसकी आपने बिजाई करनी है
1: जी।
2: और कटाई के समय आपने पौधों को जमीन की सतह के नजदीक से काटना है और जितने भी अवशेष होंगे उसको इकट्ठा करके नष्ट कर देना है। इसमें कृपया आप एक सावधानी बरतें, जो आपने चारे के लिए फसल लगाई होगी उसमें कीटनाशक का प्रयोग ना करें
1: जी। जी,
2: इसके अलावा फिर बालों वाली सुंडियां व टिड्डे हैं, इन ये सुंडियां जो होती हैं वो छोटे पौधों के नर्म पत्तों को और उनके तनों को खाती हैं और ये जो सुंडियां होती है ये झुंड में रहकर पौधों को हानि पहुंचाती हैं। इसमें आपने क्या करना है, जो झुंड में पल रही सुंडियां होंगी आपने उसको इकट्ठा करना है और नष्ट कर देना है और आपने फॉलिडोल 2% धूल को 20 से 25 किलोग्राम हेक्टेयर में छिड़कना है
1: जी।
2: इसके अलावा कटुआ कीड़ा, काला भृंग और सफेद सुंडी भी मक्की की फसल में तबाही करते हैं। ये जो कीट होते हैं ये जमीन के अंदर छिपे रहते हैं और पौधों को उगने से पहले ही हानि पहुंचाते हैं
1: जी।
2: इसमें आपने गली सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करना है, इसमें भी आपने बिजाई के समय अधिक बीज का प्रयोग करना है और बिजाई के समय आपने 2 लीटर क्लोरोफायरीफोस का इस्तेमाल करके उसको रेत में मिलाकर जमीन में मिला देना है
1: जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो अब धारीदार भृंग जो होता है वो किस तरह का होता है और इससे बचाव के लिए हमारे किसान

0: क्या कर सकते हैं?
1: इसमें जो भृंग होता है, जब पौधे में नर फूल निकलना होता है, उस अवस्था में वो पौधे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसमें आपने क्या करना है, जब पौधे में नर फूल आ रहे होंगे, तब आपने 1250 मिलीलीटर एंडोसल्फान या 625 मिलीलीटर मिथाइल पैराथियन को 625 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर उसका छिड़काव करना है।
0: जी डॉक्टर साहब, देखिए आजकल जो मक्की की फसल है उसमें फॉल आर्मी वर्म की समस्या जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो हमारे किसान भाई जो हैं वो किस तरह से पहचान सकते हैं इस कीट को, तो इसके बारे में बताएं आप विस्तार से।
1: जो फॉल आर्मी वॉर्म है वो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा नामक कीट से मक्की में आता है।
0: जी
1: इसकी हर स्टेज जो होती है वो मक्की की फसल को नुकसान पहुंचाती है। मक्की के पौधे से उगने से लेकर भुट्टे की विकास तक ये जो कीट है वो नुकसान पहुंचाता है। इसमें जो कीट होता है वो पूरे पत्ते के ऊपरी सतह को खा लेता है, जिससे मक्की का पत्ता जो होता है वो पेपर की तरह रह जाता है, और उसके बाद ये पत्ते में छेद कर देता है, जिसकी वजह से मक्की के सारे पत्ते झड़ जाते हैं।
0: जी
1: ये मक्की के भुट्टे के अंदर भी घुस जाता है, उसके दानों को खा लेता है, ये नर फूलों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए आपने गर्मियों में अपनी खेत में बिजाई करने से पहले उसे मिट्टी को आपने सूरज के एक्सपोजर के लिए छोड़ना है, ताकि जो उसके बच्चे हैं वो मर जाएं।
0: जी
1: फिर आपने नीम केक जो है वो 200 केजी पर एकड़ फील्ड में मिट्टी की तैयारी के समय उसको मिलाना है। आपने मेढ़ों को एकदम से साफ रखना है, और आपने मेढ़ों में मैरीगोल्ड हो गया, आपका तिल हो गया, आपकी सौंफ होगी, उन पौधों को उगाना है।
0: जी
1: ये पौधे जो होते हैं एक तरह का केमिकल जो है वो सिक्रीट करते हैं, जो इन कीटों के लिए नुकसानदायी होता है।
0: जी तो डॉक्टर साहब आप बता सकते हैं कि ये जो फॉल आर्मी वर्म है ये किस तरह का दिखता है, ताकि हमारे किसान भाई पहचान पाएं कि यही कीट है ये।
1: इसकी सुंडियां जो भूरी से हरे रंग की होती हैं, और इसमें पीले रंग की को धारियां मिलेंगी।
0: जी
1: जो बड़ी वाली सुंडी होती है उसका जो सिर होता है वो भूरे से लाल कलर का होता है, और इसकी जो आंखें होती हैं वो वाई शेप की होती हैं,
0: जी
1: और जो इसका बड़ा वाला जो नर मक्खी होती है वो आपको भूरे रंग की होगी, जिसमें आपको सफेद धब्बे मिलेंगे।
0: जी बिल्कुल, तो देखिए इस तरह से हमारे किसान भाई पहचान सकते हैं कि कौन सा कीट है, कौन सा कीड़ा है जो आपकी फसल पर लग गया है, तो उपचार भी आपको उसी तरह से करना है। तो डॉक्टर साहब अब बीमारियों की थोड़ी बात कर लेते हैं, हमारी मक्की की फसल में जो बीमारियां हैं वो कई तरह की हैं, कौन कौन सी हैं उसके बारे में बताएं।
1: इसमें सबसे पहली बीमारी है जीवाणु तना बिगलन। इसमें ऐसा होता है जो जब फसल में फूल आ रहे होते हैं तब ये बीमारी जो होती है उभरती है। इसमें जब जमीन की सतह से ऊपर का जो तना होता है वो गहरा भूरा रंग का हो जाता है, और वो बाद में पीला होकर नरम पड़ जाता है, और जहाँ पर बीमारी हुई होती है वहाँ से जो तना है वो टूट जाता है। इसके प्रबंधन के लिए आपने ऐसा करना है, जो फसल में आप जब उर्वरक डालते हैं नाइट्रोजन या पोटाश, उसको केवल निर्धारित मात्रा में ही डालें, अधिक मात्रा में उर्वरक का उपयोग ना करें।
0: जी
1: खेत में आप पानी को ना ठहरने दें, उसकी निकासी का आप सही से प्रबंध करें,
0: जी
1: और बिजाई के समय आपने ब्लीचिंग पाउडर को अपने खेत में डालना है, और इसको अपने पौधों के इर्द गिर्द भी गुड़ाई के समय डालना है, और नर फूलों के आने के एक सप्ताह से पहले पहले अपने पौधों के इर्द गिर्द भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करना है, और बीमारी का लक्षण आते ही आपने इसका घोल बनाकर पौधों को अच्छी तरह से गीला करना है। आप इसके लिए रोग प्रतिरोधी किस्में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, तो इसके बाद बात करेंगे भुट्टे की कंगियारी रोग, तो इसके लक्षण क्या हैं और इसका उपचार के बारे में बताइए।
1: इस बीमारी में जब फूल और भुट्टे बनते हैं उस टाइम पे इसके लक्षण जो होते हैं वो दिखते हैं, और बाद में जो भुट्टा होता है वो काले पाउडर में बदल जाता है। इस बीमारी के रोकथाम के लिए आपने बीज का उपचार विटावैक्स या वेविस्टिन से करना है।
0: जी
1: आप अपने खेत से जितने भी आपके जो रोगी पौधे होंगे उनको निकाल दें, और जितने भी आपके खेतों में पहले से बीमारी आ रही हो उन खेतों में आपने 4 से 5 वर्ष का फसल चक्र अपनाना है।
0: जी बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब देखिए बीज गलन और पौध झुलसा रोग जो है इसके बारे में बताएं, इसके लक्षण हमारे किसान भाई किस तरह से पहचानेंगे।
1: इसमें जो होता है, अगर आप रोग ग्रसित बीज की बिजाई करते हैं, विशेषकर आप गीली और ठंडी भूमि में जब उसकी बिजाई करते हैं, तब जब बीज होता है

0: है वो उगने से पहले ही मर जाता है, या फिर अगर पौधा निकल आए तो वो उस टाइम मर जाता है, उसका जो तना होता है वो सतह के पास से सड़ जाता है
1: जी।
0: इसके लिए आप सिर्फ अनुमोदित किस्मों की बिजाई करें और बीज का आप थिरम से भी उपचार करें, और इस बात का ध्यान रखें कि आप बिजाई के समय आपकी जो भूमि हो वो गीली या ठंडी ना हो।
1: जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, इसके बाद चलते चलते आप हमारे किसान बागवान भाई बहनों को और क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मेरा किसान भाई बहनों से यही अनुरोध रहेगा कि वे विभाग की ज़्यादा से ज़्यादा सेवाओं का फ़ायदा उठाएं।
1: जी, तो डॉक्टर साहब देखिए, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आज आपने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को खरीफ के मौसम में मक्की में एकीकृत कीट प्रबंधन के बारे में। इन सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद निशा जी।
2: तो किसान और बागवान भाई बहनों, ये तो सुना आपने जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण, जिसका विषय था खरीफ मौसम में मक्की में एकीकृत कीट प्रबंधन, और हमें इस विषय में अधिक जानकारी दे रही थी डॉक्टर पूजा भरमेरा और इनसे जानकारी हासिल कर रही थी निशा शर्मा। तो देखिए हरि जी, अब इस जानकारी के बाद हमारे सभी किसान और बागवान भाई बहनों को इंतजार होगा एक और प्यारे से पहाड़ी गीत का। तो आइए सुनते हैं कृष्णलाल सहगल की आवाज़ में ये प्यारा सा पहाड़ी लोकगीत।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना कृष्ण लाल सहगल की आवाज में ये लोकगीत।
1: तो इसी के साथ हरी जी, घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही है कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने का। तो अपने सभी किसान और बागवान भाई बहनों से अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर 7:42 हुए हैं। कुछ ही देर में यानी 7:45 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार और 8 बजे विधानसभा समीक्षा भी आकाशवाणी शिमला से ही रिले की जाएगी।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार हिमाचल। प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना 2027 का द्वितीय चरण जनसंख्या गणना 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान आपके घर आने वाले प्रगणक आपसे आधिकारिक रूप से प्रकाशित कुल 40 प्रश्न पूछेंगे। आपका हर एक सही उत्तर आने वाले कल की बेहतर नीतियों का आधार बनेगा। अपने घर आए प्रगणकों का सहयोग करें और पूर्णतः सही एवं सटीक जानकारी दर्ज कराएं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में माइनिंग के लिए अलग विभाग बनाने व नदियों से जमा सामग्री हटाने के लिए नई ड्रेजिंग नीति लाएगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य के सभी पात्र सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा ओपीएस का लाभ। विधानसभा में आज 4 महत्वपूर्ण विधेयक पारित। भारतीय स्टाम्प विधेयक पर सत्ता पक्ष व विपक्ष में हुई तीखी बहस। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र संपन्न। सत्र में कई महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा। विपक्ष का आरोप, अफरा तफरी वाला रहा सत्र का माहौल। और 2 दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय जल सुरक्षा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की जताई जरूरत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार माइनिंग के लिए अलग विभाग बनाने और नदियों से जमा सामग्री हटाने के लिए नई ड्रेजिंग नीति लाने की तैयारी कर रही है। शिमला में आयोजित प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन की बैठक में आज प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए दूसरे राज्यों की व्यवस्थाओं से भी इनपुट लिया जाएगा। बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी के सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में 5 प्रमुख नदियां हैं, जिनकी ड्रेजिंग और डी लिस्टिंग व्यवस्थित तरीके से की जाए तो राज्य सरकार को 2 से 3 हजार करोड़ रुपए तक की आय हो सकती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में आई आपदा के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नदी में जमा सामग्री हटाने के लिए ड्रेजिंग कराने का सुझाव दिया था। इसके बाद उद्योग विभाग ने ड्रेजिंग की अनुमति दी, लेकिन माइनिंग की अनुमति न मिलने और अगली बरसात में काफ़ी सामग्री बह गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही की एक बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ड्रेजिंग के दौरान रॉयल्टी न लेने का सुझाव दिया, लेकिन राज्य सरकार का मानना है कि रॉयल्टी उसका अधिकार है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नदियों में ड्रेजिंग का काम वन निगम के जरिए किया जा रहा है और इससे राज्य को 100 से 200 करोड़ रुपए तक की आय हो रही है। इससे पहले उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने स्पष्ट किया कि ड्रेजिंग और माइनिंग अलग अलग प्रक्रियाएं हैं और ड्रेजिंग के लिए सरकार नई नीति बनाएगी। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या वन संरक्षण अधिनियम के तहत मंजूरी मिलने की है। चौहान ने बताया कि पूरे हिमाचल में करीब 324 साइट्स हैं, जिनमें अभी तक केवल 5-6 जगहों पर वन मंजूरी मिल पाई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक विक्रम ठाकुर और राकेश जम्वाल ने भी इसी मामले पर अनुपूरक सवाल पूछे और ड्रेजिंग से निकलने वाली सामग्री के मामले में घोटाले की आशंका जताई। इस पर उद्योग मंत्री ने कहा कि हिमाचल में माइनिंग से रॉयल्टी की आय वर्ष 2024-25 में 356 करोड़ रुपए रही, जबकि पिछली सरकार के समय ये करीब 240 करोड़ रुपए थी। उन्होंने कहा कि नई माइनिंग नीति के बाद राजस्व में वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश के सभी पात्र सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान विधायक दीपराज के पेंशनरों से जुड़े मूल सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के प्रति संवेदनशील है और लंबित वेतन, पेंशन तथा दूसरे वित्तीय लाभों का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक कर्मचारियों और पेंशनरों को करीब 2,229 करोड़ रुपए के लंबित वेतन और पेंशन संबंधी एरियर का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हुए थे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अनुपूरक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार प्रदेश पर करीब 76,700 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर गई थी। उन्होंने कहा कि की रिपोर्ट ने सरकार के सामने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में कैग की रिपोर्ट रखी। इसमें वर्ष 2024-25 में राज्य का राजस्व घाटा 6,804 करोड़ 61 लाख रुपए और राजकोषीय घाटा 12,611 करोड़ 5 लाख रुपए रहा। दोनों ही निर्धारित सीमा से अधिक हैं। रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का करीब 86% हिस्सा वेतन, पेंशन और ग्रेचुटी पर खर्च हो गया। केवल वेतन और पेंशन पर ही करीब 70% राजस्व खर्च हुआ। कैग रिपोर्ट के अनुसार राजस्व घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.94% रहा, जबकि राजकोषीय घाटा 5.44% दर्ज किया गया। रिपोर्ट में बढ़ते कर्ज और सीमित पूंजीगत निवेश पर भी सवाल उठाए हैं और हिमाचल के तेजी से बढ़ते कर्ज को लेकर चिंता जताई गई है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। बाकी के समाचार इस अंतराल के बाद।
1: गर्भ धारण करने पर माता का पहला आवश्यक चरण नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जरूर करवाएं गर्भवती महिला का पंजीकरण।
2: गर्भ अवस्था की पुष्टि हो जाने पर गर्भवती महिला नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना पंजीकरण तथा जच्चा बच्चा कार्ड जरूर बनवाएं। प्रत्येक गर्भवती महिला को रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम 4 बार जाँच जरूरी है। पहली जाँच पहली माहवारी छूटते ही, दूसरी जाँच गर्भावस्था के 4th-6th महीने में, तीसरी जाँच गर्भावस्था के 7th-8th महीने में, चौथी जाँच गर्भावस्था के 9th महीने में।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
0: के बाद आपका स्वागत है। अब बाकी के समाचार। प्रदेश विधानसभा के

0: मॉनसून सत्र के आखिरी दिन आज सदन में चार महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक 2026, भारतीय स्टाम्प हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2026, युद्ध पुरस्कार संशोधन विधेयक 2026 और हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण विधेयक 2026 शामिल है। भारतीय स्टाम्प विधेयक पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई, जबकि युद्ध पुरस्कार संशोधन विधेयक और सड़क अवसंरचना संरक्षण विधेयक बिना चर्चा के पारित किए गए। पारित विधेयकों को अब राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। शिमला में आयोजित प्रदेश विधानसभा का 10 दिवसीय मॉनसून सत्र आज राष्ट्रीय गीत के गायन के साथ संपन्न हो गया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि 21 अगस्त से 3 सितंबर तक आयोजित ये सत्र कुल 45 घंटे 30 मिनट तक चला और सदन की प्रोडक्टिविटी 91% रही। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने घोषणा की कि अब विधानसभा की तरफ से विधायकों की गाड़ी में आधिकारिक झंडी लगेगी।
1: महत्वपूर्ण होते हैं, निश्चित तौर पर उन पर चर्चा होनी चाहिए। 545 लगे थे, सबके उत्तर जो है सभी सामान्य सदस्यों को उपलब्ध करवा दिए गए हैं। कुछ चर्चा में नहीं आए हैं, जो डिस्कशन है उसमें मान्य सदस्यों ने किया है और आगे जो सत्र होगा उसमें कर देंगे। सभी सामान्य विधायकों को एक डिस्टिंक्ट फ्लैग मिलेगा जो उनकी गाड़ी के ऊपर जो है लगेगा, जैसे हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास जो डिस्टिंक्ट फ्लैग है उससे, ताकि उनको कोई जब कभी वो प्रदेश से बाहर जाए या प्रदेश में आइडेंटिटी की कोई समस्या न।
0: संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सत्र में जनता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और कई अहम बिल पारित हुए।
2: इस बार हमारा मॉनसून सेशन जो है बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में जो है वो चला है। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक दिन या दो दिन बहिष्कार किया गया, उसके बावजूद जो है सुचारू रूप से चला है और बहुत सारे महत्वपूर्ण इश्यूज पे सदन में चर्चा हुई है और जो विपक्ष के जो अच्छे सुझाव थे वो सरकार और मुख्यमंत्री जी ने माना है। सुचारू रूप से हिमाचल प्रदेश का ये मॉनसून सेशन बहुत अच्छा चला है।
0: दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार जल्दबाजी में थी और सदन का माहौल अफरा तफरी वाला रहा। जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्र के दौरान विपक्ष ने मजबूती के साथ जनता के मुद्दों को सदन में उठाया है। उन्होंने कहा कि 4 साल के कार्यकाल में सरकार ने प्रदेश को पूरी तरह से तबाह कर दिया है।
3: जो एक्ट यहाँ विधानसभा के अंदर लाए जा रहे हैं उसमें सरकार की लगातार फजीहत हो रही है। एक नहीं अनेक ऐसे फैसले जो विधानसभा के अंदर बिल के रूप में पारित हुए लेकिन उसके बाद वो बिल हाईकोर्ट ने निरस्त, सदन के अंदर सार्थक चर्चा करने का प्रयत्न किया, जनहित के मुद्दों को उठाने का प्रयत्न किया और जनता के मुद्दे उठाने की कोशिश विपक्ष की ओर से ईमानदारी से हुई लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं मिल पाया, इस बात का हमको खेद है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय जल सुरक्षा शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। सम्मेलन में देश में जल सुरक्षा, जल संरक्षण, पेयजल व्यवस्था, जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन और जल क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के उपयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। सम्मेलन के समापन सत्र में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य में प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण, पेयजल योजनाओं को सुदृढ़ करना और जल संसाधनों का वैज्ञानिक व सतत प्रबंधन बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़कर व्यापक जन आंदोलन का रूप दिया जाना चाहिए। इस बीच उप मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर हिमाचल से जुड़े प्रमुख परिवहन मुद्दे भी उठाए। उन्होंने पर्यटक वाहन के रूप में उपयोग किए जाने वाले वाहनों की स्वीकार्य वैधता अवधि को 12 से बढ़ाकर 15 वर्ष करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार की सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। 16वें वित्त आयोग के तहत पेयजल योजनाओं के लिए पंचायतों को मिलने वाली धनराशि जल शक्ति विभाग को ट्रांसफर करने के प्रदेश सरकार के आदेशों का सिरमौर जिला के नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों ने विरोध किया है। पांवटा साहिब विकास खंड की 22 पंचायतों के जन प्रतिनिधियों ने आज प्रधान संघ के बैनर तले नाहन में उपायुक्त के साथ बैठक कर चर्चा की। प्रधान संघ पांवटा साहिब के अध्यक्ष रणवीर सिंह ने बताया कि पंचायतों में पेयजल योजनाओं के लिए मिलने वाली राशि का पैसा जल शक्ति विभाग को देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले का पंचायतों के विकास कार्यों पर असर पड़ रहा है। प्रधान संघ ने मॉनसून की बारिश के दौरान पंचायतों में बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी जिला उपायुक्त से बजट उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में माइनिंग के लिए अलग विभाग बनाने व नदियों से जमा सामग्री हटाने के लिए नई ड्रेजिंग नीति लाएगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा राज्य के सभी पात्र सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा ओपीएस का लाभ। विधानसभा में आज 4 महत्वपूर्ण विधेयक पारित। भारतीय स्टाम्प विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में हुई तीखी बहस। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र संपन्न। सत्र में कई महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा। विपक्ष का आरोप, अफरा तफरी वाला रहा सत्र का माहौल। और 2 दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय जल सुरक्षा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की जताई जरूरत। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
4: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
5: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
4: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
5: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
4: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
5: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी का शिमला केंद्र है, देश कान सुनिए।

0: अभी आप देशगान सुन रहे थे। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। अब प्रस्तुत है विधानसभा। राजकुमारी चंदेल का
1: हिमाचल प्रदेश विधानसभा मॉनसून सत्र के अंतिम दिन प्रश्नकाल के दौरान कर्मचारी व पेंशनरों की वित्तीय अदायगियों का मामला प्रमुखता से गूंजा। इसी तरह एकल नारी को सुविधाएं देने व बरसात के बाद नदियों से ड्रेजिंग व सिल्ट को बाहर निकालने जैसे सवाल भी पूछे गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नई दिल्ली रवाना होने के कारण प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल के समय को बदल दिया गया। प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री ने कागजात सभा पटल पर रखे, जिसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के प्रतिवेदनों की वर्ष 2022-23, वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 के प्रतिवेदन शामिल थे। कैग की वर्ष 2024-25 की राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर चिंता जताई है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य पर बढ़ता कर्ज, भारी प्रतिबद्ध व्यय और पूंजीगत निवेश के लिए सीमित गुंजाइश वित्तीय स्थिरता के लिए चुनौती बन रही है। वर्ष 2024-25 में हिमाचल का राजस्व घाटा 6,804 करोड़ 61 लाख रुपए और राजकोषीय घाटा 12,611 करोड़ 5 लाख रुपए रहा। दोनों ही घाटे राज्य के

0: एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों के दायरे में नहीं रहे। कैग रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024-25 में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 40,872 करोड़ 35 लाख रुपए रहीं, जबकि राजस्व व्यय 47,676 करोड़ 96 लाख रुपए रहा, यानी सरकार का आय की तुलना में खर्च अधिक रहा। पूंजीगत व्यय 5,956 करोड़ 83 लाख रुपए रहा। इसी तरह ब्याज भुगतान पर 6,260 करोड़ 93 लाख रुपए खर्च हुए। मुख्यमंत्री की तरफ से हिमाचल प्रदेश राज्य बांध सुरक्षा संगठन वर्ष 2025-26 के प्रतिवेदनों को भी सभा पटल पर रखा गया। सदन से 4 महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित हुए तथा अलग अलग नियमों के तहत सदन में विषय उठे। विधानसभा में नियम 130 के तहत युवाओं को रोजगार देने के मामले पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी भाजपा ने सदन से वॉकआउट भी किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना था कि जितना गंभीर ये विषय लाया गया था, सरकार उस हिसाब से गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 4.25 साल में जितनी नौकरियां देने का उल्लेख किया है वो सही नहीं है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इस पर कहा कि प्रदेश सरकार 1 लाख सरकारी नौकरी देने का आंकड़ा छुएगी। इस वर्ष दिसंबर तक युवाओं को 50,000 सरकारी नौकरियां मिल जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने दिसंबर 2025 तक 32,223 सरकारी नौकरियां दी हैं। इससे पहले विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक सुरेंद्र शौरी, विक्रम सिंह और राकेश जम्वाल ने नदियों में ड्रेजिंग व सिल्ट को बाहर निकालने के संदर्भ में सवाल पूछा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप था कि नदियों से ड्रेजिंग के नाम पर घपला हुआ है और सरकार ने आपदा में अवसर तलाशने का काम किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हस्तक्षेप करते हुए विपक्ष की तरफ से ड्रेजिंग के मामले में किसी तरह से नियमों की अवहेलना किए जाने से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जब वर्ष 2023 की प्राकृतिक आपदा के समय प्रदेश दौरे पर आए थे तो उनकी तरफ से नदियों में ड्रेजिंग करने की सलाह दी गई थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5 बड़ी नदियां बहती हैं, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार अलग से नया विभाग बनाने पर विचार कर रही है ताकि खनन से सरकार की आय को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि वन निगम को इस मामले में नियमों के तहत कार्य करने की अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 से 12 सितंबर तक उनकी नई दिल्ली में बैठक भी है जिसमें नदियों से जुड़े विषयों को उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2027 में आत्मनिर्भर बनाने में ड्रेजिंग से होने वाली आय की महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इस संदर्भ में विभाग और वन निगम की तरफ से किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश की अलग से ड्रेजिंग पॉलिसी बनाने की बात भी कही। विधायक लोकेंद्र कुमार और सुधीर शर्मा के प्रश्नों के उत्तर की जानकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण मुख्यमंत्री ने आगामी बजट सत्र पर सूचना दिए जाने का आश्वासन दिया। इस पर विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि उनके भी 3 प्रश्नों के उत्तर की जानकारी नहीं दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस दौरान हस्तक्षेप करते हुए कहा कि विधानसभा सचिवालय के माध्यम से मानसून सत्र में करीब 1,100 प्रश्नों के उत्तर की जानकारी सरकार के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई है। ऐसे में यदि 7 से 10 सवालों की जानकारी अभी नहीं मिली है तो इसे विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक दीपराज व डॉक्टर जनकराज ने कर्मचारी व पेंशनरों की अदायगी से जुड़े सवाल पूछे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यदि वर्तमान सरकार खुद को कर्मचारी हितैषी बताती है तो हर चौक पर कर्मचारी व पेंशनर धरने क्यों दे रहे हैं। यदि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की तरफ से प्राकृतिक आपदा के समय 1,500 करोड़ रुपए नहीं मिलने के कारण वित्तीय अदायगियां रुकने की बात करते हैं तो क्या इस राशि को कर्मचारी पेंशनरों पर खर्च किया जा सकता था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने सत्ता संभालने के बाद पहली ही मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल किया। सरकार की तरफ से 67 वर्ष से ऊपर के सभी पेंशनरों की वित्तीय अदायगियां कर दी गई हैं। सरकार की तरफ से हर श्रेणी के कर्मचारियों को भी वित्तीय अदायगियों को किया गया है। वर्तमान सरकार जब सत्ता में आई तो उसके ऊपर 76,707 करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिला। वर्तमान सरकार राजस्व घाटा अनुदान राशि के सिर्फ 13,000 करोड़ रुपए मिले, जिसके बाद इसको बंद कर दिया गया। इसके विपरीत पूर्व भाजपा सरकार को 47,000 करोड़ रुपए आरडीजी एवं जीएसटी कंपनसेशन के रूप में 17,000 करोड़ रुपए मिले। इसी तरह केंद्र सरकार से करीब 60,000 करोड़ रुपए राशि मिलने के बावजूद पूर्व भाजपा सरकार कर्मचारी व पेंशनरों की 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय अदायगियां नहीं कर पाई। विधायक आरएस बाली की तरफ से राजस्व विभाग में पार्ट टाइम वर्कर को दैनिक वेतन भोगी करने को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि ये काम कार्मिक विभाग का है। विभाग में 1,253 दैनिक वेतन भोगी बन गए हैं, क्योंकि 608 को इसका लाभ मिलना बाकी है। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने अपने क्षेत्र में एक ही विधवा महिला को आवास सुविधा दिए जाने पर आपत्ति जताई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसमें हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सरकार एकल नारी की कल्याण के प्रति समर्पित है। इसी कारण आज सरकार विधवा बच्चों के डॉक्टर और इंजीनियर बनने तक के खर्च और ट्यूशन राशि को स्वयं व्यय कर रही है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि भाजपा विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र की एकल नारी को अन्य योजनाओं के तहत आवास सुविधा का लाभ उठा सकती है। प्रश्नकाल की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री ने अपने नई दिल्ली दौरे का हवाला देते हुए कहा कि कार्यसूची में शामिल शेष विषयों को जल्द पूरा किया जाए तो बेहतर है। सरकार की तरफ से शून्यकाल में पूछे गए विषयों को लिखित में अवगत करवा दिया जाएगा। विपक्ष ने जब मुख्यमंत्री की इस बात को नहीं माना तो विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने शून्यकाल में विषयों को दोपहर के भोजन अवकाश के बाद उठाए जाने की अनुमति देने की बात कही। विधानसभा में इसके बाद हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके उपरांत राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की तरफ से भारतीय स्टाम्प हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2026 को पारित करने का प्रस्ताव रखा गया। विधेयक को पारित करने से पहले हुई चर्चा में भाजपा ने इसमें लाए गए संशोधनों पर आपत्ति जताई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि शपथ पत्र का शुल्क 20 रुपए से 100 रुपए करने, पावर ऑफ अटॉर्नी को 1,000 रुपए से 1,500 रुपए करने व अन्य तरह के स्टाम्प शुल्क बढ़ोतरी पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस शुल्क को देने में समर्थ नहीं है। विधायक त्रिलोक जम्वाल ने 49 तरह के स्टाम्प शुल्क को बढ़ाने पर नाराजगी जताई और इसे वापस लेने की मांग की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दौरान कहा कि सरकार ने महिलाओं के नाम पर 1 करोड़ रुपए तक स्टाम्प शुल्क 8% से घटाकर 4% किया, जिससे विपक्ष को खुश होना चाहिए। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के बराबर प्रदेश सरकार ने शुल्क को रखा है। इसके बाद विधेयक को पारित कर दिया गया। सदन से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक 2026 को पारित करने से पहले हुई चर्चा में भाग लेते हुए विधायक रणधीर शर्मा ने परिवार के सदस्यों की तरफ से अतिक्रमण की स्थिति में बहू के चुनाव लड़ने को रोकने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया जारी होने के बीच ऐसा संशोधन लाना गलत है। त्रिलोक जम्वाल ने भी इस संशोधन पर आपत्ति जताई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चुनाव प्रक्रिया के बीच लाए गए इस संशोधन को आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी चर्चा में भाग लिया। चर्चा का उत्तर देते हुए ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि अतिक्रमण की स्थिति में चुनाव लड़ने से रोकने का सरकार का निर्णय सही है। इसके बाद संशोधन विधेयक को पारित कर दिया गया। इसी के साथ विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।
1: राजकुमारी चंदेल से आप सुन रहे थे विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे कुलदीप शर्मा, वरिष्ठ संवाददाता पंजाब केसरी, आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।

0: हर 15-17 हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
0: आज ही आवेदन करें हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। अब लीजिए सुनिए ये देशगान।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला। रात की 8:15 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मथुरा द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उद्घाटन समारोह पर आधारित विशेष कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है मथुरा वृंदावन आकाशवाणी के सौजन्य से तैयार श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व पर ब्रज में आयोजित विविध कार्यक्रमों पर आधारित पूर्वावलोकन रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्मस्थान एवं मंदिर श्री द्वारिकाधीश के साथ पूरे ब्रज में श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व मनाया जा रहा है। ये पर्व भाव एवं भक्ति के साथ शांति एवं सुचारू रूप से मनाया जा सके, इसके लिए शासन प्रशासन की तैयारियों पर जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मथुरा श्री चंद्र प्रकाश सिंह।
1: भगवान जी के इस जन्मभूमि मथुरा में 5253वां भगवान जी का जन्मदिवस 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि में बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जाएगा। इसी दिन श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती 1:55 पर की जाएगी और द्वारिकाधीश मंदिर में भी बहुत ही भव्यता और दिव्यता से भगवान जी का जन्मदिवस मनाया जाएगा। आप स्वयं यहाँ के साक्षी बनिए, पूरा मथुरा वृंदावन गोवर्धन बरसाना बलदेव गोकुल और नंदगांव को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया संवारा गया है और जो भगवान जी की लीलाओं की झांकियां हैं उनको हम लोगों ने

0: वॉल पेंटिंग के माध्यम से, अन्य माध्यमों से जगह जगह सजाया है। 25 से अधिक स्थानों पर कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं। पूरे शहर की सजावट देखने लायक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पूरे कार्यक्रम की समीक्षा करके इसको बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाने के निर्देश दिए हैं। लगभग 75 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के यहाँ आने का अनुमान है। मैं सभी अपने श्रद्धालुओं का खुले दिल से, ब्रजवासियों की तरफ से, अपनी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उनसे अनुरोध है वो अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। हम लोगों ने तय किया है कि भगवान जी का जन्मदिन प्लास्टिक फ्री मनाएंगे, तो श्रद्धालुओं से भी अनुरोध है कि वो पॉलीथीन का, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें। उनके रुकने के लिए जहाँ वो रुकें, होटल हो, धर्मशाला हो, या हमारे शेल्टर होम भी तैयार किए गए हैं, और वहाँ भी एक जिम्मेदारी का परिचय दें। रूट डाइवर्जन किया गया है, उसका भी ध्यान रखें। पूरे शहर को छोटे छोटे सेक्टर्स में डिवाइड करके, जोन में डिवाइड करके लैंड ऑर्डर की ड्यूटी लगी हुई है, कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि जो हमारे श्रद्धालु आवें वो ब्रज की जो रज है उसमें आनंद लें, भगवान जी का दर्शन करें। जन्माष्टमी पे जो भी हमारे सारे मंदिर हैं, प्रमुख देवालय हैं, उनमें भी जाएं, लेकिन गरिमा का ध्यान रखें और अफवाहों से बचें। अगर कहीं कोई समस्या आती है तो तत्काल प्रशासन या प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराएं, और हम आपकी सेवा के लिए लगातार कृत संकल्पित हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण जी का जो संदेश, जो हम लोगों के जीवन में, हम लोगों की रगों में रचा बसा है, जो प्रगति का द्योतक है, जो ज्ञान का द्योतक है, कर्म का द्योतक है, उस पे आगे चलते हुए न केवल अपना जीवन सफल बनाएंगे, अपनों का जीवन सफल बनाएंगे, मानवता को आगे बढ़ाएंगे और स्वयं प्रसन्न रहेंगे और दूसरों को भी प्रसन्न होने का मौका देंगे। मैं पुनः जन्माष्टमी की अपने सभी साथियों के साथ, ब्रजवासियों के साथ, पूरे मथुरावासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं अनुरोध करता हूँ कि ब्रज जरूर आएं, ब्रज आपका स्वागत करने के लिए आतुर है।
1: इस अवसर पर मथुरा ही नहीं, पूरे ब्रज की विरासत के संरक्षण को समर्पित संस्था ब्रज तीर्थ विकास परिषद उत्तर प्रदेश की सचिव IAS लक्ष्मी नागप्पन ने बताया कि इस वर्ष संस्था द्वारा श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व को सांस्कृतिक रूप से मनाए जाने पर विशेष तैयारियां की गई हैं।
2: श्री कृष्ण जन्मोत्सव पूरे हर्ष और उल्लास से पूरे दुनिया में मनाया जाता है। इसी के मानते जनपद मथुरा में भी 2 तारीख से 4 तारीख तक विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा। पूरे जनपद में हर जगह पे सजावट कराया गया है और लाइटिंग की व्यवस्था कराई गई है, हॉट एयर बलून्स कराया गया है। 3 और 4 तारीख को पूरे जनपद में 21 अलग अलग जगहों पे जो हमारे जनपद के स्थानीय कलाकार हैं उनकी कला को भी आगे बढ़ाते हुए ये 21 जगहों पर उनके द्वारा भी प्रस्तुतिकरण कराया जाएगा। 3 तारीख को और 4 तारीख को एक शोभा यात्रा भी ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जिला प्रशासन को साथ में लेते हुए ये कराया जाता है। और ये जो शोभा यात्रा है ये श्री कृष्ण जन्म स्थान के गेट नंबर 3 से शुरू कराया जाता है। इसके अलावा 4 तारीख के रात को 9 से 10 बजे के बीच में पहली बार एक भव्य तरीके से एक ड्रोन शो का भी व्यवस्था कराया गया है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन है 3 तारीख को श्री हरिदास ऑडिटोरियम प्रेक्षागर, जो वृंदावन में ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा जो निर्माण कराया गया है उसका शुभारंभ और लोकार्पण है। और उस दिन भी 1051 करोड़ का विभिन्न जो लोकार्पण और शिलान्यास का एक कार्यक्रम भी है। तो इस तरीके से पूरे जनपद में 2, 3 और 4 तारीख को भव्य रूप से ये उत्सव और उल्लास से मनाया जाएगा। अब सभी लोगों से और श्रद्धालुओं से भी निवेदन है कि आप लोग जनपद मथुरा आए और इस बार की जन्मोत्सव ब्रज क्षेत्र में ही हमारे साथ ही मनाएं।
1: इस आयोजन में जब लाखों श्रद्धालु पधार रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को लेकर आप हैं मथुरा के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राधा वल्लभ।
3: श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हम लोगों के यहाँ जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट से सारे प्रोग्राम किए जाते हैं, 4 जो हमारे यहाँ पे मुख्य है, जो कृष्ण जन्मभूमि है,

0: यहाँ पे हमारे यहाँ सारी हेल्थ टीम की व्यवस्था रहती है। बरसाना मंदिर पे सब व्यवस्था रहती है, दाऊजी महाराज पे भी अच्छी खासी व्यवस्था रहती है, और इसके अतिरिक्त बांके बिहारी मंदिर पर भी हमारी पूरी टीम्स की, लगभग लगभग हमारी 20 टीम्स कार्य करती हैं इसमें, जहाँ पे हमारे डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेज, वार्ड बॉय और अन्य स्टाफ वहाँ पे है रहता, और देख रेख में उनके प्रत्येक जगह पे हमारी टीम्स रहती है।
1: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के इस पावन पर्व पर श्री कृष्ण जन्म स्थान पर आयोजित होने वाले विविध कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा।
2: भगवान श्री कृष्ण की पवित्र जन्मभूमि पर आयोजित होने वाले ऐसे विशिष्ट जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए 33 कोटि देवता, देव, देवादिदेव और महादेव भी स्वयं उपस्थित रहते हैं, ऐसी शास्त्र और संतों की मान्यता है। इस वर्ष भगवान ठाकुर श्री केशव देव, भगवान श्री कृष्ण पंच रत्नी पोशाक को धारण करके भक्तों को दर्शन देंगे। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से 5 रत्न भगवान श्री कृष्ण की इस पोशाक पर उकेरे गए हैं, उत्कीर्ण किए गए हैं। भगवान कलहंस पुष्प बंगले में विराजमान होंगे। भगवती माँ गायत्री, माँ सरस्वती के वाहन राजहंस कलहंस के भाव को हृदयंगम रखते हुए इस वर्ष कलहंस बंगले के स्वरूप में श्री ठाकुर जी के पुष्प बंगले को सजाया गया है। ठाकुर श्री केशव देव भगवान श्री कृष्ण का यह 5253वां जन्म महोत्सव बड़ा विशिष्ट है। इस वर्ष श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान का प्रयास है कि भगवान के गर्भगृह, जिसको कंस के कारागार से लोग जानते हैं, भक्त जानते हैं, वहां से भी भगवान के जन्म महाभिषेक के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हो। इसके लिए संस्थान सभी आवश्यक उपाय कर रहा है, और ठाकुर श्री केशव देव की कृपा से इस वर्ष श्रद्धालु जन अपने मोबाइल पर, अपने टीवी पर भी भगवान के पुण्य पवित्र गर्भगृह में आयोजित होने वाले इस महोत्सव के दर्शन का आनंद ले पाएंगे, ऐसा हमारा प्रयास है।
1: श्री जी बाबा आश्रम के व्यवस्थापक श्री रविकांत जी ने इस अवसर पर बताया,
3: भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जो उत्तर प्रदेश के इस मथुरा नगरी में, इस ब्रज में, क्योंकि यहीं ये पैदा हुए, जो उत्सव का हमारा 5253वां जन्म उत्सव ब्रज में, इस मथुरा में, इस नगरी में 2 तारीख से शुरू होकर 4 तारीख तक ये चलेगा। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, जितने भी हमारे ब्रज के ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश के नहीं बल्कि देश के सभी लोगों पर आपका आशीर्वाद, जैसा आपका नाम है ऐसे ही ये आशीर्वाद सबको बिखरता रहे, यही तो मेरी अभिलाषा है, ये मेरी कामना है।
1: श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर स्थानीय निवासियों का उत्साह भी चरम पर है। घर घर में जन्मोत्सव मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। ब्रज की लोक परंपराओं एवं रीति रिवाजों के बारे में बताते हुए स्थानीय निवासी,
4: भैया जन्माष्टमी आ रही है, भादों कृष्ण पक्ष अष्टमी, हमारे ठाकुर जी का जन्म तिथि, जन्म महोत्सव, वर्षगांठ, और तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो गई हैं। घरों में रंगाई पुताई कराई जा रही है, मंदिरों को स्वच्छ किया जा रहा है, दरवाजे पर बंधनवार बन रही हैं, ध्वजा पताका तोरण कलश सजाए जा रहे हैं, और जिनके यहाँ वाहन हैं, हाथी घोड़ा पालकी, हमारे यहाँ गायें हैं, हम गायों को सजा रहे हैं, और नगाड़े तैयार हो रहे हैं, धुंधवी तैयार हो रही हैं, ढोल ढप मृदंग झांझ झड़ताल ये सब बजेंगे, और जो कवि जन है वो नित्य नई नई नई बधाइयाँ रच रहे हैं कि मैं ये बधाई गाऊंगा, मैं ये बधाई गाऊंगा, और घरों में पंजरी की तैयारी है, भगवान को पंजरी का भोग लगाया जाएगा, 7 प्रकार की पाग बनेंगी, बादाम की पाग, पाग माने एक तरह की बर्फी होती है हमारे ब्रज में, इसको पाग कहते हैं, जो जच्चा को भोग लगाया जाता है कि यशोदा के लाला हुआ है।

0: ना चुनरी पहनेंगी, अनेक प्रकार के गहने धारण करेंगी, सोले और श्रृंगार करेंगी, और जो पुरुष हैं वो जामा पाजामा बनवा रहे हैं, पगड़ी बनवा रहे हैं, सिरपेच बांधेंगे, माला पहनेंगे, कड़े कंठा पहनेंगे, और ठाकुर जी को सोने के पालने में विराजमान किया जाएगा। 5253वां भगवान का ये जन्मगांठ है, जन्म महोत्सव है, तो पूरे मथुरा में और तो और सरकार के द्वारा चौराहे सजवाए जा रहे हैं, सड़कें सजवाई जा रही हैं, जगह जगह रासलीला दिखाई जाएगी, भगवान की लीला दिखाई जाएंगी, जगह जगह सेल्फी पॉइंट जो आधुनिक व्यवस्था है वो की जा रही है, कहीं कहीं कृष्ण लीला होगी और घर घर में तैयारियां हो रही हैं।
1: तो हम लोगों को बड़ा ही उल्लास रहता है क्योंकि हम लोग ब्रजवासी हैं, तो घर को स्वच्छ करना, घर को सजाना और ठाकुर जी के मंदिर को सजाना, उनके पर्दे पलना ये सब कुछ तैयार करना, उनकी ड्रेस लाना, पोशाकें लाना, उनके लिए श्रृंगार का सामान लाना।
2: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के इस पुनीत अवसर पर दूर दराज से लोग मथुरा पधार रहे हैं, अपने आराध्य की एक झलक पाने को लोग लालायित हैं। ब्रज में पधार कर वो कैसा अनुभव कर रहे हैं और स्थानीय तौर पर नगर निगम प्रशासन तथा पुलिस व्यवस्था के बारे में अपने अनुभव साझा करते हुए बाहर से आए कुछ श्रद्धालु।
3: जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे यहाँ दर्शन करने आए थे, हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, हम पहली बार यहाँ आए थे और चाहेंगे कि हम बार बार यहाँ आए, यहाँ बहुत साफ सफाई है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा।
4: मैं मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिले से हूँ और मैं यहाँ श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित और भी जो विशेष कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जाते हैं उनको देखने के लिए, उनको जानने के लिए मैं यहाँ आया। तो मुझे भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित बहुत ही आनंद यहाँ प्राप्त हुआ। पूरा मथुरा ये मान के चलिए कृष्णमय है और यहाँ की व्यवस्था बहुत ही उत्तम है, हर जगह मैं ये कहना चाहूँगा कि कृष्णमय है।
2: अभी आप सुन रहे थे श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व पर ब्रज में आयोजित विविध कार्यक्रमों पर आधारित पूर्वावलोकन रिपोर्ट। आलेख एवं वाचन स्वर संजय सारस्वत का था, प्रस्तुति संजीव कुमार व्यास की एवं संयोजक थे ओपी सिंह। ये कार्यक्रम मथुरा वृंदावन आकाशवाणी के सौजन्य से तैयार किया गया। ये आकाशवाणी है,
5: ये आकाशवाणी धर्मशाला है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 8:30 हुए हैं, अब सुनिए देशभक्ति गीत।

हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर रात के 8:45 होने को है। कुछ ही देर में पहले समाचार संध्या और रात 9 बजे न्यूज़ @9 आप सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में एमएसएमई के योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में। प्रधानमंत्री ने

0: वाराणसी की स्थिति की जानकारी ली और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन्स, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद के हर रूप को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
1: भारत और बेल्जियम दोनों ही रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं और आतंकवाद के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया।
1: इस वर्ष की शुरुआत में हमने ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच यह अभूतपूर्व सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को भी नई मजबूती देगा। भारत की निरंतर आर्थिक प्रगति और इस एग्रीमेंट ने हमारे आर्थिक संबंधों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया।
2: 20 साल में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना बहुत लंबा समय है। इन 20 सालों में भारत बहुत बदला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ है। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। भारत आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी बन गया है। भारत की आवाज इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जा सकती है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता के सफल समापन का स्वागत किया और इसे समय पर लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतक समझौते पर वार्ता को भी जल्द पूरा करने पर जोर दिया। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद निरोधक मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह के गठन की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने नियमित आदान प्रदान, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रक्षा औद्योगिक साझेदारी के माध्यम से रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और बेल्जियम की संघीय पुलिस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने यह बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। भारत ने ब्रसेल्स में डिफेंस अटैशे नियुक्त करने का फैसला किया है। बेल्जियम ने इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली में डिफेंस अटैशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में मीडिया को यह जानकारी दी। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण पर श्री जॉर्ज ने कहा कि उसे पिछले साल अप्रैल में बेल्जियम के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और तब से वो बेल्जियम की जेल में है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली

0: तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे।
1: मेकिंग इंडिया $30 trillion इकोनॉमी।
2: भारत 2047 तक $30 trillion की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश अपनी आर्थिक यात्रा के अहम दौर में है। पहली तिमाही में 7.8% का सकल घरेलू उत्पाद बहुत उत्साहजनक है और भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदें जगा रहा है। दुनिया भर में अनिश्चितता और भारी उथल पुथल के इस दौर में ये बड़ी उपलब्धि है।
1: अराउंड द वर्ल्ड इज नो मीन अचीवमेंट।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत हमेशा से ये कहता आया है कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है और इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। श्री जयशंकर ने यूक्रेन के कीव में वहां के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा से मुलाकात के बाद ये बात कही। श्री जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन पहले किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए गए बयान को दोहराया। श्री मोदी ने कहा था कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करना होगा। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए भारत की ओर से हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। बाद में विदेश मंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की और मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के उपायों पर चर्चा की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों और व्यापार विभाग के रणनीतिक योजना और समन्वय समूह की सचिव एलेनोर जेन लॉसन से मुलाकात की। दोनों ने द्विपक्षीय हितों से जुड़े मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4,216 लोग अब भी लापता हैं। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की। तेज बारिश के कारण जौनपुर, सोनभद्र, वाराणसी, पीलीभीत, चित्रकूट और चंदौली में आज स्कूल बंद रहे। इस बीच मौसम विभाग ने कल मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कल तेज बारिश का अनुमान है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। सरकार ने आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित इस संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय कल से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों को एक साथ लाने का अवसर मिलेगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल

0: होंगे।
1: आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: ये आकाशवाणी है। दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13वें ओवर में 2 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। हांगकांग ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अनाहत सिंह लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम की नील गिलस को 2-1 से हराया। किदांबी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में कनाडा के विक्टर लाई को हराया, जबकि सात्विक और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी ने फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव की जोड़ी को हराया। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रेस्टो को हार का सामना करना पड़ा। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन कल जन्माष्टमी के भव्य उत्सव के लिए सज धज कर तैयार है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
4: जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि में तैयारियां जोरों पर हैं। मथुरा में पहली बार कल जन्माष्टमी के मौके पर 500 द्रोण आकाश में भगवान कृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवंत रूप से प्रदर्शित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जन्माष्टमी समारोह में भाग लेने के लिए मथुरा पहुंच चुके हैं। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने आज श्री स्वामी हरिदास सभागार का उद्घाटन किया और 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि श्रीमद् भगवद् गीता में दी गई श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी कठिन समय में सही निर्णय लेने और नैतिक मूल्यों पर दृढ़ रहने की प्रेरणा देती हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
5: सेंसेक्स 417 अंक गिरकर 76,153 पर बंद हुआ। निफ्टी 41 अंक की गिरावट के साथ 23,873 पर रहा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 49 पैसे मजबूत होकर 94.49 रुपए पर बंद हुआ।
3: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में एमएसएमई के योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की स्थिति की जानकारी ली। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Belgian counterpart Bart De Wever call for stronger strategic partnership. Belgium backs India's fight against terrorism. India and Belgium sign pact on defense cooperation, agree to double bilateral trade in next 5 years and enhance cooperation in fields of semiconductors, critical minerals and advanced technologies. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal hails MSMEs for achieving 7.8% GDP growth in previous quarter. Heavy rain and release of water from barrages caused floods in 23 districts of Uttar Pradesh. Prime Minister takes stock of situation in Varanasi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls on Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Kyiv welcomes Prime Minister Modi's call to end Russia-Ukraine war. And in women's cricket, Group A match underway between India and Hong Kong in 2020 Asia Cup in Dubai.

श्रोताओं, मशहूर और जाने माने अभिनेता सुरेश ओबेरॉय इनके पिता हैं, लेकिन विवेक के लिए फिल्म इंडस्ट्री में आना सिर्फ इसलिए आसान नहीं था कि वे एक अभिनेता के बेटे हैं। उन्होंने पढ़ाई की मायू कॉलेज अजमेर से, इसके बाद अभिनय की ट्रेनिंग में आगे बढ़े, न्यूयॉर्क गए जहां उन्होंने फिल्म एक्टिंग की पढ़ाई की। यानी कैमरे के सामने आने से पहले विवेक ने अपने अभिनय को बाकायदा तैयार किया। एक दिलचस्प बात, भारत लौटने के बाद उन्होंने लेखन का काम भी किया। अभिनय की दुनिया में कदम रखने से पहले वे फिल्म की प्रतिक्रिया को सिर्फ सामने से नहीं बल्कि पीछे से भी समझने लगे और फिल्म लेखन का काम उन्होंने किया। साल 2002 में रामगोपाल वर्मा की फिल्म आई कंपनी, जिसमें विवेक ओबेरॉय को मिला किरदार चंद्रकांत चंदू नागरी का, और ये कोई टिपिकल रोमांटिक हीरो वाली शुरुआत नहीं थी। एक नए अभिनेता के लिए पहली फिल्म में इतना इंटेंस क्राइम कैरेक्टर निभाना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन विवेक ओबेरॉय ने इस चुनौती को स्वीकार किया। साथिया फिल्म का गीत अभी आपने सुना, विवेक ओबेरॉय द्वारा अभिनीत ये फिल्म थी मस्ती फिल्म से। अब कार्यक्रम का अगला गीत, इस फिल्म में भी विवेक ओबेरॉय ने अभिनय किया है। दो अन्य कलाकारों के साथ

एक ही कलाकार कार्यक्रम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं और आज फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय की फिल्मों से गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ है और पहली फिल्म कंपनी उन्होंने की कंपनी रिलीज हुई और विवेक ओबेरॉय के अभिनय ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। उनके अभिनय को खूब सराहा गया और उन्हें फिल्म के लिए 2 फिल्मफेयर अवार्ड भी मिले। कंपनी के बाद आई साथिया। रानी मुखर्जी के साथ इस फिल्म में विवेक ने आदित्य का किरदार निभाया और ऑडियंस ने इनके बिल्कुल दूसरे रूप को देखा। कंपनी का इंटेंस चंदू और साथिया का इमोशनल और रोमांटिक आदित्य, यानी शुरुआत से ही विवेक ने दिखा दिया कि उन्हें सिर्फ एक किरदार में बांधा नहीं जा सकता। और फिर फिल्म आई दम डरना मना है जैसी और साल 2004 उनके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा। मणिरत्नम की युवा में उन्हें अर्जुन का किरदार निभाने का मौका मिला। इसके साथ ही

मस्ती जैसी कॉमेडी फिल्म में उनका अलग अंदाज देखने को मिला। एक तरफ गंभीर और इंटेंस भूमिकाएं, दूसरी तरफ कॉमेडी, यही वर्सिटैलिटी विवेक के करियर की खास बात रही। इसके बाद क्यों हो गया ना फिल्म में उन्होंने काम किया, फिर काल, किसना, ओंकारा और शूटआउट एट लोखंडवाला जैसी कई फिल्मों में लग बाय चांस, कुर्बान।

डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

श्रोताओ, ये था आज का कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें हमने बात की ऐसे अभिनेता की जिसने अभिनय की ट्रेनिंग ली, बॉलीवुड में कदम रखा और अपनी पहली फिल्म से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और फिर फिल्मों में नए नए किरदार वो निभाते चले गए। कभी सक्सेस मिली, कभी सेटबैक, लेकिन असली कलाकार वही है जो अपने किरदार के जरिए खुद को बार बार री इन्वेंट करता है। और विवेक ओबेरॉय का सफर भी कुछ ऐसा ही रहा। कई किरदार उन्होंने निभाए और हर बार खुद को एक नए रंग में पेश करने की कोशिश की। आज के कार्यक्रम एक ही कलाकार में बस इतना ही।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। ये कार्यक्रम आपने सुना। अब वक्त है कार्यक्रम रंगे गजल का। जी हाँ श्रोताओं, कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और जब बात हो गजलों की तो एक ऐसी ही आवाज सबसे पहले दिल में उतर जाती है, गजलों के बादशाह जगजीत सिंह। जी हाँ, आज की इस खूबसूरत महफिल रंगे गजल की शुरुआत हम उस एहसास से कर रहे हैं जो पहली मोहब्बत के सबसे खूबसूरत एहसास को बयां करता है, किसी अपने के नाम लिखा जाने वाला पहला खत इस गजल के जरिए। ये वो दौर जब मोबाइल की स्क्रीन नहीं, कागज पर एक खत दिल की धड़कनों का पता देता था। एक एक लफ्ज सोच कर लिखा जाता था और जवाब का इंतजार किसी भी खूबसूरत गजल से कम नहीं होता था।

0: जान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: जी हाँ दोस्तों, शहंशाह गजल जगजीत सिंह की गाई गजल हमने सुनी प्यार का पहला खत लिखने में। पहले खत से हुई मोहब्बत की ये कहानी शुरू। अब जरा उस मोहब्बत को निभाने की बात करते हैं, क्योंकि प्यार करना आसान हो सकता है लेकिन उसे पूरी शिद्दत से निभाना अपने आप में एक खूबसूरत हुनर है।

0: जान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी।
1: रंगे गजल ये कार्यक्रम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। मोहब्बत की रस्में निभाने की बात चली तो दिल की बात भला कैसे छुपी रहे। कुछ रिश्तों में सवाल भी अपने आप होते हैं और जवाब भी, बस जरूरत होती है पूछने की।

छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की

0: वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: गजलों का कार्यक्रम रंगे गजल इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। तुम पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं। जी हाँ, आपने हाल पूछा, हमने दिल की बात कह दी। अब दिल की बातों को आगे बढ़ाते हैं उस खूबसूरती की तरफ जहाँ कोई बनाव श्रृंगार नहीं, फिर भी चेहरा जैसे पूरी गजल बन जाता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रंगे गजल। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 10 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रिले किया जाएगा और सभा के अंत में 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार भी आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे।
1: ये आकाशवाणी है। आज के क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के पहले भाग में आप सुनेंगे उस्ताद सलीम अल्लाह वाले का गजल गायन।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज National program of regional folk and light music, you will listen to a ghazal recital by Ustad Saleem Allahwale.
1: Ustad Saleem Allahwale ka janm Madhya Pradesh ke Devas mein ek sangeet parivar mein hua. Unhone matr 5 varsh ki aayu se apne pita aur guru Ustad Daddu Khan sahab se ghazal gayan ki prarambhik shiksha prapt ki. Iske baad unhone Agra aur Patiala gharano ke mahan ustad Haji अमीर मोहम्मद खान साहब से शास्त्रीय गायन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे देश के एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जिन्हें आकाशवाणी महानिदेशालय नई दिल्ली द्वारा गजल गायन और तबला वादन दोनों विधाओं में टॉप ग्रेड से सम्मानित किया गया है। उस्ताद सलीम अल्लाह वाले को बचपन से ही गजल गायन के प्रति गहरा लगाव रहा है। उनके द्वारा रचित गजलें शास्त्रीय रागों पर आधारित हैं। उन्होंने देश के अनेक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संगीत समारोहों में गजल गायन प्रस्तुत किया है। इनमें देहरादून का विरासत समारोह, हैदराबाद का आलाप गजल समारोह और बज़्मे गजल तथा भोपाल के भारत भवन में संतवाणी समारोह प्रमुख हैं। उनके अन्य प्रमुख कार्यक्रमों में मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी का जश्न उर्दू, भोपाल का बेगम ऑफ परी बाजार, जयपुर का सिंजारा समारोह, उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन और लखनऊ महोत्सव शामिल है। उस्ताद सलीम अल्लाह वाले को मध्य प्रदेश कला गौरव

0: अभिनव करा सम्मान, संगीत शिरोमणि सम्मान, तालमणि सम्मान, चक्रधर सम्मान और प्राइड ऑफ भोपाल सहित अनेक सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। उस्ताद सलीम अल्लाह वाले वर्ष 2023 में आकाशवाणी भोपाल में स्टाफ आर्टिस्ट के पद से सेवानिवृत्त हुए। वर्ष 2023 में ही उन्होंने एक साथ 1500 विद्यार्थियों द्वारा तबला वादन करवाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया।
1: उस्ताद सलीम अल्लाह वाले वॉज बॉर्न इन देवास मध्य प्रदेश इंटू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस। एट द टेंडर एज ऑफ 5 ही बिगैन हिज इनिशियल ट्रेनिंग इन गजल सिंगिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज फादर एंड गुरु उस्ताद दद्दू खान साहिब। ही सब्सिक्वेंटली रिसीव्ड ट्रेनिंग इन क्लासिकल वोकल म्यूजिक फ्रॉम द ग्रेट माइस्ट्रो उस्ताद हाजी आमिर मोहम्मद खान साहिब of the Agra and Patiala Gharanas. He is the only artist in the country to have been awarded the top grade by the Directorate General All India Radio, New Delhi in both ghazal singing and tabla playing. Ustad Salim Allawale has had a deep passion for ghazal singing since childhood. The ghazals composed by him are based on classical ragas. He has performed ghazals at several prestigious national music festivals across the country. These include the Virasat Festival in Dehradun, the Alap Ghazal Festival and Bazme Ghazal in Hyderabad, and Santwani Festival at Bharat Bhavan, Bhopal. His other prominent performances include Jashne Urdu, organized by the Madhya Pradesh Urdu Academy, Begum of Pari Bazaar in Bhopal, Sinjara Festival in Jaipur, the All India Radio Sangeet Sammelan in Nazibabad, Uttar Pradesh, and the Lucknow Mahotsav. Ustad Salim Allawale has been honored with several prestigious awards, including the Madhya Pradesh Kala Gaurav Award, अभिनव कला सम्मान, संगीत शिरोमणि सम्मान, तालमणि सम्मान, चक्रधर सम्मान एंड प्राइड ऑफ भोपाल। ही रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ स्टाफ आर्टिस्ट एट आकाशवाणी भोपाल इन 2023। इन द सेम ईयर ही क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय कंडक्टिंग अ मास तबला परफॉर्मेंस इन्वॉल्विंग 1500 स्टूडेंट्स simultaneously.
0: और अब प्रस्तुत है उस्ताद सलीम अल्लाह वाले का गजल गायन। इनके स्वर में पहले सुनते हैं कैफ भोपाली की ये रचना, कौन आएगा यहाँ कोई ना आया होगा।
1: एंड नाउ प्रेजेंटिंग द गजल रिसाइटल बाय उस्ताद सलीम अल्लाह वाले, पेंड बाय कैफ भोपाली। कौन आएगा यहाँ कोई ना आया होगा।

0: उस्ताद सलीम अल्लाह वाले की आवाज में अब पेश है राजेश रेड्डी की लिखी ये गजल, ऐसे न बिछड़ आंखों से अशकों की तरह तो।
1: नाउ प्रेजेंटिंग अ गजल रिटन बाय राजेश रेड्डी, ऐसे न बिछड़ आंखों से अशकों की तरह तू।

0: आज के इस गजल गायन की अंतिम प्रस्तुति में डॉक्टर बशीर बद्री की रचना परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता।
1: एंड नाउ फॉर द फाइनल प्रेजेंटेशन ऑफ टुडेज गजल रिसाइटल वी ब्रिंग यू अ गजल रिटन बाय बशीर बद्र परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता।

0: अभी आपने उस्ताद सलीम अल्लाह वाले की गजल प्रस्तुति सुनी। संगत करने वाले कलाकार थे तबले पर उस्ताद मोहम्मद नईम, वायलिन पर मनोज कुमार बमरेले, गिटार पर मोहम्मद अरशद और सिंथेसाइजर पर शाहिद मासूम।
1: यू हैव जस्ट लिसन्ड टू अ गजल रिसाइटल बाय उस्ताद सलीम अल्लाह वाले। ही वाज अकंपनीड बाय ऑन तबला उस्ताद मोहम्मद नईम, ऑन वायलिन मनोज कुमार बमरेले, ऑन गिटार मोहम्मद अरशद, ऑन सिंथेसाइजर शाहिद मासूम।
0: इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी भोपाल में की गई और इसका प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया गया। इसी के साथ आज के क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के पहले भाग का समापन होता है।
1: दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड एट आकाशवाणी भोपाल and broadcast by

प्राप्त की हैं। आपने कई विदेशी मंचों पर भी अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। आप गायन के अलावा तबला और नगाड़ा वादन की भी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। आपने कई सम्मान भी प्राप्त किए हैं। आइए अब सुनते हैं उन्हीं के गाए लोकगीत।

0: जो तो आपसे कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे, हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख दा वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर सफलतापूर्वक वार्ता पूरी

0: लौटने का स्वागत किया है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया।
1: 20 साल में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना बहुत लंबा समय है। इन 20 सालों में भारत बहुत बदला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ है। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। भारत आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी बन गया है। भारत की आवाज इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जा सकती है।
0: वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बेल्जियम की रक्षा कंपनियों से भारत की विनिर्माण क्षमता के साथ अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को जोड़कर संयुक्त रूप से रक्षा उपकरण विकसित करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में भारत बेल्जियम रक्षा सीईओ बैठक में उन्होंने साइबर सुरक्षा, एआई आधारित ड्रोन, पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाले वाहनों और उन्नत हथियार प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। बेल्जियम के रक्षा और विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रांकेन ने भी दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर जोर दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल कर
2: एंड बेल्जियम टुडे रीअफर्म देयर कमिटमेंट टू डीपनिंग ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज बेल्जियम काउंटरपार्ट बार्ट वेवर वेलकम द ग्रोइंग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स इन बायलैटरल ट्रेड इन द इंडिया बेल्जियम जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज्ड आफ्टर द टॉक्स बिटवीन द टू लीडर्स इन न्यू दिल्ली। Both leaders welcomed the launch of the India-Belgium Strategic Dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. The two sides identified significant potential for cooperation in pharmaceuticals, life sciences, semiconductors, defense manufacturing, critical minerals, renewable energy, ports, logistics, space and advanced technologies. India and Belgium today exchanged several agreements including letter of intent on defense cooperation and MOUs in the fields of renewable energy for tackling transnational crimes including cybercrime and diplomatic training. In his press statement, Prime Minister Modi emphasized that India's economy has maintained its momentum even in this challenging environment. He said in the last quarter, India recorded a growth of 7.8%. He further said that today, India's growth story is becoming a source of confidence and new opportunities for the world. He highlighted that the scope of bilateral cooperation has expanded beyond traditional sectors to reach strategic areas such as defense and clean energy.
3: हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे। फ्रेंड, रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। आज हमने दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई है।
2: कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल टुडे लॉडेड द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इंडस्ट्रीज फॉर प्लेइंग अ पिवोटल रोल इन अचीविंग 7.8% जीडीपी ग्रोथ इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फिस्कल ईयर। While chairing a national workshop on leveraging FTA's outreach program in New Delhi, Mr. Goyal expressed confidence that free trade agreements signed with various countries will pave a steadfast pathway in becoming a major exporter. In Uttar Pradesh, heavy rain and the release of water from barrages have affected 23 districts from flood. Prime Minister Narendra Modi today spoke to District Magistrate Satyendra Kumar of his parliamentary constituency Varanasi over the phone to inquire about the flood situation. Prime Minister inquired about the water levels of rivers in Kashi and the arrangements being made in relief camps. Chief Minister Yogi Adityanath also conducted an aerial survey of flood-affected areas in Farukhabad. He reviewed rescue and relief operations. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today met Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Kyiv and discussed on approaches to end the ongoing conflict. He also met his Ukrainian counterpart, Andriy Sybiha. Dr. S. Jaishankar said that India has consistently maintained that this is not an era of war. Dr. Jaishankar also highlighted attacks on commercial shipping during such conflicts and said that it impacts many nations of the global south in a variety of ways.